ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आश्विन मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 सितंबर सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 और 5 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित

0: इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीददारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मान किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का प्रातः वंदन। यह धरती जहां आकर हम समझते हैं, जानते हैं इस जीवन के बारे में, इस सृष्टि के बारे में, इस प्रकृति के बारे में, इस संसार पर हमें लेकर के आती है ईश्वर की एक अनुपम दिव्य रचना जिसे हम कहते हैं माँ। माँ अनेकों रूपों में हमारे साथ होती है। आज की आराधना माँ की आराधना से प्रारंभ करते हैं।

माँ अपने पुत्र से बस इतना ही चाहती है कि उसे याद रखे कि उसकी माँ भी है। और फिर माँ का जीवन, माँ का स्वभाव तो अपने पुत्र पर अपनी सर्वस्व ममता निछावर कर देने का ही है। प्रेम के अनेक रूप हैं। संसार का प्रेम भले ही कभी बदल जाए, पर जो हमारी परम सत्ता है, जो इस सृष्टि के संचालक हैं, अनेक नाम हैं जिनके, कभी हम राम कहते हैं, कभी कृष्ण कहते हैं, कभी मातृ सत्ता के रूप में उन्हें याद करते हैं। वो अपने भक्तों के प्रति, अपने संतों के प्रति कभी भी नहीं बदलते हैं। जो प्रेम पावन है, जो प्रेम निस्वार्थ है, वही प्रेम चिरस्थाई है, वही प्रेम निश्चल है और हर आत्मा को संतुष्टि तृप्ति से भरता है। ईश्वर के प्रति प्रेम, प्रमुख सत्ता के प्रति प्रेम। आइए हम भी उसी प्रेम को अर्पित करते हैं प्रभु श्री राम के चरणों में।

कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग का जीवन काल जितना है, हम अपने बुजुर्गों के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने इतने वर्षों तक प्रभु की तपस्या की। कलिकाल को बहुत ही कठिन माना गया, लेकिन यहां भक्ति का मार्ग उतना ही सुगम और सरल बना दिया गया। प्रभु के नाम सुमिरन से ही हम इस भवसागर को पार कर लेते हैं। प्रभु का नाम ही इतना प्रतापी और कल्याणमयी है कि उसको जपने से ही हम समस्त तापों से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें उनके नाम का सुमिरन करते रहना है। जब उनका सानिध्य हमारे साथ बना रहेगा तो मन का भटकाव नहीं होगा, जीवन में विकृतियां नहीं आएंगी और हम सन्मार्ग पर चलते चलते प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, उनकी भक्ति प्राप्त कर लेंगे।

ईश्वर हमें अपनी भक्ति प्रदान करें, क्योंकि भक्ति ही वो चीज है जो हमें हमारे सारे कष्टों से मुक्त कर देती है। ईश्वर हमें सन्मार्ग पर लेकर चलें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी कामना के साथ आज की आराधना बस यहीं तक। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
4: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: सुनो ना।
1: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
5: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है गांधी चर्चा।
6: समय अपने आप में एक रस, निरंतर गतिशील और अखंड है, उसका प्रत्यावर्तन भी संभव नहीं होता। पर मनुष्य अपने जीवन के जितने अंश से उसका स्पर्श कर लेता है, उसे घड़ी, दिन, मास, वर्ष आदि की संज्ञा में बांध लेता है, और तब मनुष्य की स्मृति में ही उसका प्रत्यावर्तन सहज हो जाता है और कभी कभी अनिवार्य हो जाता है।

ऐसे संस्मरण, ऐसे स्मृति के क्षण व्यक्ति के जीवन में भी आते हैं, राष्ट्र के जीवन में भी आते हैं। व्यक्ति के जीवन में यह समय का प्रत्यावर्तन अपने सुख दुखों के की अनुभूतियों के साथ होता है, अपने रागात्मक संबंधों के साथ होता है। राष्ट्र में जब समय इस प्रकार प्रत्यावर्तन करता है, तब किसी महान व्यक्तित्व के द्वारा, उसके माध्यम से ऐसे आदर्शों का, ऐसे स्वप्नों का, ऐसे सिद्धांतों का प्रत्यावर्तन होता है जिसमें वो जीता है, जिसमें उसके जीवन की स्थिति है। ऐसे समय के प्रत्यावर्तन के लिए जीवन को अपने उदात्तम रूप में, उत्कृष्टतम रूप में अवतरित होना पड़ता है। और इस उदात्त अभिव्यक्ति को हम महामानव, महापुरुष, युग पुरुष आदि की संज्ञा देते हैं। ये संज्ञाएं भी छोटी हैं। जीवन की विराटता देखते हुए, समय की अनंतता देखते हुए ये संज्ञाएं केवल हम अपनी सुविधा के लिए रखते हैं। अतीत में इस देश के एक कोने में ऐसे ही जीवन के एक चमत्कार का आविर्भाव हो, चमत्कार ये मन में कौतूहल नहीं उत्पन्न करता, हमें केवल कौतुक की भावना नहीं देता, ये हमें अपनी शक्तियों के प्रति सजग कर देता है, जगा देता है। जीवन का उदात्त रूप इसी में विशिष्ट है कि वो अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ आविर्भूत हुआ है। परंतु मानव समान है, मानव का जीवन समान है, इस प्रकार वो सबका है, उसमें सबका दाय भाग है, सबका अपनापन है। महापुरुष, महात्मा गांधी के समान महापुरुष किसी युग के नहीं होते, किसी एक राष्ट्र के नहीं होते, किसी एक जाति के नहीं होते। सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण आकाश को स्पर्श करता है, धरती के विविध रूपों को स्पर्श करता है, पर आकाश का कोई अंश उसे बांध नहीं पाता, धरती का कोई कोना उसे बंदी नहीं बना पाता। वो सबका है और तब भी किसी के बंधन में नहीं है। महात्मा गांधी का जीवन भी इसी प्रकार का है। उनका दान ग्रंथों में संचित करने के लिए नहीं है और न किसी कोष में एकत्र करके रखा जा सकता है। दीपक की लौ के लिए बैंक नहीं बनते, चिंगारियों के लिए स्वर्ण मंजूषाएं नहीं बनाई जाती। दीपक की लौ को तो दूसरे दीपक की स्निग्ध बाती ही संभालती है, और इसी तरह चिंगारी की ज्वलनशीलता वही पदार्थ संभालता है जिसमें ज्वलनशीलता है परंतु सो रही है। महात्मा गांधी महापुरुषों की पंक्ति में भी अकेले हैं। उन्होंने बुद्धि की जटिलता में कुछ ऐसी खोज नहीं की जो मनुष्य की बुद्धि के लिए एक मार्ग ऐसा दे देती जिसमें निरंतर वो भटकता रहता। उन्होंने वैज्ञानिक के समान प्रकृति के अंध गर्भ में क्या क्या है इसकी भी खोज नहीं की। उनका कोई संप्रदाय नहीं है, मतवाद नहीं है, मठ नहीं है, महंत नहीं है, शिष्य नहीं, जो हैं वो उनकी आत्मा के ही प्रतिरूप हैं, चाहे सोते हैं चाहे जागते हैं। और उनका बड़ा दान इसी सामान्यता में है जिसमें उन्होंने अपने आप को असामान्य नहीं माना। जो सिद्धांत

0: जीवन के विकास के लिए आवश्यक थे, जिनके बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता था, कहीं भी जीवन विकसित नहीं हो सकता था, पल्लवित नहीं हो सकता था। उन सिद्धांतों को उन्होंने खोज करके हमारे भीतर से ही प्राप्त कर लिया। जो उपेक्षित थे, पीड़ित थे, पराजित थे, उनके हाथ में उन्होंने कोई तलवार नहीं दी जिससे वे अपने विजेता को, अपनी उपेक्षा करने वाले को, अत्याचारी को चोट पहुंचाते। उन्होंने उनके हृदय में आत्मा की वो शक्ति जागृत कर दी जिससे वे मस्तक उठाकर खड़े हो गए और सत्य का वो कवच उनकी आत्मा पर सहज ही बैठ गया कि जिस पर कोई भी चोट व्यर्थ होती थी। अर्थात उन्होंने मनुष्य के भीतर जो एक उदात्त भावना है, जो अपराजेय शक्ति है, उस शक्ति को सामान्य मनुष्य में भी जगा दिया और सामान्य मनुष्य भी उतना ही उन्नत, उतना ही विशाल हो गया। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को इस देश के किसान का प्रतिनिधि कहता है, दीन का प्रतिनिधि कहता है, दलित का प्रतिनिधि कहता है, अपनी केवल करुणा से ही इतने सबको स्पर्श कर सकता था। हमारा देश करुणा के संबंध में, बंधुत्व के संबंध में बहुत प्राचीन भावनाएं रखता है और मनुष्य की तत्वगत एकता भी जानता है। उसका पूरा दर्शन, उसका धर्म, उसका नैतिक शास्त्र, उसका समाज शास्त्र सब इस सिद्धांतों के ही अनेक प्रयोगात्मक रूप हैं। महात्मा गांधी ने उसे समझा और उस सत्य को उन्होंने सत्य का आग्रह बनाकर उपस्थित किया। जीवन की जो गंगा है उसका गुणगान बहुत से कर सकते हैं, उसके जल में जो तत्व है उसे बहुत से खोज सकते हैं, लेकिन उसे किसी अपार्थिव लोक से किसी शिव के मस्तक पर उतार कर धरती पर उतार लाना, ये किसी महान व्यक्तित्व का ही कार्य होता है और महात्मा गांधी में वही व्यक्तित्व था।
1: गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे बापू के बारे में महादेवी वर्मा के विचार। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। पहले काट दी, हम पकड़ा गए क्या? ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सजावटी फूलों की खेती। इस विषय पर डॉक्टर अशोक कुमार से हितेश कुमार शुक्ला की बातचीत, लीजिए सुनिए।
1: किसान भाई बहुत बहुत स्वागत बा आपका कृषि जगत कार्यक्रम में। अपने कृषि जगत कार्यक्रम में हम सभी क्षेत्र के तमाम विशेषज्ञ भैया, जानकार भैया के बुलावा जाता है, और साथ ही साथ तमाम जोन क्षेत्र हैं जिनमें किसान भाइयों के ज़रूरत

0: तो जानकारी की, उम्मन जानकारी साझा की जाता है। आज भैया अपने स्टूडियो में फूलों की व्यावसायिक खेती के बारे में जानकारी दे बिना डॉक्टर अशोक कुमार भैया, जो कि पूर्व विभाग अध्यक्ष पुष्प एवं भूदृश्य विभाग विज्ञान विभाग अयोध्या से हैं, आई हैं। तो भैया इनसे बात की जाए और जाना जाए कि भाई फूलों की व्यावसायिक खेती कैसे की जाए, का उम्मन रख रखाव रखा जाए, कैसे कैसे कान कन बातों का ध्यान रखा जाए, जैसे किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा कमाई सकें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत बा आपका।
1: जी
0: डॉक्टर साहब पहला सवाल तो यही बाटे कि जोन मौसम चलत बाटे ओमन किसान भाई कौन कौन सा फूल लगाई सकते, किन किन फूलन के खेती कर सकते हैं।
1: जी किसान भाइयों, जैसा कि देखें कि आप तमाम तरह की खेती सदियों से करते चले आए हैं, ऐसे में ही आपके पास एक फूलों की खेती का भी विकल्प है। जैसा कि आप समझ रहे हैं, प्रयागराज एक धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी है और यहाँ पर 12 महीने फूलों की मांग बनी रहती है,
0: बिल्कुल भैया,
1: तो बिक्री में कोई समस्या नहीं है। ऐसे में यदि आप फूलों की खेती को एक अन्य खेती के साथ एक विकल्प के रूप में चुनें, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसके लिए किसान भाइयों, आपको केवल एक काम ही करना होता है कि शुरू में जब आप खेती प्रारंभ करें, तो उस समय थोड़ा प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत होती है, या जो लोग खेती कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा मित्रता बना करके, या जो कृषि संस्थान है उनसे संपर्क बना के थोड़ा सा प्रशिक्षण करके थोड़ा जानकारी ले लें कि कौन से उन्नत किस्में हैं और कैसे उनकी खेती करना है। तो उसी संदर्भ में आज हम आपको थोड़ा सा खेती के बारे में बताएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी
0: तो डॉक्टर साहब जैसे आप कहें कि भाई थोड़ के जानकारी की ज़रूरत होता, तो एक तो सबसे पहले यही जानकारी ले के पड़े कि भाई के प्रकार का खेत का आवश्यकता होता, के प्रकार के मिट्टी की आवश्यकता होता, जलवायु के प्रकार की हो चाहे,
1: जी
0: एक बारे में किसान भाई के घर इनको कुछ बताओ आप।
1: देखें किसान भाइयों, इस समय अक्टूबर का महीना चल रहा है। इस समय आप यदि फूलों की खेती का मन बनाए हुए हैं, तो इस समय दो प्रकार के फूलों की खेती बहुत बढ़िया ढंग से आप प्रारंभ कर सकते हैं। जिसमें तो एक गेंदा की खेती, देखिए गेंदा हर आदमी परिचित है और गेंदा की खेती हर किसान कर भी सकता है,
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: गेंदा का फूल रोज आप पैदा करिए, रोज आपकी बिक्री हो जाएगी। और गेंदा के फूलों की ये स्थिति है प्रयागराज में कि यहाँ गेंदा के फूलों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जितने किसान यहाँ खेती में जुटे हैं, फूल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है।
0: अच्छा
1: ऐसे में जो गेंदा की खेती करने के लिए जलवायु है वो बिल्कुल उपयुक्त जलवायु है, आप गेंदा खेती आराम से कर सकते हैं।
0: अच्छा
1: मिट्टी का जहाँ तक सवाल है, ये गंगा के आसपास की मिट्टी है, तो खेती भी मिट्टी भी एकदम उपयुक्त है।
0: जी,
1: केवल आपको ध्यान इतना ही करना है, खेती प्रारंभ करना, मन बनाना है।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: खेती करना चाहे किसान भाई, तो कैसे करेंगे? गेंदा के लिए देखिए दो तीन किस्में हैं, जिसमें एक पूसा नारंगी गेंदा है, जिसका नारंगी रंग का पुष्प होता है, और दूसरा जो है पूसा बसंती गेंदा है। तो इन किस्मों को आप बीज ले लें और इसकी आप पौधशाला में बीज बो दें,
0: जी
1: और बीज जैसे बोते हैं तो 20-25 दिन बाद आपकी पौध तैयार हो जाती है। बीज जो बोएं ऊंची उठी हुई क्यारी में बोएं, और जब पौध तैयार हो जाए 20-25 दिन की, तो उसको खूब बढ़िया खेत तैयार कर लें और उसमें 60 kg नाइट्रोजन और करीब 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से
0: जी भैया,
1: आप खेत में रोपते समय डाल दें, और गोबर की खाद 20-25 टन डाल देंगे तो ये बहुत बढ़िया रहेगा और उत्पादन बहुत अच्छा होगा।
0: बिल्कुल
1: तैयार खेत में इसको 31 फीट पौधे से पौधे और 1.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी पर पौधे की रोपाई कर दें। समय समय पर सिंचाई करते रहें, निराई गुड़ाई करते रहें, खेत की साफ सफाई बना के रखें। किसान भाइयों, 50 से 55 दिन में गेंदा में फूल आने लगते हैं,
0: जी,
1: और आप इसको 60-70 दिन में तुड़ाई शुरू करके और बिक्री प्रारंभ कर सकते हैं। 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में यदि खेती करें, तो 1 हेक्टेयर में 80-85 हज़ार रुपये लगभग खर्च होते हैं, लेकिन आप 1.5-2 लाख तक रुपया कमा सकते हैं। और ये 50-55 दिन से जहाँ पुष्प आना प्रारंभ होंगे,
0: जी
1: और ये
0: जी
1: लगभग आपका 100 से 150 दिन तक आप बड़े आराम से पुष्प की बिक्री कर सकते हैं। तो ये आपको मुनाफा के रूप में आपके 1 से 1.25 लाख रुपये आपको प्रति हेक्टेयर निश्चित रूप से आप कमा सकते हैं।
0: जी जी
1: इसी में इसी तरह से कृषक भाइयों, एक खेती है ग्लेडियोलस की खेती।
0: अच्छा
1: ग्लेडियोलस में किसान भाइयों क्या करना, कि ग्लेडियोलस एक कंद वाली फसल है, इसके नीचे कार्म कार्म बोलते हैं, ये तना का रूपांतरित भाग होता है। इसी को जिसे आलू होता है, आलू की तरह इसका कंद होता है, और
0: जी
1: उसको जमीन में बोना होता है। तो इसके लिए उपजाऊ खेत रखें, जैसे आलू के लिए आप उपजाऊ खेत का चयन करते हैं, वैसे उपजाऊ खेत का चयन करें। और इसके कार्म जो होते हैं उसका चयन बहुत उपयोगी होता है ग्लेडियोलस की खेती के लिए।
0: जी जी
1: तो उसमें किसान भाई क्या करें कि एक छोटा कार्म भी होता है जिसमें 1.5-2 सेंटीमीटर व्यास होता है, तो आप ऐसे में 4 सेंटीमीटर से जो बड़े कार्म हैं उनका चयन बुआई के लिए करें। 4 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर तक कार्म का चयन करेंगे तो आपका बहुत अच्छा जमाव

0: होगा, बहुत अच्छा पौध बनेगा और उसमें जो पुष्प आएगा, स्पाइक आएंगी, वो बहुत अच्छी आएंगी।
1: अच्छा,
0: तो ऐसे में आप इनको कार्म को चयन कर लें और लगभग इनको 10 से 12 कुंटल पर हेक्टर के हिसाब से आपको जरूरत पड़ती है कार्म की, और यदि आप गिनती में लेंगे तो 1.5 से 2 लाख की जरूरत पड़ेगी। इनको आप लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और एक एक कार्म की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर पर आप बो सकते हैं
1: जी।
0: और ज़मीन इसको समतल खेती में भी बो सकते हैं और मेड़ बना के भी कर सकते
1: अच्छा,
0: हैं।
1: अच्छा।
0: तो किसान भाइयों, अच्छी खेत की तैयारी कर लें, खेत में खूब अच्छी मात्रा में गोबर की खाद डाल लें। खेत यदि आपका हल्का है तो शुरू से तैयारी किए हैं तो आप उसमें ग्रीन मैन्योरिंग भी, हरी खाद भी कर सकते थे, लेकिन अब ग्रीन मैन्योरिंग नहीं होना है, हरी खाद नहीं बना सकते हैं, तो गोबर की खाद डाल दें, बर्मी कंपोस्ट डाल दें
1: जी,
0: और 250 कुंटल आप गोबर की खाद डाल देंगे तो बहुत अच्छा ग्लैडियोलस उत्पादन देगा
1: जी जी।
0: इसमें कृषक भाइयों करना ये होता है कि ये भी करीब 15-20 दिन में इसके जमाव होने लगते हैं और 60-70 दिन में स्पाइक आना शुरू हो जाती
1: अच्छा,
0: है।
1: अच्छा।
0: किसान भाइयों, इसकी जब ग्लैडियोलस की खेती करते हैं तो जब स्पाइक निकलता है तो उस समय फूलों के वजन की वजह से उसको गिरने का डर रहता है, तो आप उसमें डंडी लगा दें, सहारा दे दें।
1: अच्छा।
0: और उसी समय खेत में मिट्टी चढ़ा दें और बल्कि यूरिया का भी 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से टॉप ड्रेसिंग करके आप मिट्टी चढ़ा देंगे तो पौधा बहुत अच्छा होगा और पौधा गिरेगा नहीं, स्पाइक भी अच्छी होगी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और ग्लैडियोलस का एक पौधा से किसान भाइयों 2 से 3 स्पाइक निश्चित रूप से आप उसकी कटाई कर सकते हैं और इसका एक स्पाइक 2 रुपये से लेके 10 रुपये तक बिकती है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। शादी ब्याह का समय, जैसे फरवरी के महीने में आपकी स्पाइक निकल रही, शादी ब्याह का मौसम होता है, उस समय बहुत मांग होती फूलों की। और ग्लैडियोलस की खेती जहाँ आपको 2-2.5 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर खर्च आता है
1: जी,
0: तो वहाँ 3-4 लाख रुपया पर हेक्टेयर आप इसकी कमाई कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: फूल बिकने में कोई कमी नहीं है, आपके घर पर ही फूल खरीदने वाले चले जाएंगे और आपका खेत से ही फूल निकल जाएगा। तो आप हिम्मत करके फूलों की खेती करें। तो ग्लैडियोलस और गेंदा दो प्रकार के ऐसे पुष्प हैं जो आप साधारण थोड़े से भी जानकारी करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात भाई जलवायु की और माटी का
0: जी,
1: हम कहा कि पानी की जरूरत कैसे पड़ा था, पानी ज्यादा लगा था, कम लगा था?
0: कृषक भाइयों देखें, गेंदा तो एक ऐसा है कि आप 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद सिंचाई करें।
1: जी जी।
0: ज्यादा पानी देने से क्या होगा, उसमें खरपतवार भी ज्यादा पैदा होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: आप 10-15 दिन बाद सिंचाई करें।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आप ये सुनिश्चित करें कि जब आप सिंचाई करें तो खेतों में निराई कर दें, खरपतवार ना होने पाए। लेकिन जिस समय पुष्प बन रहे हैं, आना शुरू हो गए हैं, उस समय खेत में आप नमी बनाए रखें।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और जब पौधा रोपाई करते हैं उस समय खेत में नमी होनी चाहिए, हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। ऐसे बीच बीच में आप सिंचाई करते रहें तो 4-5 सिंचाई आप कर देंगे तो पूरा पौधे का जीवन बीत जाएगा और अच्छा उत्पादन मिल जाएगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जहाँ तक ग्लैडियोलस में सिंचाई की बात है कृषकों, ये भी एक तरह से कंदी फसल है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो इसके नीचे जमीन के नीचे कंद बनती हैं तो उनमें पानी और भोजन खुद ही एकत्र होता रहता है, तो बहुत पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, इसमें भी जब आप रोपाई करते हैं, पहला जब 10-15-20 दिन बाद पौध निकलने लगती है तो आप एक हल्की सिंचाई कर दें और एक सिंचाई 30-35 दिन बाद देख के फिर मिट्टी चढ़ा दें और फिर बीच बीच में जब देखें कि स्पाइक 70-75 दिन बाद निकलना प्रारंभ हो गया है तो उस समय आप नमी इसमें भी बना के रखें। जिस समय किसान भाइयों पुष्प आना शुरू हो जाए उसमें नमी, खेत आपका नहीं सूखना चाहिए।
1: जी जी जी।
0: तो आप नमी बनाए रहिए और ग्लैडियोलस से भी आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप अपने स्टूडियो में आए और फूलों की व्यावसायिक खेती के बारे में तो बढ़िया जानकारी दी है, निश्चित तौर पर किसान भाई एक सुने हुई और अपने खेती किसानी काम में लई हैं। आप आए निकले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: सजावटी फूलों की खेती, इस विषय पर अभी आप डॉक्टर अशोक कुमार से हितेश कुमार शुक्ल की बातचीत सुन रहे थे। किसान भाइयों, अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर श्वेता चौधरी की वार्ता, पायरिया का उपचार। लीजिए सुनिए।
1: मनुष्यों में सबसे आम दंत समस्याओं में से एक पायरिया या पेरिडोन्टाइटिस मरसूड़ों की एक गंभीर बीमारी है। जब आपके दांतों को रक्षा और मजबूती प्रदान करने वाले पेरिडोन्शियम ऊतक खराब हो जाते हैं तो ऐसी दंत स्थिति विकसित होती है। यदि आप उपचार नहीं करवाते हैं तो इस स्थिति के कारण दांतों के चारों तरफ स्थित एल्वियोलर हड्डी धीरे धीरे गलने लगती है और समस्या बढ़ने पर आप अपने दांतों को खो सकते हैं। पायरिया के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण और संकेत हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे सूजे हुए मसूड़े, ढीले दांत, श्वास से दुर्गंध, चबाने में दर्द होना, मसूड़े जिनसे आसानी से खून निकलता है, दांतों और मसूड़ों के बीच मवाद, मसूड़ों में बार बार सूजन होना, मसूड़े जो छूने पर कोमल या संवेदनशील महसूस होते हैं, चमकीले लाल, गहरे लाल या बैंगनी रंग के मसूड़े, ब्रश करते समय दांत या मसूड़ों का लाल होना या खून आना। पायरिया से जुड़े कुछ खतरे के कारक हैं। मसूड़ों की बीमारी के लिए धूम्रपान को सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक माना जाता है। किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन करने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली क्षतिग्रस्त होती है और मसूड़ों की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। धूम्रपान और तंबाकू मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं और मुंह में बैक्टीरिया की वृद्धि को सीमित करने वाली सामान्य तंत्र के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। मसूड़ों की बीमारी कुछ लोगों में आनुवांशिक हो सकती है। चिकित्सक द्वारा सुझाव दी गई कुछ दवाएं जैसे अवसादरोधी, एंटीहिस्टामिनिक आदि में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके मुंह में लार के उत्पादन में कमी कर देते हैं। लार दांतों को साफ रखने में मदद करती है और मुंह में स्थित खराब बैक्टीरिया में वृद्धि को रोकती है। लार कम होने पर दांतों पर गंदगी या प्लाक जमा होने लगता है। मधुमेह यानी डायबिटीज कई प्रकार के संक्रमण होने की संभावनाओं को बढ़ाता है। इनमें मसूड़ों का संक्रमण भी शामिल है। डायबिटीज और मसूड़ों की बीमारी कई तरह की जटिलताएं पैदा कर सकती हैं। मसूड़ों में सूजन और पायरिया ये दोनों शरीर में इंसुलिन इस्तेमाल करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, जिससे डायबिटीज को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। डायबिटीज और मसूड़ों की बीमारियां आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक के प्रति अति संवेदनशील बना देती हैं। गर्भावस्था, रजोनी वृद्धि और यहाँ तक कि मासिक धर्म के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण मसूड़ों को पायरिया होने की प्रति अति संवेदनशील बना देते हैं। यदि आहार में कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी आदि पोषक तत्व ना हो तो यह स्थिति मसूड़ों को रोगों को बढ़ावा दे सकती है। पायरिया या पेरिडोन्टाइटिस का समय पर निदान और इलाज किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाली जटिलताओं से बचा जा सके। इसके लिए दांतों और मसूड़ों को साफ रखने के लिए फ्लॉस और टूथब्रश का इस्तेमाल करना जरूरी है। बैक्टीरिया और प्लाक के प्रसार रोकने के लिए कभी कभी एंटीबायोटिक भी दी जा सकती है। एंटीबायोटिक जेल को मसूड़ों के ऊपर लगाया या एंटीबायोटिक गोली का सेवन किया जा सकता है। यदि प्रारंभिक उपचार काम नहीं आता तो फ्लैप सर्जरी का

0: सुझाव दिया जा सकता है। यह प्रक्रिया मसूड़ों के नीचे जमाव से छुटकारा पाने में मदद करती है। कुछ परिस्थितियों में जिनमें दांत की हड्डी पर गंभीर हानि होती है, हड्डी और मसूड़ों की ग्राफ्टिंग सर्जरी भी की जाती है। पायरिया से बचाव के कुछ प्रमुख सुझाव हम आपको देना चाहेंगे। समस्याओं के संकेत और लक्षणों का शीघ्र निदान करने के लिए हर 6 महीने में अपने दंत चिकित्सक के पास जाना सुनिश्चित करें। इस तरह आप शुरुआती चरण में ही उनका इलाज कर पाएंगे और भविष्य में होने वाली किसी भी जटिलता से बच पाएंगे। पायरिया के खतरे को दूर रखने के लिए आपको नियमित रूप से ब्रश और फ्लॉसिंग करनी चाहिए और कुछ खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। प्लाक, कठोर टार्टर और फंसे हुए भोजन को हटाने के लिए स्केलिंग हर 6 महीने के अंदर करवाएं। अगर पायरिया के लक्षण दिखे तो बिना देर किए अपने डेंटिस्ट से मिले। यदि आप इस दांत की समस्या को नजरअंदाज करते हैं और इसे खराब होने देते हैं तो पायरिया से दांतों को पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है।
1: पायरिया का उपचार। अभी आप डॉक्टर श्वेता चौधरी की ये वार्ता सुन रहे थे। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 और 30 सेकंड हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी सुनिएगा रात 10 बजे। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। उर्दू कार्यक्रम सुनवाएंगे रोज की तरह सुबह 9:30 बजे। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ का आनंद लीजिएगा सुबह 7 बजे। 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उज्ज्वल दत्ता का ख्याल गायन सुनिएगा सुबह 7:30 बजे। दिन में 12:15 बजे पंडित कंठे महाराज का तबला वादन होगा और रात 10:30 बजे अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन होगा।

हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सात्विक मिश्रा के स्वर में भजनों का आनंद लीजिएगा सुबह 9:50 पर। शाम 7:45 पर श्रीकांत वैश्य के स्वर में गीत और भजन सुनवाए जाएंगे।

दिन में 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। इसमें आज का विषय होगा ब्रेन फॉग। डॉक्टर ऋचा पाठक से बातचीत करेंगी नेहा गुप्ता और अभयकांत तिवारी। आज की हमारे विशेषज्ञ ऋचा पाठक जी एक मनोवैज्ञानिक हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम में आकांक्षा भारती, कमला प्रसाद पाल, शोभा लाल और साथियों के स्वर में लोकगीतों का आनंद लीजिएगा दिन में 10:30।

एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 11 बजे। युवा साथी अपना कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस सुनेंगे दिन में 11:30 बजे।

अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का लुत्फ उठाइएगा। दिन में 12:30 बजे कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। महिलाएं अपना कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी सुनेंगी दिन में 1:15 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग लेकर के आएंगे दिन में 2:30 बजे। नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुनेंगे शाम 5:00 बजे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी लेकर के आएंगे शाम 5:15 बजे।

बजे। नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुनेंगे शाम 5 बजे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी लेकर के आएंगे शाम 5:15 बजे।

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनिसिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। स्वर भूपेंद्र सिंह का था और संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्मों से भजन। कार्यक्रम का पहला भजन हमने लिया है मन्ना डे की आवाज में। फिल्म का नाम है सीमा। रचना शैलेंद्र की है और संगीत शंकर जयकिशन का।

लीजिए, सुनिए अमित त्रिवेदी की आवाज में ये भजन, जिसे हमने लिया है फिल्म केदारनाथ से। रचना अमिताभ भट्टाचार्य की है और संगीत भी अमित त्रिवेदी का है।

अब आज का फिल्मों से भजन का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडनगर से प्रदेश के वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संवाद। कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। गौतम बुद्ध नगर जिले में आज से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में LDA की वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, 10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी आवासीय सुविधा। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश जारी रहने और प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है। एक रिपोर्ट।
2: 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल ने भारत की उद्यमिता संस्कृति में बड़ा बदलाव किया है। करीब 400 सर्टिफाइड स्टार्टअप से शुरू हुआ यह सफर मार्च 2026 तक 2 लाख से अधिक सर्टिफाइड स्टार्टअप और 23 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 10 साल में देश नए स्टार्टअप में दुनिया का नेतृत्व करे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए।
1: पिछले 10 वर्षों ने देश की क्षमताओं को साबित किया है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आने वाले 10 वर्षों में भारत नए स्टार्टअप ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करे।
2: सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने वाले मेरठ के स्टार्टअप के फाउंडर आशुतोष वशिष्ठ ने बताया कि सरकार से उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला।
3: बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत काफी सारा सपोर्ट इकोसिस्टम जो स्टार्टअप्स के लिए डेवलप कराया है, वो स्टार्टअप का एक बोन है

0: जो कि उसको आने वाले टाइम में काफी स्ट्रोंगर करेगा।
1: सरकार के प्रयासों का नतीजा यह है कि देश में करीब 50% स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से सामने आए हैं। संगीता श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, मेरठ।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस ट्रेड शो का आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट में 29 सितंबर तक किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: ट्रेड शो में वियतनाम, जापान, सिंगापुर, रूस, ऑस्ट्रिया और बेलारूस को पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। इस आयोजन में 72 देशों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 600 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के पहुंचने की संभावना है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान दिलाने का प्रयास किया रहा है। उन्होंने बताया कि स्टेट शो के समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ विकास प्राधिकरण की वरुण विहार और नैमिष नगर आवासीय योजनाओं का भूमि पूजन किया तथा भूखंडों के पंजीकरण का शुभारंभ किया। ये परियोजना आगरा एक्सप्रेसवे के समीप 12,000 करोड़ रुपए से 10,680 एकड़ में विकसित की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2,166 करोड़ रुपए से प्रस्तावित 5 बहुमंजिला अपार्टमेंट का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वरुण विहार 6,500 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकसित होगा, जहां 6,00,000 से अधिक लोगों के लिए आवासीय सुविधा होगी। नैमिष नगर 4,100 एकड़ में विकसित होगा और 4,00,000 से अधिक लोग इसका लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ को केवल महानगर और जनपद तक सीमित न रखकर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में व्यवस्थित विकास किया जा रहा है।
4: ये आज की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता को प्लांड वे में अर्बन डेवलपमेंट के इंटीग्रेटेड प्लान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक था। एक जगह पर सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। आज के समय में जब एजुकेशन के हब के रूप में लखनऊ आगे बढ़ा है, हेल्थ केयर के नए हब के रूप में लखनऊ को नई पहचान मिली है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक नए केंद्र के रूप में लखनऊ आगे बढ़ा है।
2: इससे पहले मुख्यमंत्री ने श्री गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 57वीं और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। एशियाई खेल 2026 में अमेठी जिले के सलमान खान ने रोइंग की पुरुष डबल स्कल्स में देश के लिए कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। वहीं सलमान और सतनाम सिंह की जोड़ी फाइनल में तीसरे स्थान पर रही। भारतीय जोड़ी स्वर्ण पदक विजेता चीन से 3.48 सेकंड और रजत पदक विजेता उज्बेकिस्तान से 2.76 सेकंड पीछे रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि दृढ़ प्रयास ने इस जोड़ी को पोडियम पर एक सुयोग्य स्थान दिलाया है। आगरा जिले के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से विधायक छोटेलाल वर्मा का कल नोएडा के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 73 वर्ष के थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायक के निधन पर गहरा शोक जताया है। लखनऊ, बलरामपुर और जौनपुर सहित कई अन्य जनपदों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। गोरखपुर और इसके आसपास के कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सुल्तानपुर जिले में वहां के जिलाधिकारी ने आज स्कूल

0: कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 27 सितंबर तक प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक बारिश के कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडनगर से प्रदेश के वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संवाद। कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। गौतम बुद्ध नगर जिले में आज से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का 4th संस्करण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में LDA की वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, 10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी आवासीय सुविधा। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश जारी रहने और प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट का अनुमान जताया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री उज्ज्वल दत्ता का राग बसंत मुखारी में ख्याल गायन। विलंबित रचना जप ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना 3 ताल में। विलंबित रचना के बोल हैं नीर भरने निकसी और द्रुत रचना के बोल हैं भई भोर मोर बोलन लागी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अनूप कुमार बनर्जी। हारमोनियम पर हैं श्रीकांत वैश्य और तानपुरे पर हैं आयना।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उज्ज्वल दत्ता का राग बसंत मुखारी में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अनूप कुमार बनर्जी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाई ये धुन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाई ये पहाड़ी धुन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आपको याद दिला दें, आज शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम होगा। इसमें हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर सुमित कुमार मिश्र की वार्ता रामायणम युगातीतः संदेशः। अंग्रेजी कार्यक्रम होगा 8:30। इसमें हम आपको सुनवाएंगे प्रोफेसर इंद्रानी की वार्ता गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर एंड हिज यूनिक विजन।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
3: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सांवा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
4: मिलेट, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
3: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य

0: अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट फिट इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
5: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
6: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, IT, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल

0: करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
1: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीक की ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर, हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
2: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री, जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, लोक सत्य में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, यूसीआई पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमरीका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत यूएस की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनपिंग से मिलकर काम करने का वादा।
0: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन भी सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ गुफ्तगू करेंगे। मेक इन इंडिया पहल को आज 12 साल मुकम्मल हो रहे हैं, जो मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनाने के मकसद से शुरू की गई थी। भारत की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने एनालॉग पनीर तैयार करने और उसकी फरोख्त पर पूरे मुल्क में पाबंदी आयद करने की तजवीज पेश की है। चौथा उत्तर प्रदेश बैन अल-अक़वामी ट्रेड शो आज ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में शुरू हो रहा है। जापान में जारी एशियाई खेलों में कमल जीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी 10 मीटर के एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें राउंड में अजरबैजान के साथ मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में वाराणसी से गुजरात में वडनगर तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम के साथ इस गुफ्तगू से सेवा यात्रियों को अपने सफर के तजुर्बात शेयर करने का मौका मिलेगा, जिसका मकसद सफर में आने वाले मकामात पर नौजवानों की शमूलियत और कम्युनिटी खिदमात को मुंसलिक करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और ये आवामी खिदमत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 25 साल को उजागर करने के वसीतर सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। इसमें शामिल अफराद कस्बों, जिलों, तालुकों और गांवों से होकर सफर करते रहे हैं। इसमें कम्युनिटी खिदमात और आवामी राबतों की सरगर्मियों को सबसे निचली सतह तक ले जाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। यह सफर मोटरसाइकिल मुहिम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इस तरह तरतीब दिया गया है कि यात्रा के रास्ते पर मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत, राबतों, नौजवानों की शमूलियत, समाजी बहबूद, सकाफती राबतों और लोगों को यकजा किया जा सके। वडनगर और वाराणसी के दरमियान दोनों तरफ से होने वाली मोटरसाइकिल यात्राओं में नौजवान अफराद मुख्तलिफ रियासतों, जिलों और गांवों से होकर गुजर रहे हैं। इस सफर के दौरान सेवा यात्रा में शामिल अफराद मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें सफाई सुथराई की मुहिम और स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और दीगर मकामात पर सरगर्मियां भी शामिल हैं। ये सेवा यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। यशस्वी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: वजीर आजम ने कल वडनगर से वाराणसी तक सफर करने वाले सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ गुफ्तगू की थी और सबसे निचली सतह पर मुल्क की तामीर की सम्त एक अहम कदम के तौर पर उनके सफर की सताइश की थी। इस गुफ्तगू में जनाब मोदी ने यात्रा के शुरुका से उनके तजुर्बात, लोगों के साथ उनकी मुलाकात और नया सीखने के ताल्लुक से उनके तजुर्बात से वाकफियत हासिल की। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह की यात्राएं मुल्क की गुनागुनियत को नौजवान अफराद के समझने में अहम रोल अदा करती हैं। उनकी इस गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया गया कि यात्रा महज एक मकाम से दूसरे मकाम तक का सफर करने का नाम नहीं, बल्कि ये लोगों से मिलने, उन्हें समझने और सेवा के जज्बे को अमली शक्ल देने का नाम है। आज मेक इन इंडिया पहल को 12 साल मुकम्मल हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और अख्तरा का एक आलमी मरकज बनने के मकसद से 2014 में आज के ही दिन इस पहल का आगाज किया गया था। मुख्तलिफ सनतों में पैदावार, सरमायाकारी और सलाहियत में वसत के साथ इस पहल से भारत का मैन्युफैक्चरिंग का मंजरनामा पूरी तरह बदल गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़श्ता बरसों में मेक इन इंडिया पहल से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सफर में शामिल होने की खातिर कारोबारी इदारों और सरमायाकारों के लिए नए मौके पैदा हुए हैं। मस्कुरा पहल के तहत अब 27 शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है, जिसमें 15 मैन्युफैक्चरिंग में और 12 खिदमात के शोबे में हैं। इनमें सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने, इख्तरा को फरोग देने और आलमी दर्जे का बुनियादी ढांचा तैयार करने पर खास जोर दिया गया है। मस्कुरा पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की तैयारी में तकरीबन 7 गुना इजाफा हुआ है। इसी अरसे के दौरान मोबाइल फोन तैयार करने के शोबे में तकरीबन 33 गुना का इजाफा हुआ। इसी मुद्दत में भारतीय रेलवेज ने तकरीबन 55,000 रेल डिब्बे तैयार किए, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में रेल डिब्बों की सालाना औसत प्रोडक्शन 3,000

0: हजार 300 से भी कम थी। इसके अलावा मेक इन इंडिया पहल के तहत अंदरूने मुल्क दिफाई सामान की तैयारी माली साल 2025-26 में बढ़कर 1,78,000 करोड़ की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई, जबकि 2014-15 में ये 46,429 करोड़ थी। इस तरह दिफाई सामान की तैयारी में 4 गुना इजाफा हुआ। मस्कूरा पहल में अब ज्यादा सामान तैयार करने से आगे बढ़कर हुनरमंदी, तकनीक और इन्हें अंदरूने मुल्क तैयार करने की सलाहियत बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: भारत की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने पनीर के तौर पर एनालॉग प्रोडक्ट तैयार करने और इसकी फरोख्त पर पूरे मुल्क में पाबंदी आयद करने की तजवीज पेश की है। एक नोटिफिकेशन में अथॉरिटी ने कहा है कि डेयरी के जिम्मे में एनालॉग जुमरे के तहत लाइसेंस याफ्ता या रजिस्टर्ड अशिया के लिए उनके नाम, लेबलिंग या मार्केटिंग में पनीर की इस्तलाह का इस्तेमाल तर्क करना होगा। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने एनालॉग पनीर के लिए फूड सेफ्टी और मेयारात से मुतालिक 2011 के जाब्तों में तरमीम तजवीज की है। एनालॉग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और इसकी फरोख्त पर बंदिश आयद करने के लिए ऐसा किया गया है ताकि सारिफिन को प्रोडक्ट की नौइयत और उसे तैयार करने के ताल्लुक से गुमराह न किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ता अहद का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खुसूसी सीरीज में हम इस बात का तज़किरा करेंगे कि किस तरह श्री अन्न या मोटे अनाज के जरिए इस नजरिए को बरवकार लाया जा रहा है।
2: बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, गुटकी, सानवा, राजगिरा जैसे मोटे अनाज सदियों से भारत की रिवायती गिजा का हिस्सा रहे हैं। भारत सरकार अब इन अजनास को श्री अन्न के तौर पर फरोग दे रही है। 2023 में मोटे अनाज के बैन अल-अक़वामी साल ने भी आलमी सतह पर इनकी मकबूलियत में इजाफे में मदद की है। मोटा अनाज फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और तग़ज़िया से मुतालिक दीगर फायदे फराहम करता है। ये मुतवाजन ग़िज़ा का एक बेहतरीन हिस्सा है और ज़ियाबीतस और मोटापे जैसी तर्ज जिंदगी से मुंसलिक बीमारियों को कंट्रोल में रखने खास तौर से अहमियत के हामिल हैं। जयपुर के स्वाभिमान सिंह मेडिकल कॉलेज के सीनियर फैकल्टी डॉक्टर पुनीत सक्सेना ने कहा कि मोटा अनाज कुदरती तौर पर ग्लूटेन फ्री और तग़ज़िया से भरपूर होता है।
3: मिलेट, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
2: मोटे अनाज को कम पानी की जरूरत होती है, जिससे ये पानी की बचत और मौसम के उतार चढ़ाव के बावजूद खेती बाड़ी के लिए मौजू है। राजस्थान खास तौर से बाजरे की पैदावार के सिलसिले में रिवायती तौर पर एक अहम रियासत है। अब तवज्जो पैदावार से प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और बाजार तक बेहतर रसाई पर मबनी है। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। चौथा यूपी बैन अल-अक़वामी ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में आज से शुरू हो रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इस 5 रोजा तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। ये नुमाइश 29 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसमें रियासत के कारोबारी, मैन्युफैक्चरर्स और बरामदकार बराह रास्त आलमी बाजार से राबता कायम कर सकेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
4: इस ट्रेड शो में 2400 से ज्यादा नुमाइशकारों, 1.5 लाख B2B खरीदारों की शिरकत और 4.5 लाख से ज्यादा इसे देखने आने वालों का इम्कान है। 85 मुल्कों से 550 से ज्यादा बैन अल-अक़वामी खरीदारों के भी इसमें शिरकत करने की उम्मीद है। ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम साझेदार मुल्कों के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। तिजारत और सनत में खवातीन के बढ़ते रोल की अक्कासी करते हुए तकरीबन 300 खवातीन नुमाइंदगान इसमें सरगर्मी से शामिल रहेंगी। इस नुमाइश में ज़राअत, ऑटोमोबाइल, दिफा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेहत, सियाहत और काबिल तजदीद तमन्नाई समेत मुख्तलिफ सनतों और

0: मनसूबों की अक्कासी की जाएगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शोएबा।
1: आज पूरे मुंबई में अनंत चतुर्दशी मनाई जा रही है, जो गणेश चतुर्थी के मौके पर शुरू हुए 10 रोजा गणेश उत्सव के अख्ताम पर मनाई जाती है। मुंबई वाले गणपति बाप्पा मोरिया कहते हुए भगवान गणेश को अलविदा कहेंगे और उन्हें सुपुर्द आब किया जाएगा। ये तकरीब मुंबई में कई मकामात पर होगी। महाराष्ट्र के सियाहती महकमे ने इस सिलसिले में वसी तर इंतजाम किए हैं। शहर की पुलिस ने भी सिक्योरिटी बंदोबस्त किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यह मानना था कि माशरे की सबसे पिछली कतार में खड़े होने वाले शख्स की बहबूद ही मुल्क की तामीर की बुनियाद है। वजीर आजम ने कहा कि अंत्योदय का उनका फलसफा अवामी बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए एक बड़ी तरगीब के तौर पर काम करता रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यौम पैदाइश के मौके पर आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम ट्रांसपोर्ट सर्विस का आगाज किया जा रहा है। रियासत के वजीर आला डॉ मोहन यादव भोपाल में एक प्रोग्राम में इस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। शिमाली साहली आंध्र प्रदेश और इससे मुल्हिका जनूबी ओडिशा के ऊपर बनने वाला हवा के गहरे दबाव का हल्का कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसके जेर असर ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। जनूबी और मगरबी जिले सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। 6 जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज आज भी बंद हैं। हुक्काम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वहीं आज मगरबी बंगाल में मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एशियन गेम्स में जापान के नागोया में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई है। इफ्तिताही सीरीज में 196 स्कोर करने के बाद भारतीय जोड़ी ने दूसरी सीरीज में 195 स्कोर किए और वो 391 पर पहुंच गई, जिससे फाइनल में पहुंचने की उसकी उम्मीदें मजबूत हो गईं। कल समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें राउंड में दिफाई चैंपियन भारत ने अजरबैजान के साथ मुकाबला 2-2 से बराबरी पर खत्म किया। आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगैसी, डी गोकेश और विदित संतोष गुजराती ने अजरबैजान के अपने हरीफ खिलाड़ियों के साथ मुकाबले ड्रॉ किए। भारत 13 मैच पॉइंट्स के साथ ओपन सेक्शन में मुश्तरका तौर पर दूसरी पोजीशन पर बरकरार है। उज्बेकिस्तान और जर्मनी 14 मैच पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर हैं। खवातीन के जुमरे में दिफाई चैंपियन भारत ने कजाकिस्तान के साथ 2-2 से ड्रॉ किया और मुश्तरका तौर पर दूसरे मकाम पर रहा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि खिदमत ही जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। उन्होंने साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर के लिए नौजवानों के रोल को भी उजागर किया। रोजनामा प्रताप ने सारिफिन के उमूर, खुराक और अवामी निजामे तकसीम की वजारत की इस बयान को सफे अव्वल पर जगह दी है कि सरकार ने खुर्दनी तेल की बैनुल अक्वामी कीमतों में इजाफे के पेश नजर कस्टम ड्यूटी में कमी कर दी है। इसी अखबार की एक और खबर है, मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में वाक IISC में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज का इफ्तिताह करेंगे। इसका मकसद आसपास के कम्युनिटी मसाइल की शनाख्त और इसके अमली हल के लिए तरगीब देना है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन भी सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ गुफ्तगू करेंगे। मेक इन इंडिया पहल को आज 12 साल मुकम्मल हो रहे हैं, जो मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनाने के मकसद से शुरू की गई थी। भारत की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने एनालॉग पनीर तैयार करने और उसकी फरोख्त पर पूरे मुल्क में पाबंदी आयद करने की तजवीज पेश की है। चौथा उत्तर प्रदेश बैनुल अक्वामी ट्रेड शो आज ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में शुरू हो रहा है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी 10 मीटर के एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 200

0: 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

नमस्कार प्रयागराज, नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो हमराही नेहा। दोस्तों, आज का दिन कैलेंडर का कोई साधारण पन्ना नहीं है, बल्कि आज का दिन जज्बातों, त्योहारों, देशभक्ति और सेवा के रंगों से सजी एक खूबसूरत किताब है। दोस्तों, आज का दिन खास है क्योंकि आज प्रकृति भी एक अलग भक्तिमय रंग में रंगी नजर आ रही है। जी हाँ, आज है अनंत चतुर्दशी, जिसे हम सब अनंत चौदस भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा पावन दिन है जिसमें हम सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अनंत शब्द का असल मायनों में क्या अर्थ है? बिल्कुल हाँ, आप जानते ही होंगे, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि अनंत का मतलब है जिसका ना कोई आदि हो और ना ही कोई अंत, यानी जो समय और सीमाओं से परे हो। आज के दिन भगवान विष्णु के इसी अंतहीन, अजन्मे और अविनाशी स्वरूप की पूजा की जाती है। साथियों, इस दिन की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है अनंत सूत्र। जब दोस्तों पूजा की जाती है इस दिन, तो पूजा के दौरान रेशम या सूत के धागे में 14 गांठें लगाई जाती हैं और उन्हें अपनी कलाई में या फिर अपने हाथों में, अपने आर्म्स में कहीं भी बांधा जाता है। इन 14 गांठों को विष्णु भगवान द्वारा बनाए गए 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, पुरुष इसे दाहिने हाथ और महिलाएं इसे अपने बाएं हाथ पर बांधती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह रक्षा सूत्र जीवन के हर संकट से हमारी रक्षा करता है। और पूजा के समय ये जो रक्षा सूत्र हम बांधते हैं, ये हमें बाद में भी और उस वक्त भी, यानी हमारे आगे के जीवन में भी, जब जब हम इस रक्षा सूत्र को देखते हैं, तो हमें ये याद दिलाता है कि ईश्वर की कृपा हमारे साथ हमेशा है। और ईश्वर की कृपा तो वैसे भी दोस्तों किसी भी त्यौहार की नहीं होती है, वो हर दिन हमारे साथ होती है। तो जैसे साथियों, जिस तरह श्री विष्णु परोक्ष रूप से सारे संसार का पालन करते हैं, उसी प्रकार समाज का जो अंतिम व्यक्ति भी भूखा न सोए, इसके लिए हमारी सरकारें भी अंत्योदय जैसी योजनाएं संचालित करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 25 सितंबर यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस के दिन को ही सरकार अंत्योदय दिवस के नाम से मनाती है। दोस्तों, अंत्योदय का जो अर्थ है वो होता है अंतिम व्यक्ति का उत्थान, यानी समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो सपना जहां विकास की रोशनी समाज के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक भी पहुंचे। दोस्तों, इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित और कमजोर तबके के लोगों के कल्याण के लिए जागरूकता और तरक्की की राह में नए अवसर प्रदान करना था। तो दोस्तों, हम भी ये संकल्प लें कि हमारी वजह से निचले तबके का या जो भी हमसे नीचे हो, गरीब हो, अगर हमारी तरफ से कोई भी उसके लिए अवसर हम प्रदान कर पाएँ तो ये बहुत अच्छी बात होगी। कोई भी दिन या दिवस मनाए जाते हैं तो उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि हर इंसान, सरकारें तो अपना कार्य कर ही रही हैं, लेकिन हम आम जन भी इसमें सहभागिता ले सकते हैं और इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं।

0: और दोस्तों जब इसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की योजनाएं सरकारें चलाती हैं तो और भी ऐसे कई सिपाही हैं जो अपने अलग अलग क्षेत्रों में मुस्तैद खड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी समाज को सेहतमंद बनाए रखने के लिए 2400 घंटे मुस्तैदी से रहने वाले हमारे सुपर हीरोज़ का भी आज दिन है। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ हमारे फार्मासिस्ट की। तो आज दोस्तों दिन है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। जी हाँ, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वहाँ पर एक बैग लेकर एक भाई या बहन बैठे रहते हैं और बड़ी बेसब्री से डॉक्टर का इंतज़ार करते हैं कि वो अपने मरीजों से फारिग हों तो उनकी तरफ तवज्जो दें, देखें। तो वो किस लिए बैठे होते हैं पता है दोस्तों? वो होते हैं हमारे फार्मासिस्ट भाई बहन। जो डॉक्टर अगर हमें नुस्खा देता है ना, हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर डॉक्टर हमें नुस्खा देते हैं, लिखते हैं डॉक्टर, तो उस नुस्खे को हमारे जीवन में दवाओं के रूप में पहुंचाने का काम हमारे फार्मासिस्ट भाई बहन ही करते हैं। बीमारी के दौर में मुस्कुराकर सही दवा हमारे हाथों तक पहुंचाने वाले सभी फार्मासिस्ट दवा विशेषज्ञों के योगदान को सराहने और सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 25 सितंबर यानी आज के दिन ही वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, हम भी सम्मान करते हैं ऐसे फार्मासिस्ट भाई बहनों का जो रोज़ कड़ी धूप, बारिश और सर्दी में भी इधर उधर डॉक्टरों के आसपास जा जाके हम तक सही अच्छी दवाएं पहुंचाते हैं। और दोस्तों, जब समाज की बात हो गई तो आगे बात करते हैं राष्ट्र की। तो दोस्तों, आज का दिन है राष्ट्र के लिए गौरव का दिन। जी हाँ, आज देश इतिहास रच रहा है। कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। आज हमारे देश की रग रग में जोश भरने वाली हमारी आज़ादी के तराने, हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की संगीतमय प्रस्तुति को पूरे 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। है ना हैरत की बात दोस्तों, कि हम इतने दिन से अपने स्कूलों में, सरकारी संस्थानों में, या स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस में जिस राष्ट्रगीत को गा रहे थे, असल में उसको 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर आज देश भर के हजारों स्कूलों में नमामि भारतम कार्यक्रम के तहत राष्ट्रगीत करोड़ों कंठों से एक साथ गूंजेगा। यानी स्कूलों में सभी बच्चों के द्वारा एक साथ 1 करोड़ लोगों द्वारा गाए जाने का आज लक्ष्य लिया गया है और इसे पूरा किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों में, युवाओं में राष्ट्र भावना को जगाने का ये एक बहुत बड़ा अभियान है। इससे बच्चों में राष्ट्र भावना जागेगी। तो हमने बात की आज अनंत चतुर्दशी की भी और फार्मासिस्ट डे की भी बात की। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आगे, अपने आगे बात करें तो कल से स्टार्ट हुआ है दोस्तों गणेश जी का विसर्जन। मतलब जो 10 दिन से जो गणपति बप्पा हमारे घरों पे रह रहे थे, पिछले 10 दिनों से हमारे घरों और दिलों को अपनी मौजूदगी से महका रहे थे, उन्हीं गणपति बप्पा जी का कल से विदाई शुरू हो गया है, यानी विसर्जन शुरू हो गई है। तो हमने भी ये विदाई की और हम कर रहे हैं, आज भी लोग कर रहे हैं। लेकिन ये विदाई दोस्तों एक उदासी नहीं है, बल्कि अगले बरस जल्दी आने की वादे की है। दोस्तों, आज जब गणपति जी को आप विदा करें तो उनसे केवल सुख समृद्धि ना मांगें, बल्कि ये प्रार्थना करें कि वह हमारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मा को भी अपने साथ विसर्जित कर दें। और हम दोस्तों ये भी कहेंगे कि विसर्जन के समय थोड़ी सावधानी बरतें, कोई भी अराजक तत्व जो परेशानियां फैलाते हैं वो सब ना हो। हम जो भी करें वो सही और सुरक्षा की दृष्टिकोण से करें। तो चलते चलते दोस्तों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बधाई देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। और नमस्कार प्रयागराज, दीजिए विदा मुझे यानी अपनी हमराही नेहा को।
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया अभयकांत तिवारी ने। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आगाज कर रहे हैं फिल्म छिछोरे के इस गाने से, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने। अमिताभ भट्टाचार्य के बोलों को सुरों में पिरोया है प्रीतम ने।

अभी आपने फिल्म धुरंधर से गाना सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मैनपुरी और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का।
1: जन सेवा से देश सेवा के उद्देश्य से संचालित 25 साल सेवा संकल्प अभियान के तहत जनपद में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा जनपद मैनपुरी के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यक्रमों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों की जानकारी आम जन तक पहुँचाई जा रही है। प्रदर्शनी में महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास योजना, कौशलों किसानों के कल्याण, सांस्कृतिक विकास संरक्षण, आधारभूत ढांचे के विकास और आध्यात्मिक केंद्रों से जुड़े कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में एक जनपद एक उत्पाद, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना सहित विभिन्न योजनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। खेती में ड्रोन के उपयोग, सोलर पंपों की स्थापना और नवीन मंडियों के आधुनिकीकरण से जुड़े कार्यों की जानकारी भी प्रदर्शित की गई। साथ ही विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की परिकल्पना और प्रदेश की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं को भी चित्रों के माध्यम से बताया गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर जिला चिकित्सालय में सेवा दिवस आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने शिविर का शुभारंभ किया और मरीजों को फल वितरित किए। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुर्घटनाएं, गंभीर बीमारी, ऑपरेशन अथवा अन्य चिकित्सीय परिस्थितियों में समय पर रक्त उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 12 अक्टूबर से प्रस्तावित दस्तक अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर विकास, पंचायती राज, पशुपालन, कृषि, शिक्षा और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले वर्षों में जिन क्षेत्रों में वेक्टर जनित बीमारियों के मरीज मिले हैं, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। नियमित सफाई के साथ साथ एंटी लार्वा का छिड़काव, झाड़ियों की कटाई और जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन गाँवों में बुखार के अधिक मरीज मिले, वहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों को जाँच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त दवाओं और चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने थाना घिरोर में जन शिकायतें सुनी। नेंगला राजा कोसमा हिनूद निवासी आकाश और ममता देवी ने निजी भूमि पर अवैध कब्जे शिकायत की। जिलाधिकारी ने प्रभावी निरीक्षक को दोनों पक्षों को बुलाकर राजस्व अभिलेखों से भूमि का मिलान कराने और जबरन कब्जा पाए जाने पर उसे हटाने के निर्देश दिए। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने विकासखंड किसनी के ग्राम कटरा समान स्थित पूर्व कन्या माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कापी और पेंसिलें वितरित की। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षक बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि उनके चरित्र, विचार और व्यक्तित्व के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी क्रम में एक निजी विद्यालय में राजस्थानी लोक संगीत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक गायक और खड़ताल वादक कुटला खान ने प्रस्तुति, उनके साथ दारे खान ने कमायचा, गोराम खान ने ढोलक तथा दयाम खान ने हारमोनियम और गायन से संगत की। विद्यार्थियों ने खड़ताल, कमायचा और ढोलक जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को करीब से देखा और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। कलाकारों ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि लोक संगीत किसी क्षेत्र की परंपराओं, इतिहास, सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का माध्यम है। विद्यालय की प्रशासनिक प्रधानाचार्य डॉक्टर कुसुम मोहन और उप प्रधानाचार्य जयशंकर तिवारी ने कलाकारों का स्वागत किया।
0: मैनपुरी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
2: रामपुर में सेवा संकल्प अभियान एवं 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुष विभाग द्वारा स्वस्थ कल के लिए आयुर्वेद विषय पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में शहर स्थित अम्बेडकर पार्क में योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर का नेतृत्व नगर रामपुर की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शालिनी गंगवार ने किया। शिविर में लगभग 55 लोगों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया। इस दौरान स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित योग एवं आयुर्वेद को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया।

0: जनपद में अंगदान महादान का संदेश लेकर सेवा संकल्प अभियान आगे बढ़ाया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जनमानस को अंगदान की शपथ दिलाई गई। इस दौरान जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने तहसील शाहबाद में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर सेवा संकल्प अभियान के तहत अंगदान महादान का संदेश देते हुए अधिकारियों एवं आमजन को अंगदान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद अंगदान के माध्यम से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन प्रदान किया जा सकता है। जनपद में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित 860 किसानों को फसल क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान मुआवजा राशि 49,67,000 रुपए का वितरण किया गया। राजस्व विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं स्थलीय सत्यापन के बाद पात्र किसानों को शासन से राहत दी गई। राहत शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराई गई। तहसील सदर के 336 किसानों को करीब 12 लाख, स्वार के 47 किसानों को करीब 5.5 लाख, शाहबाद के 451 किसानों को लगभग 31 लाख तथा टांडा के 26 किसानों को 1.5 लाख रुपए की धनराशि वितरित की गई। जनपद में अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन द्वारा परिवर्तन अभियान चलाया गया। विशेष अभियान के तहत खनन विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों ने सघन जाँच करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले 9 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। रामपुर निवासी उद्यमी नाजिम खान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना जीवनदायिनी साबित हुई। नाजिम खान ने पत्नी सादिया रईस के नाम से ग्रामोद्योग विभाग में आवेदन कर 9,50,000 रुपए का लोन स्वीकृत कराया। इसी वित्तीय संबल में अपनी बची पूंजी मिलाकर उन्होंने ई रिक्शा निर्माण की यूनिट स्थापित कर दी। आज नाजिम न सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण सम्मान के साथ कर रहे हैं बल्कि 25 स्थानीय कारीगरों को नियमित आजीविका देकर ग्रामीण स्वावलंबन और उद्यमशीलता की मिसाल बने हुए हैं। नाजिम खान ने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना से मिले ऋण से बड़ी मदद मिली। वहीं जिला ग्राम उद्योग विभाग अन्य जरूरतमंदों की भी सहायता बड़े पैमाने पर कर रहा है। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में उद्यमियों की हर संभव सहायता की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना जिसमें 10 लाख का ऋण हमने सादिया लेक जी आवेदन कराया और बैंक के द्वारा उन्हें वित्त पोषण कराया और इसके लिए उन्होंने जो इकाई स्थापित की वो ऑटो रिक्शा बनाने का कार्य उन्होंने किया।
0: जनपद में आधार बनवाने के नाम पर बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ। साइबर क्रिमिनल अंगूठा निशानी लेकर अकाउंट बनाकर एक्सेस अपने हाथ में लेते थे। साइबर फ्रॉड से ली गई रकम इन खातों में ट्रांसफर करते थे। पुलिस अधीक्षक अनिल सिसोदिया ने बताया कि सुराग रस्सी और अन्य सबूत के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जनपद की तहसील बिलासपुर क्षेत्र में भाखड़ा डैम के निकट सड़क का एक हिस्सा धंसने की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मौके पर स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों से सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने धसे हुए हिस्से के आसपास आवागमन तत्काल बाधित कराया। जिलाधिकारी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर सतर्कता बरतते हुए निरंतर निगरानी बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। जनपद में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत जिला गंगा समिति द्वारा कोसी घाट पर विशेष स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जिला परियोजना अधिकारी लव कुमार तथा आर्ट ऑफ लिविंग के शुभम मिश्रा ने स्वयं श्रमदान करते हुए घाट परिसर की साफ सफाई की। अभियान के दौरान घाट एवं आसपास के क्षेत्र में मूर्ति अवशेष प्लास्टिक तथा अन्य अपशिष्ट सहित लगभग 80 किलोग्राम कचरा एकत्रित किया गया। एकत्रित कचरे को निर्धारित तरीके से निस्तारण के लिए भेजने की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को नदी एवं घाटों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में ये देशगान।

0: अभी आप संवेद सुर में ये देश गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: आज आप सुनेंगे अदब, शायरी और ज़ौके सुखन से सजा हमारा खास प्रोग्राम बैतबाजी। वो महफिल जहां अल्फाज बोलते हैं, अशार दिलों तक पहुंचते हैं और हर तरफ एक नई शायरी का दरवाज़ा खुलता है। आज की इस महफिल में होगा मुकाबला दो टीमों के बीच, मगर ये मुकाबला तलवारों का नहीं, अल्फाज और अशार का है।

0: राज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर।
1: वाह, बहुत खूब बहुत खूब, कुछ तो ख्याल कर। टीमें
2: रहे दो दो फरिश्ते साथ, अब इंसाफ क्या होगा। रहे दो दो फरिश्ते साथ, अब इंसाफ क्या होगा। किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा।
1: क्या बात है, क्या बात है। अलीफ
3: अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तखय्युल से फजोतर है वो नज़ारा।
1: वाह अली।
4: अगर होता जमाने में हुसूले इल्म बा मेहनत, तो हर जाहिल किताबें कापियां धो धो के पी लेता।
1: वाह बहुत खूब, तो हर जाहिल किताबें कापियां धो धो के पी लेता। अली
0: अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले।
1: वाह बहुत खूब।
3: ये नई नस्ल जो उर्दू के परे भागे हैं, ये नई नस्ल जो उर्दू के परे भागे हैं, ये कुतुब खाने तो दीमक के हवाले होंगे।
1: वाह होंगे।
3: ये हंसी खुशी का मौसम, ये बहार का जमाना, तेरे वास्ते हकीकत मेरे वास्ते फसाना।
1: वाह क्या बात है, मेरे वास्ते फसाना। अली
3: ए तायरे ला होती इस रिस्क से मौत अच्छी, ए तायरे ला होती इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही।
1: जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। बहुत खूब बहुत खूब, कोताही। ये टीम भी
3: ये बात किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में कुरान।
1: कारी नजर आता है हकीकत में कुरान। क्या बात है, बहुत अच्छा। नून
3: नशे मन के हिल उठ जाने का गम होता तो क्या गम था, नशे मन के हिल उठ जाने का गम होता तो क्या गम था, यहाँ तो बेचने वालों ने गुलशन बेच डाले हैं।
1: वाह यहाँ तो बेचने वालों ने गुलशन बेच डाले हैं। नून फिर से
3: नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है।
1: पंखड़ी एक गुलाब की सी है, है, है। ये
3: याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा।
1: वाह बहुत खूब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। बहुत खूब। टीम ए और टीम बी दोनों ने बेहतरीन अशार का इंतखाब करके बैतबाजी के पहले राउंड में दिलचस्प और काबिल तारीफ परफॉर्मेंस दी। आप दोनों के लिए बहुत बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और इसी के साथ हमारे पहले राउंड का इख्तिताम होता है, और अब वक्त जाया ना करते हुए हम आगाज कर रहे हैं बैतबाजी के दूसरे राउंड का। इस लफ्जी राउंड में जैसा कि हमने पहले बताया था कि दोनों टीमों को हम बारी बारी से एक एक लफ्ज देंगे और उसी लफ्ज से मुतालिक आपको शेर सुनाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं टीम ए से। तो टीम ए के लिए हमारा जो पहला लफ्ज है वो है वक्त।
3: सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, सदा आयश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं।
1: वाह बहुत खूब बहुत खूब। तो चलिए टीम बी के लिए हम दूसरा लफ्ज दे रहे हैं हयात।
0: हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो।
1: बहुत खूब बहुत खूब। तो चलिए टीम ए अब आपकी बारी, आपके लिए लफ्ज है कजा।
3: लाई हयात आए कजा ले चले चले, लाई हयात आए कजा ले चले चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले।
1: बहुत खूब बहुत खूब। तो चलिए अब अगली टीम के लिए हमारा लफ्ज है वसल।
0: और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल के राहत के सिवा।
1: बहुत खूब भाई बहुत खूब बहुत उम्दा। चलिए हम आपको देते हैं टीम ए जुदाई।
3: किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ,
1: रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। बहुत खूब भाई अहमद फराज साहब आज छा गए। तो चलिए आपके लिए टीम बी हम लफ्ज दे रहे हैं तखय्युल।
3: अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तखय्युल से फजोतर है वो नज़ारा।
1: बहुत खूब बहुत खूब। तो चलिए टीम ए आपके लिए लफ्ज हम फिर दे रहे हैं तसव्वुर।
3: जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए।
1: बहुत खूब बहुत खूब। तो चलिए اب ٹیم بی کے لیے ہمارا لفظ ہے شام.
0: یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو. یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو. وہ غزل کی سچی

0: किताब है उसे चुपके चुपके पढ़ा करो।
1: बहुत खूब बहुत खूब। शाम की बात हो रही है तो सहर की भी बात कर लेते हैं। तो टीम ए के लिए सहर।
2: सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं।
1: क्या बात है, बहुत खूब। चलिए टीम बी के लिए फिर हम एक लफ्ज देते हैं, दिल।
0: दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है,
1: आखिर इस दर्द की दवा क्या है। क्या कह गए, क्या खूब गालिब साहब कह गए भाई, बहुत खूब। और इस शेर के साथ ही क्यों ना अब हम इस सेकंड राउंड को यहीं पर वक्त की नजाकत देखते हुए इख्तिताम करते हैं। और जोरदार तालियों के मुस्तहक हैं हमारी टीम ए और टीम बी, दोनों ने बहुत ईमानदारी और खूबसूरती से राउंड टू को निभाया। तो चलिए अब तैयार हो जाइए तीसरे और आखिरी राउंड के लिए, जो है हमारा मिसरा राउंड। मिसरा राउंड के बारे में आप लोगों को थोड़ा इल्म है। इसमें क्या होगा कि हम दोनों टीम को बारी बारी एक एक मिसरा देंगे और उस शेर को मुकम्मल करना होगा। ठीक है, तो शुरू किया जाए। तो चलिए टीम ए के लिए हम देते हैं मिसरा। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
2: मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
1: वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मजरूह सुल्तानपुरी का ये बहुत उम्दा शेर था। ये नुमाइश शराब की सी है,
0: हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है।
1: बहुत खूब। किसका शेर है ये भी बता
0: दीजिए। मीर तकी मीर।
1: बहुत अच्छे, बहुत। तो चलिए भाई टीम ए के लिए एक बार फिर से हम आपको एक मिसरा दे रहे हैं। फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते।
3: उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते।
1: क्या बात। और इसके बाद टीम बी के लिए हम मिसरा दे रहे हैं। सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं।
0: सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं।
1: बहुत खूब बहुत खूब। तो टीम ए अब आप रेडी हैं, तैयार हैं? शेख इब्राहिम जौक का एक मिसरा हम दे रहे हैं। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले।
3: लाई हयात आए कजा ले चली चले, लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले।
1: बहुत खूब। टीम भी आपके लिए मिसरा है। जिसको भी देखना हो कई बार देखना।
4: हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना।
1: निदा फाजली साहब का बहुत खूबसूरत शेर है, आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा निभाया। चलिए अब टीम ए आपके लिए एक है। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले।
3: अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले।
1: बहुत खूब। अहमद फराज साहब का भी ये भी एक शेर था। और चलिए लास्ट कर दें। तो टीम बी के लिए हम एक शेर दे रहे हैं। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।
4: हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।
1: बहुत खूब। किसका शेर है ये भी बता दो भाई।
4: मिर्जा गालिब।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बात है, सब लोग एक दूसरे के लिए तालियां बजाइए भाई। आप सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्या उम्दा तरीके से तीसरे राउंड को आप लोगों ने निभाया, उसके लिए आप दोनों टीम दाद की हकदार हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे सामाईन भी बैदबाजी की आज की महफिल से खूब लुत्फंदोज हुए होंगे। वाकई हम बहुत मशकूर हैं दोनों टीमों के। आप दोनों टीम का हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
5: शुक्रिया।
1: आप सभी तलबा के आला मुस्तकबिल के लिए हमारी नई ख्वाहिशात हैं, बहुत सारी दुआएं। और इसी के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं करामत डिग्री गर्ल्स कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत फातिमा का कि आप इन तलबा को हमारे स्टूडियो में अपने साथ लेकर आई। आपके गाइडेंस में इन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामईन, ये थी आज की हमारी बैदबाजी की महफिल। आज इसमें शिरकत करने वाली हमारी टीम ए में थी मोहतरमा जैनब गजाली साहिबा और मोहतरमा अर्शिया खातून साहिबा, और टीम बी में शामिल थी मोहतरमा हया फातिमा साहिबा और मोहतरमा निकहत बानो साहिबा। इन दोनों टीम का ताल्लुक, जैसा कि हमने आपको बताया, करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ से था। और इस प्रोग्राम की तरतीब व पेशकश थी जनाब मोहतरम आसिफ इकबाल साहब की। सामईन, कैसा लगा आपको हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? आप हमें सीधे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। इसे फिर से सुन लें, 7991778157। हमें आपकी राय और खतों का इंतजार रहेगा। सामईन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम

0: दोस्तों, इसी के साथ आज की ये खूबसूरत बैतबाजी अपनी मंजिल तक पहुंचती है। किसी ने अशार से दिल जीता, किसी ने अल्फाज से महफिल सजाई और किसी ने अपनी यादगार शायरी से आज के दिन को खास बना दिया। मगर असल जीत तो उर्दू अदब और शायरी की है, जिसने हमें एक दूसरे से जोड़ा और कुछ पल के लिए हमें खूबसूरत ख्यालों की दुनिया में पहुंचा दिया। इसी दुआ के साथ कि आपके दिल में शायरी की ये खूबसूरत महफिल यूं ही आबाद रहे, आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपसे इजाज़त चाहता है। आदाब।
1: अभी सामईन समाप्त फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश थी।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते

0: सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं सात्विक मिश्रा। इनके स्वर में लीजिए सुनिए ये भक्ति रचना। रचना सूरदास जी की है।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: लीजिए अब सुनिए तुलसीदास जी की रचना सात्विक मिश्रा के स्वर में।

अभी अपने सात्विक मिश्रा के स्वर में तुलसीदास जी की ये भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। 10 बजने को हैं समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
1: आपकी तरफ उम्मीदों की दृष्टि से देश देख रहा है, युवा पीढ़ी देख रही है, आने वाली पीढ़ियों को भी ये आपकी बातें बहुत काम आने वाली है। आपको मेरा एक और आग्रह भी है कि आप यात्रा पूरी होने के बाद, क्योंकि आप 10-10 रूट के लोग हैं, अभी तो आप जब चल रहे हैं तो 20 लोग हैं, लेकिन जब पहुंचेंगे तब आप 500 लोग हो जाएंगे। जब वडनगर पहुंचेंगे तब 500 लोग होंगे, 7 अक्टूबर को आप पहुंचेंगे, जब काशी पहुंचेंगे

0: भी 500 लोग होंगे। इन 500 लोगों ने 2-3 घंटे एक साथ बैठ करके अपने अनुभवों की चर्चा करनी चाहिए।
1: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा कि डेयरी संदर्भ के में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों का नाम, लेवल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और इस में इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान ही राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणादायक है। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या 17 हो गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में बहुत तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। दस बजकर 5 मिनट हो रहे हैं, लीजिए अब सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज।
4: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज में। आज हमारे साथ हैं नेहा जी और हमारे साथ हैं एक विशेष शख्सियत डॉक्टर ऋचा पाठक जी, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। नेहा जी, कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है, सभी के साथ होता है कि कोई जाना पहचाना नाम याद ना आए या आप कुछ बोलने के लिए मुँह खोले और वो शब्द ही दिमाग में न आए।
5: कई बार
4: कोई चीज सामने रखी हुई, कोई पेन पेंसिल या कुछ भी मोबाइल सामने रखा है, लेकिन हम उसको ढूंढ रहे हैं, वो हमारे नजर

0: सामने है, ऐसा कभी होता है? या कोई किताब हम पढ़ रहे हैं
1: जी
0: और वो हमारी आंखें तो पढ़ रही हैं लेकिन हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको ग्रहण नहीं कर रहा है, हो सकता है ये कंडीशन हो ब्रेन फॉग की। आज
1: जी
0: हम डॉक्टर ऋचा पाठक से ब्रेन फॉग के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।
1: जी
0: तो मैडम, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ब्रेन फॉग होता क्या है?
1: ब्रेन फॉग एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है जिसमें कई चीजें शामिल होती हैं। अभी हम उसके कारण पे नहीं जाएंगे, पहले हम उसके स्वरूप को जानते हैं कि उसमें हमारी मेमोरी प्रभावित हो जाती है, हमारा ध्यान प्रभावित हो जाता है। कई बार ध्यान प्रभावित होने की वजह से भी मेमोरी प्रभावित होती है। मेमोरी प्रभावित होने के दो कारण हैं, एक तो मेमोरी खुद में प्रभावित है और दूसरी बात यह है कि हमारा ध्यान प्रभावित हो गया तो हमने किसी चीज की जब इनकोडिंग की तो प्रॉपर अटेंशन नहीं रखा, तो वो इनकोडिंग ही प्रॉपर नहीं हुई तो हम उसको रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो प्रोसेस होता है, एक फैटिक की कंडीशन होती है, जो प्रोसेसिंग होती है, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है, वो स्लो हो जाती है। हमारे डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी में, हमारे फंक्शनिंग में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। कोई शब्द है, हम बार बार उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, कई बार हमने पढ़ लिया लेकिन वो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं जा रही है। ये अगर कभी कभार किसी के साथ होता है तो एक सामान्य स्थिति है, लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, लगातार बढ़ रही है प्रॉब्लम और हमारे रूटीन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी समय हम थके हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा, रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएंगे, कभी कोई इमोशन अराउजल है, कोई प्रॉब्लम हुई है, थोड़ी देर बाद फिर कुछ घंटे बाद हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर वो एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट है तब वो प्रॉब्लम नहीं, वो सामान्य स्थिति है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है और आपको सामान्य जो व्यवहारिक जीवन है उसमें काम करने में समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से उस पे सजग हो जाना चाहिए। ये इसको आप हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह से संकेत है कि अब आप अलर्ट हो जाइए।
2: डॉक्टर ऋचा, अभी आपने कहा कि भाई ब्रेन फॉग की कंडीशन इसलिए होती है कि हमारा जो ध्यान है वो लगातार भंग हो रहा है। अगर ध्यान भंग हो रहा है तो हमारी मेमोरी भी प्रभावित हो रही है, एनकोडिंग डिकोडिंग ठीक नहीं हो रहा है। ये ध्यान कैसे भंग होने लगता है, वो भी लगातार?
1: कई वजह हो सकती हैं। ब्रेन भी हमारे शरीर का ही हिस्सा है। हमारी शारीरिक कई समस्याएं ऐसी हैं जिनकी वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, ब्रेन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ये इस तरह के कुछ फिजिकल रीजंस हो सकते हैं।
2: जी
1: कई बार कुछ मेंटल रीजंस भी होते हैं कि एक लंबे समय तक कोई स्ट्रेस में रह रहा है। कई बार लोग मल्टीटास्किंग के वजह से भी इस स्थिति में चले जाते हैं, हालांकि ये इसको अकेले को हम नहीं मानते, लेकिन मल्टीटास्किंग अक्सर फैटिक क्रिएट करती है, जिसको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम स्विच कास्ट कहते हैं। कहते हैं ना कि शहर में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उसका एवरेज कम निकलता है, जब आप हाईवे पर जाएंगे तो उसका एवरेज ज्यादा, क्योंकि क्लच गियर का वहाँ यूज कम से कम होता है। जब हम वर्क को स्विच करते हैं, कई काम को स्विच करना है इधर से उधर, तो उसमें क्या होता है, स्विचिंग में हमेशा कुछ देर के लिए हमारे ब्रेन की स्पीड स्लोअर हो जाती है और वो एरर प्रोन बन जाता है। अगर ये बार बार होता रहा तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और मल्टीपल वर्क करने के साथ अगर वो सारे वर्क अटेंशन जा रहे हैं तो आपके अंदर एक फैटिक क्रिएट हो जाती है, थकान महसूस होती है, तो ये भी एक वजह बनती है। उसके कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि वहां से आपको सचेत होने की जरूरत है। जब आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपके पैटर्न को देखेंगे, उस पैटर्न के हिसाब से आपके से टेस्ट कराएंगे और अकॉर्डिंग टू टेस्ट फिर वो आपके आगे का ट्रीटमेंट करेंगे।
2: जी
0: डॉक्टर ऋचा पाठक, आपने बताया कि ब्रेन फॉग के कारण क्या क्या हो सकते हैं और इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक तरह, एक हिप्नोथेरेपिस्ट की तरह, आपके पास जब कोई मरीज आया तो आप कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करती हैं कि ये सामान्य भूलने की आदत है या ये ब्रेन फॉग की कंडीशन है?
1: देखिए, मनोविज्ञान में सामान्य और असामान्य के लिए बड़ी स्पष्ट सी स्थिति बताई गई है और वो है फ्रीक्वेंसी। एक व्यक्ति नॉर्मल हंसता है तो वो सामान्य है, अगर कोई आदमी पूरे टाइम हंसता रहे तो वो एबनॉर्मल है। कभी किसी बात पे कोई रोया, ये सामान्य है, अगर वो पूरे टाइम रोता रहा है तो अपना उसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाएगी। कोई चीज एक लिमिट को क्रॉस कर गई तो असामान्य हो गई, सिंपल सी बात है। कभी कभार भूल जाना, कभी कोई बात याद ना आना, कभी चाबी रख के भूल जाना, ये नॉर्मल है, जो एक तरह से एजिंग प्रोसेस से भी कई बार होता है। कई बार और भी वजह बनती हैं, मल्टीटास्किंग से भी ये बात हो जाती है कि दिमाग कई चीज में बटा है तो जो उसने इनकोडिंग की वो प्रॉपरली नहीं हुई, इसलिए हम रिकलेक्ट नहीं कर पाए। तो ये नेचुरल फेनोमेना है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपसे वो गलती बार बार हो रही है और वो लगातार बढ़ती जा रही है तब आपको उस पे सचेत हो जाने। कभी हम लोग थक जाते हैं, दिमाग काम नहीं

0: नहीं करता, मन नहीं करता है, रेस्ट कर लेते हैं, फिर फ्रेश हो जाते हैं, फिर अपनी कंडीशन में आ जाते हैं, तो उसको हम एबनॉर्मलिटी की तरह नहीं लेते हैं।
1: इंसान को आभास होता है?
0: बिल्कुल आभास होता है। हम जैसा कर सकते थे, जो हमारी परफॉर्मेंस थी, वो परफॉर्मेंस नहीं रह गई, हमारी डिसीजन लेने की क्षमता कम हो गई, हमें एफर्ट डालना पड़ा, जो हम ऑटो मोड में इजीली कर रहे थे उसके लिए हमें एफर्ट डालना पड़ा है, हमें बहुत स्ट्रेस लेना पड़ा, जो चीज हम 5 मिनट में पढ़ लेते थे उसके लिए मुझे 15 मिनट लगाने पड़े।
1: कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई अब आपकी उम्र हो रही है तो इसलिए भी, देखिए जी आप जवान नहीं रहे, जवान की परिभाषा ये कहते हैं कि भाई 30 तक आप की स्थिति अच्छी है, लेकिन जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं, मैंने बहुत लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि अब आप थोड़ा इत्मीनान में रहिए, ये सब नॉर्मल है भाई, तो सामने वाला इंसान भी
0: एक सीमा तक नॉर्मल है। जैसे ठीक है कि अगर मान लीजिए 50 की उम्र में कोई चीज थोड़ी सी कभी भूल गए, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हमारे जो दैनिक व्यवहार जीवन में अगर हमारा पूरा व्यवहार प्रभावित होने लगा, पूरी फंक्शनिंग प्रभावित होने लगी और लगातार डाउनफॉल होता जा रहा है, देन वो एक अलार्म है।
1: इसका मतलब कि उदाहरण सही लेना है, अगर कोई भी बात कह रहा है तो उसकी बात कहने के बाद आप अपनी जांच पड़ताल जरूर
0: करें, बिल्कुल करिए, अलर्ट
1: आप
0: रहिए,
1: आंख बंद करके भरोसा
0: बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि आप आपके सामने ऐसे उदाहरण हैं जो 70 साल 80 साल में काम कर रहे हैं, अच्छा काम
1: जी,
0: कर।
1: अभय जी जिज्ञासा है बहुत ज्यादा, लेकिन एक और जिज्ञासा है, वो म्यूजिकल ब्रेक का है। आप अक्सर कौन सा गाना सुनती हैं? कभी मन में आया कि नहीं आज मुझे गाना सुनना है, अब सुकून तलाशना है या फिर करुणा तलाशनी है या प्रेम तलाशना है?
0: मुझे रोजा फिल्म का एक गाना बहुत पसंद है, दिल ये छोटा सा छोटी सी आशा।
1: तो चलिए ए आर रहमान साहब का म्यूजिक है, सुनते हैं।

0: बहुत सुंदर दलिए छोटा सा छोटी सी आशा। हर किसी का दिल छोटा है और कई बार उम्मीदें हम खुद से भी ज्यादा लगा लेते हैं बिना काबिलियत बढ़ाए। अच्छा, ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि कोई पेशेंट आया, उसको समस्या है और उसके शरीर से या चेहरे से भी आपको लगा कि नहीं, इनको सच में समस्या है? चेहरे की स्थिति में भी परिवर्तन आता है अगर आपको?
1: बिल्कुल 100% आता है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। साइकोलॉजी की भाषा में हम इसको नॉन वर्बल क्लूज बोलते हैं और इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डायग्नोसिस में, क्योंकि जैसे हम आपसे कोई सवाल करेंगे तो आप जो जवाब हमें देना चाहती हैं वो जवाब देंगी, और मैक्सिमम लोग एडिटेड फॉर्म में बोलते हैं।
0: एडिटेड मतलब?
1: मतलब है उनका जो मन रहेगा वो छुपा लेंगे, जो मन रहेगा बता देंगे, जो मन रहेगा उसको परिवर्तित करके दे देंगे, थोड़ा सा बदल के बता देंगे।
0: मतलब एक फ्लो नहीं है,
1: सच नहीं बोलेंगे ना, सच बहुत कम लोग बोलते हैं, सच नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके गेस्चर, आपके पोस्चर, आपके एक्सप्रेशन, वो तो सच बोलेंगे, उसको नहीं कोई छुपा सकता है। तो बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाता है अगर आदमी डिप्रेस्ड है तो भी। ये तो सामान्य हम लोग सभी को आता है, कोई खुश है तो हम कहते हैं ना कि यार बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है, कुछ कोई खास बात है, या आज क्या बात है बहुत दुखी हो। इवन साइकोलॉजी तो एक ऐसा विषय है कि मुझे लगता है कि वो सॉफ्टवेयर भगवान ने बना के हमारे भीतर दिया है। आप एक छोटे से बच्चे से जो लैंग्वेज नहीं समझता है, आप उससे आंख घूरिए देखिए वो रोने लगेगा।
0: है ऐसा? और जब आप
1: उसे स्माइल करिए वो मुस्कुराने लगेगा। तो फेशियल एक्सप्रेशन को तो वो भी समझ रहा है, जब उसने कुछ कोई किताब नहीं पढ़ी, कुछ नहीं जाना है, तो वो सहज सॉफ्टवेयर आपके अंदर बना हुआ है
0: जी।
1: अब ये कि हम लोग उस पर कई चीजों की परत चढ़ा देते हैं तो हम भूल जाते हैं, बहुत इजीली समझा जा सकता।
0: अच्छा, अब एक व्यक्ति थोड़ा परेशान है
1: जी,
0: उसको ये समझ में आ रहा है कि भाई उसका दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है जितना पहले किया करता था
1: जी,
0: और कुछ याद कर रहा है, पढ़ाई लिखाई या ऑफिस का काम काज, घर का या व्यापारी, कोई भी हो सकता है, उसे क्या करना चाहिए जब उसको लग रहा है कि कुछ गलत है उसके साथ, कुछ गड़बड़ है?
1: थोड़ा सा पैटर्न रीड करें। देखिए, इसके दोनों काज हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं और मेंटल भी हो सकते हैं। मेरे समझ से 4-5 चीजों पे पहले उसे ध्यान देना चाहिए कि वो अपने दिनचर्या को नियमित करे, अच्छी डाइट ले, रेगुलर एक्सरसाइज करे, मल्टीटास्किंग से बचे, थोड़े थोड़े से काम से, एक काम हमने किया, एक ब्रेक लिया। आप देखिए कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो एक पीरियड के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता था, अभी भी यूनिवर्सिटीज वगैरह में आज भी ऐसा है कि 55 मिनट का पीरियड होता है फिर 5 मिनट का ब्रेक होता है। तो ब्रेक लिया, या इंटरवल बीच में होते थे कि आपको 1 घंटे के लिए, 40 मिनट, 45 मिनट के, आधे घंटे के लिए ब्रेक दिया जाता था, तो वो जरूरी था कि आपने 3 घंटे काम किया, 4 घंटे काम किया, तो आपको एक ब्रेक मिल गया, एक रेस्ट मिल गया। आपकी बॉडी की भी नीड होती है और आपके ब्रेन की भी नीड होती है, पूरी नींद, अच्छी नींद ले। तो इस तरह से रह करके वो 2-3 हफ्ते देखे, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट होता है देन हम ये मानेंगे कि उस साइकोलॉजिकल रीजंस ज्यादा हैं और इनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। क्योंकि भागम भाग की जिंदगी है, हमें कई काम एक साथ करने होते हैं, तरह तरह के स्ट्रेस हैं लोगों के ऊपर जिसकी वजह से फैटिग होता है, लोग प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, खाना पीना भी बहुत प्रॉपर नहीं रह गया है, कई डेफिशिएंसीज हो जाती है। लेकिन यही सिर्फ कारण नहीं, इसके कारण कई पैथोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं। ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो सकती है
0: जी,
1: ग्लैंडुलर सिस्टम के और भी अदर वो हो सकते
0: जी,
1: हैं।
0: आप ये जो कह रही हैं कि अगर उसे समस्या लग रही है तो ठीक तरह से खाए पिए, एक्सरसाइज करे, थोड़े इंटरवल्स ले, लेकिन उसके अंदर मोटिवेशन नहीं रहता कि वो ठीक तरह से खा भी सके। आई हैव मेट सच पीपल,
1: बिल्कुल,
0: तो उनको लगता है कि ये क्या बकवास की बात आप कर रही हैं। पलट के ये जवाब भी सुनने को मिलता है कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है और खाने के लिए क्या ठीक। वो स्थिति थोड़ी अलार्मिंग है, तब क्या करें? घर के लोग

0: और वो खुद इंसान है।
1: मान लीजिए मैं ये किसी डिजीज की कंडीशन की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल भी लाइफ में अगर हम लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं या किसी भी तरह से परेशान होते हैं तो मोटिवेशन कम हो जाता है अपने आप, मन नहीं करता किसी चीज़ का। पहला काम यही होता कि मन नहीं करता, लेकिन वहाँ पे फिर परिवार के लोगों का ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इसीलिए कहा भी गया कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो जब हम सोशल इंटरेक्शन में जाते हैं, अभी 2025 में एक रिसर्च हुई थी और बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, वो 7 देश के लोगों करीब 20,000 लोग थे उसमें, और उसके जो रिजल्ट्स थे कि वहाँ पे आपको एट ए टाइम सब कुछ मिल जाता है। जब आप सोशल इंटरेक्शन में जाते हो तो आपको मोटिवेशन भी मिल जाता है, थोड़ी कॉम्पिटिशन की भी भावना आती है, नई नई चीज़ें सीखने के लिए भी मिल जाती हैं, थोड़े अपने इमोशन का एक्सप्रेशन भी हो जाता है कि भाई अपनी बात कह ली, आपकी सुन ली। कई बार पता चला कि मुझे लगा मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब सामने वाले की सुनी तो लगा अपनी वाली तो छोटी है, इसकी हमसे ज़्यादा बड़ी है। तो उससे भी आदमी रिलैक्स फील करता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सोशल फैमिली के लोग हैं आपके, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। भारत का आधार ही धर्म रहा है, तो हमारे यहाँ हर सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हमारी अगर हम, हालांकि ये मनोविज्ञान का मूल विषय तो नहीं है, लेकिन फिर भी उससे बड़ा मजबूती से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि अध्यात्म में मनोविज्ञान को बहुत मजबूती से जोड़ा गया था, और आपकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को, और इसीलिए उस समय मानसिक बीमारियां नहीं होती थी। जब हम धर्म का पालन करते थे तो हमें बीमारियां कम होती थी, ना के बराबर होती थी। ऐसा नहीं था कि तब अकाल मृत्यु नहीं होती थी, ऐसा नहीं था कि तब आपदाएं नहीं आती थी, भूकंप नहीं आते थे, कुछ ऐसा नहीं, सब कुछ होता था। लेकिन हमारे अंदर सहने की शक्ति ज्यादा थी, क्योंकि हमारे अंदर आस्था का फैक्टर था, भगवान पे भी। और जब आप भगवान पे विश्वास करते थे तो खुद पे भी विश्वास करते थे। अब ना खुद पे विश्वास है ना भगवान पे विश्वास है, इसलिए हम दुर्बल हो गए हैं
0: जी।
2: डॉक्टर ऋचा, हम वापस विषय पे आते हैं, ये ब्रेन फॉग की समस्या क्या याददाश्त और एकाग्रता से ही जुड़ा है या डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है या कर सकता है?
1: टोटल कॉग्निटिव सिस्टम को हमारे प्रभावित कर देता है, वो डिसीजन मेकिंग को भी खत्म, वो पूरी प्रोसेसिंग हमारी स्लो हो गई, तो वो टोटल ही प्रोसेस को इफेक्ट कर देता है। ब्रेन फॉग की कंडीशन ऐसी है कि जिसमें ऐसे हम सभी ने कभी ना कभी किसी क्षण ऐसा महसूस ही किया होता है कि थोड़ी देर के लिए यार लगा कि अब कुछ नहीं, बस दिमाग नहीं काम कर रहा है, अब शांत हो जाओ, लेट जाओ, फिर लेट के उठे तो फिर फ्रेश हो गए, तो ये तो ये, लेकिन वो परमानेंट हो गया। सो के उठा भी तो भी वो उसी तरह से है, उसने रेस्ट किया, ब्रेक लिया, सब कुछ किया, फिर भी वैसा ही बना है, तो फिर मतलब वो डिजीज में है। अब उसकी वजह क्या है ये तो डॉक्टर ही बता पाएगा उसको कंडीशन से।
0: तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लेना चाहिए,
1: कंसल्ट करना चाहिए इसमें कोई नहीं। एक आप हफ्ते दो हफ्ते आप देख लीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को देख लीजिए कि उसमें प्रॉब्लम। जैसे कई बार हम लोग बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, तो जब हम इनएक्टिव हो जाते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम ही स्लो डाउन हो जाता है, बॉडी भी और ब्रेन भी। तो वहाँ पे हम अच्छा खाना खाएं, अच्छी पूरी नींद लें, एक्सरसाइज करें, खुश रहें, अच्छी जिंदगी जिए, उसके बाद भी अगर चीजें इम्प्रूव नहीं कर रही हैं तो हमें बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, यहाँ एक चीज जरूर हम बताएंगे कि हर जगह आपको एक हफ्ते नहीं, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं कि जिनमें सडन इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर ये ग्रेजुअल इफेक्ट आप में आ रहा है तो आप चेंज करके इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन आप अच्छे भले हैं और 2-3 घंटे में एकाएक आपके अंदर कोई ऐसा परिवर्तन आ गया तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए
0: जी।
1: क्योंकि वहाँ हो सकता है कि कोई बड़ा फिजियोलॉजिकल वजह हो वहाँ पे जो लेट करने पे क्यूरेबल ही ना रह जाए।
2: नेहा जी, अब हमें भी लगता है कि थोड़ा सा एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेना चाहिए, तो इस बार कौन सा गीत सुनाए?
0: रहमान साहब का गाना ताल फिल्म में उन्होंने म्यूजिक दिया है, और जिंदगी ताल पर ही चलती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: कि अगर ताल ठीक है तो जिंदगी बढ़िया चलती है।
1: बिल्कुल,
0: तो वही गाना सुनते चलें।
1: बिल्कुल।

0: डॉक्टर ऋचा पाठक, अभी हम बात कर रहे थे कि इसके क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं। एक कारण कहीं ये भी तो नहीं, क्योंकि आजकल हमारे हाथ में मोबाइल होता है, कंप्यूटर्स ऑन है और हर समय नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि उसका मैसेज आया, ये आया, तो अटेंशन स्पेन हमारा थोड़ा कम हो गया है,
1: बिल्कुल
0: तो क्या ये भी एक कारण है ब्रेन फॉग का?
1: देखिए, ये कह देना कि ये एक कारण है मेंटल फॉग का या ये ही कारण है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये उसको स्टिमुलेट जरूर करता है, उसको एक तरह से बढ़ाने का काम जरूर करेगा। या यूं कह लीजिए कि ये भी एक कारण बन सकता, एक कारण से मेंटल फॉग नहीं हो, एक कारण में खाली फिजियोलॉजिकल कॉज ही होंगे जिसकी वजह से आपको
0: बाकी कई कारण हो।
1: मेंटल कॉज में जब कई कारण ओवरलैप कर जाते हैं और ओवरलैपिंग बहुत इजीली होने लगती है, क्योंकि जैसे एक कॉज उत्पन्न होता है तो वो दूसरे को बनाता है, फिर दूसरा तीसरे को बनाता है और ये एक घेरा बन जाता है और आदमी उस मकड़ जाल में फंस जाता है।
0: और इसके साथ ही सामाजिक अकेलापन,
1: बहुत बड़ा कारण है और मैं मानती हूँ कि आजकल जो ये आइसोलेशन की चीज़ें हैं इसीलिए इतनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है छोटे छोटे बच्चों में। मतलब ऑनेस्टली मैंने साइकोलॉजी में PhD किया है, लेकिन मुझे डिप्रेशन शब्द की मीनिंग तब पता चली थी जब मैंने इंटर में साइकोलॉजी लिया था, उसके पहले मुझे नहीं मालूम था कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती है।
2: जी
1: और मेरे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो 8 साल का 7 साल का बच्चा है, उसको एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो रहा है।
2: दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। वॉइस ऑफ प्रयाग में आज हमने जाना कि भाई हमारा जो सिस्टम है उसको हेल्दी रखने के लिए हमें छोटे छोटे उपाय ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटे उपाय होते हैं कि हम अच्छी तरह से खाना खाएं, सोएं, लोगों से थोड़ा बहुत मिलें, बातें करें, कुछ लिखें, तो इससे हमारे अंदर एक जो ऊर्जा है, खुशी है, वो बनी रहती है और हम दूसरों को भी खुश करते हैं, उनको ऊर्जान्वित करते हैं। तो डॉक्टर ऋचा पाठक से हम जानेंगे, ये जो अभी उन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम्स है मेंटल फॉग है वो लेयर्स में होती हैं, मकड़ी का जाल आपने देखा होगा ना, वैसे ही कहीं हम अपने समस्याओं का जाल तो नहीं बिछा लिए, आखिर उस जाल से निकल कैसे सकते हैं, खुद पर यकीन कैसे करेंगे, बहुत सारे प्रश्न है ना, और जवाब जानने हैं। अगले एपिसोड में आप सभी से इन सवालों के जवाब के साथ मुलाकात होगी। तो अभय जी, आज हम कहते हैं नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। ब्रेन फॉग इस विषय पर डॉक्टर ऋचा पाठक से बातचीत कर रहे थे अभय कांत तिवारी और नेहा गुप्ता जी। ऋचा पाठक जी बतौर मनोवैज्ञानिक हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी थीं। प्रस्तुति अभय कांत तिवारी की थी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम।
2: इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं आकांक्षा भारती के स्वर में और साथियों के स्वर में। इस गीत में अब आप सुनेंगे देवी गीत।

अभी आप सुन रहे थे आकांक्षा भारती और साथियों के स्वर में देवी गीत। अब हम आपको सुनवाते हैं इन्हीं के स्वर में ये कहरवा।

कभी कभी जिंदगी हमें वो रास्ता नहीं देती जिस पर चलना आसान हो, लेकिन कुछ लोग उसी मुश्किल रास्ते को अपनी पहचान बना लेते हैं। ऐसी ही कहानी है भारत की मशहूर गायिका नेहा कक्कड़ की। आज नेहा कक्कड़ का नाम सुनते ही हमारे मन में उनकी ऊर्जावान आवाज, खूबसूरत गाने और मंच पर उनकी खास मौजूदगी याद आती है। लेकिन इस चमकदार सफलता के पीछे एक ऐसा संघर्ष छिपा है जिसे जानना हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। नेहा कक्कड़ का जन्म ऋषिकेश में हुआ था और उनका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। उनके परिवार ने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया और नेहा ने छोटी सी उम्र से ही धार्मिक जागरणों और माता की जगरातों में गाना शुरू कर दिया।

जिस उम्र में बच्चे भविष्य के सपने देखना शुरू करते हैं, उस उम्र में नेहा अपने परिवार की मदद करते हुए संगीत की दुनिया में कदम रख चुकी थी। उनके लिए मुंबई तक पहुंचना भी आसान ना था। वर्ष

2006 में उन्हें गायन के लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियन आइडियल में हिस्सा लिया। हालांकि उस समय उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही शायद उनकी यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है।

असफलता ने उन्हें रोका नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। धीरे धीरे उनकी आवाज ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। अभी जो आप गीत सुन रहे थे, सेकेंड हैंड जवानी, सनी सनी, लंदन ठुमकदा, मनाली ट्रांस और काला चश्मा जैसे गानों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। उनकी आवाज में एक खास ऊर्जा है जो पार्टी गीतों में उत्साह भरती है और भावुक गीतों में संवेदनाएं जगाती है।

लेकिन नेहा कक्कड़ का महत्व केवल उनके गानों की लोकप्रियता तक सीमित नहीं, उनकी कहानियों में बताती है कि सफलता हमेशा पहली कोशिश में नहीं मिलती, कभी कभी सपने को सच करने के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ती है।

नेहा की यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर शुरुआत छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल छोटी ही होगी।

एक साधारण परिवार से निकलकर भारतीय संगीत की लोकप्रिय आवाज बनने तक नेहा कक्कर ने ये साबित किया कि प्रतिभा को अगर मेहनत, धैर्य और लगातार प्रयास का साथ मिल जाए तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता।

नेहा कक्कड़ सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने छोटे से शहर, सीमित साधनों और मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद बड़ा सपना देखने का साहस रखते हैं।

इस गीत के साथ ही एक ही कला कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 295.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस।

कभी ऐसा हुआ है क्या कि फोन हाथ में हो और सोशल मीडिया ऐप खुला हो, रील्स चल रही हो, लेकिन मन कहीं और अटका हो? कभी ऐसा हुआ है क्या कि पूरा दिन काम किया, लोगों से मिले, हंसे भी, और रात में जैसे ही अपने कमरे की लाइट बंद की तो दिमाग में अपनी अलग ही मीटिंग शुरू हो गई? कल क्या होगा, मैं इतना पीछे क्यों? उससे मिलकर पता नहीं क्यों अजीब सा लगा, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरा करियर कहाँ जा रहा है, सबकी लाइफ इतनी सॉर्टेड कैसे है, बस मेरी ही क्यों नहीं है? और सबसे ज्यादा मजेदार बात, हमारा दिमाग हमसे ये कहता है कि बस 5 मिनट सोचता हूँ और 2 घंटे ओवर थिंक कर लेता है। हम अभी सोच रहे होते हैं और अगला टॉपिक हमारे दिमाग में कंटिन्यू हो जाता है, तो दोस्तों इसे ही तो कहते हैं ओवर थिंकिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट दिव्या द्विवेदी और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट यूथ शो, यूथ की गाड़ी, यूथ एक्सप्रेस, जहाँ हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो हमारे यूथ लाइफ, हमारे यूथ लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है और कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को इफेक्ट भी करती है। आज बात होगी किसी असाइनमेंट की नहीं, किसी करियर ऑप्शंस की नहीं, किसी ट्रेंडिंग रील्स की नहीं, आज बात होगी उस चीज की जो 24/7 ऑनलाइन रहती है, वो है हमारा माइंड, हमारा दिमाग, जो सबकॉन्शियसली भी कुछ ना कुछ काम करता रहता है। आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ मैटर्स, और सुनिए, आज हमारी कोई भारी भरकम लेक्चर देने की बारी नहीं।

हैं। आज मैं आपको कोई बहुत बड़ा ऐसा फंडा सिखाने नहीं आई हूँ, क्योंकि जिंदगी पहले काफी लेक्चर दे चुकी है। आज बस थोड़ी दिल की बात होगी, स्ट्रेस की बात होगी, ओवरथिंक की बात होगी, कंपैरिजन की बात होगी, सोशल मीडिया की बात होगी, और उससे जरूरी बात, खुद को थोड़ा सा समझने की बात होगी।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारी जनरेशन की एक बहुत पॉपुलर लाइन है, आई एम फाइन। जब भी हमसे कोई पूछता है तो हम उसको यही कहते हैं, अरे यार मैं तो ठीक हूँ। मतलब कि हम ठीक नहीं होते हैं, है ना? हाँ हाँ, हम फाइन नहीं होते हैं। अंदर से ये सब जानते हैं कि उनकी हालत क्या है। विंडोज़ का वो कंप्यूटर जिसमें 47 टैब्स खुले होते हैं और पता नहीं कौन सा टैब म्यूजिक चल रहा होता है, जिसमें हम अक्सर अपने इमोशन को पोस्टपोन कर देते हैं। काम है, पहले काम कर लेते।

सकते हैं। एग्जाम है, पहले एग्जाम की पढ़ाई कर लेते हैं। ऑफिस है, पहले अपने वर्कशीट्स निपटा लेते हैं। और घर की जिम्मेदारियां हैं, पहले वो पूरी कर लेते हैं। और सच मानिए दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना काम करना, अपने काम से लगाव रखना, अपनी जिम्मेदारियां समझना, ये सभी सही चीज है। लेकिन इन सभी में हम खुद को नजरअंदाज करते हैं, खुद से ये कह देते हैं मेरे लिए टाइम बाद में निकालेंगे। लेकिन वो बाद दोस्तों, वो बाद कभी नहीं आता है। हम अपने फोन की बैटरी 20% होते ही चार्जर ढूंढ लेते हैं, लैपटॉप 10% होते ही पैनिक हो जाते हैं कि अब काम ना रुक जाए। लेकिन खुद जब थक जाते हैं तो ये नहीं कहते चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, या थोड़ा सा बस खुद के लिए वक्त निकाल लेते हैं। बस कहते हैं यार थका ही तो हूँ, थोड़ा काम और कर लूंगा तो शायद आज का वर्कलोड खत्म हो जाएगा। लेकिन वर्कलोड तो दोस्तों कभी नहीं खत्म होता। आज जितना काम है कल भी उतना ही काम होगा। लेकिन अगर उस वक्त हमने रेस्ट नहीं लिया, उस वक्त खुद को थोड़ा सा शट डाउन नहीं किया, तो शायद हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो सकता है। दोस्तों हमें वहीं थोड़ा रुक जाना चाहिए। थक जाना फेलियर नहीं होता। हर वक्त एनर्जेटिक रहना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी बस स्वीकार कर लेना होता है कि आज हम थोड़े टायर्ड हैं। और दोस्तों अगर मन परेशान हो, लगातार तनाव हो, नींद या रोजमर्रा की जिंदगी पर अक्सर असर पड़ रहा हो इस चीज से, तो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बताइए, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट से जाके मिलिए और उससे बात कीजिए। क्योंकि हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होती, सेल्फ केयर होता है। अपने किसी दोस्त से बात कीजिए जो आपकी हर बातें सुनता हो, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए जो आपकी हर तकलीफ में आपका साथ देते हैं, या कोई ऐसा जिससे आप प्यार बांटते हैं। तो दोस्तों ये होता है सेल्फ केयर। जब हम खुद की मदद ना कर पाएं तो हम किसी को ढूंढ लें और खुद के लिए, खुद को पैम्पर करने के लिए भी वक्त निकालें। क्योंकि सही मायने में जिस काम को करने के लिए आप भाग रहे हैं ना दोस्तों, वो काम पूरा नहीं हो पाएगा अगर आपने खुद को ठीक नहीं रखा। अगर आपका मूड थोड़ा ऑफ है तो खुद को जज मत कीजिए। हर दिन संडे नहीं होता, कुछ मंडे भी होते हैं। कुछ मंडे सर्वाइव भी करना अचीवमेंट होता है, लेकिन इस पे खुद को नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है।

हाँ तो दोस्तों, सॉन्ग ब्रेक के बाद बात करेंगे उस चीज की जो हमारी सुबह शुरू करवाती है, कई बार रात भी खत्म होने नहीं देती। जी हाँ, सोशल मीडिया। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगा ना कि सुबह शुरू करवाती है, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि जो सुबह होती है वो एक कप चाय से, थोड़ा सा योगा से या सूर्योदय देखने से होती है, लेकिन सोशल मीडिया से हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आजकल लोग बहुत भारी मात्रा में सोशल मीडिया से अपने सुबह की शुरुआत कर रहे हैं। सुबह आंखें खुली नहीं कि नोटिफिकेशन देखना है कि कहीं लेट नाइट किसी ने मैसेज तो नहीं कर दिया। एक दोस्त की इंगेजमेंट हो रही है, दूसरे की नई जॉब लग रही है, तीसरा विदेश यात्रा कर रहा है, चौथा जिम ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, और पांचवा नया रिलेशनशिप में आ रहा है, और हम तकिए में मुंह छुपाए ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये सब मैं कब करूंगा अपनी जिंदगी में, मैं कर भी पाऊंगा ये अपनी जिंदगी में। ये दोनों सवाल आ जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपको किसी की पूरी जिंदगी नहीं पता होती, बस कुछ सेलेक्टेड मोमेंट्स दिखाई देते हैं। तो हम जस्ट फ्रेम्ड मोमेंट को देख रहे हैं दोस्तों, जरूरी नहीं कि वो पूरा सच हो। उसके पीछे मेहनत, उसके पीछे लगन, उसके पीछे की लाइफ हमें नहीं पता। हर किसी की लाइफ अपनी होती है, हर किसी की जर्नी अपनी होती है। तो ये मत सोचिए कि आपकी जर्नी किसी से कम है। किसी की हॉलीडे पिक्चर दिखती है, उसकी फ्लाइट्स मिस होने की स्टोरी नहीं। किसी का प्रमोशन दिखता है, उसके महीनों की स्ट्रगल और पूरी कहानी नहीं। किसी की परफेक्ट कपल पिक्चर दिखती है, लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट्स की पूरी रात नहीं दिखती। और हम क्या करते हैं, उनकी हाइलाइटेड रील्स को अपनी बिहाइंड द सीन लाइफ से कंपेयर कर देते हैं। फिर कॉन्फिडेंस कहता है चलो भाई मैं चलता हूँ, तो बस कहानी और स्ट्रेस यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो दोस्तों, थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। हर नोटिफिकेशन का जवाब तुरंत जरूरी नहीं होता, हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं होता, किसी की लाइफ को देखना जरूरी नहीं होता, और सबसे जरूरी बात, हर चीज ऑनलाइन शेयर करना भी जरूरी नहीं होता। आपकी लाइफ आपकी अपनी है, उसको प्राइवेट रखना ये भी आपकी जिम्मेदारी है और आपकी चॉइस है। कुछ खुशियां ऐसी भी रखिए जो सिर्फ आपकी हो, बिना स्टोरीज के, बिना पोस्ट के, बिना लाइक्स के, बस आप। क्योंकि हर खूबसूरत पल को कैमरे में कैद करना जरूरी नहीं, कुछ पल आंखों में भी अच्छे लगते हैं।

दोस्तों, कितना प्यारा सॉन्ग था। और अब बात करेंगे हम उस चीज की जो सबसे ज्यादा आज की जनरेशन को इफेक्ट कर रही है। हमारी जनरेशन को सीरियसली इस बात को समझना चाहिए। स्ट्रेस होना और स्ट्रेस को अपनी पर्सनालिटी ट्रेट बना लेना दोनों अलग चीज है। हम बड़े प्राउडली बोलते हैं, भाई मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता हूँ, मेरी तो स्लीप शेड्यूल भी खराब चल रहा है, मैं 4 घंटे सोकर भी काम कर लेता हूँ। जैसे कम सोना ज्यादा सक्सेसफुल होना है। लेकिन हमारा शरीर और हमारा दिमाग कोई अनलिमिटेड डेटा प्लान नहीं है दोस्तों। उसे भी रिचार्ज चाहिए होता है, उसे भी नोटिस करना जरूरी होता है कि वो कब स्ट्रेस्ड हो रहा है, कब टायर्ड हो रहा है और कब उसे एक शटडाउन मोड की जरूरत है। हम लगातार स्ट्रेस्ड होते हैं तो छोटी छोटी बात बहुत बड़ी लगने लगती है। किसी का एक मैसेज, किसी की एक बात, काम में छोटा सा प्रेशर और दिमाग कहता है बस आज तो सब खत्म। ऐसे समय में सबसे पहले थोड़ा सा पॉज लीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए, थोड़ी सी वॉक लीजिए, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनिए, किसी दोस्त से बात कीजिए और थोड़ी देर फोन दूर रख दीजिए और कुछ मिनट चुपचाप बैठ जाइए। अगर आपको चाय पीना पसंद है तो एक कप चाय पी लीजिए। अगर आपको किसी से बात करके रिलैक्स महसूस होता है तो उससे बात कर लीजिए। और अगर आप किसी लंबे समय से चले आ रहे इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो किसी ट्रस्टेड पर्सन या

0: सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करके एक प्रैक्टिकल कदम उठाइए। हमारे हर प्रॉब्लम का सलूशन अकेले निकालना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस इतना कहना होता है, मैं हूँ, बोलो, बहुत कुछ बदल देता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों से पूछिए, तुम ठीक हो? और सिर्फ जवाब सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। अगर लगे कि सामने वाला सच में बहुत परेशान है तो थोड़ा रुकिए, सुनिए, क्योंकि कई बार इंसान को एडवाइस से पहले एक लिसनर की जरूरत होती है।
1: आई एल

तो दोस्तों अब बारी है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन उससे पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि खुलकर खुश रहिए। हर इमोशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, हर इमोशन को दबाना भी जरूरी नहीं होता। याद रखिए, आपकी वैल्यू आपकी

0: इससे पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि खुलकर खुश रहिए, हर इमोशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, हर इमोशन को दबाना भी जरूरी नहीं होता। याद रखिए, आपकी वैल्यू आपकी प्रोडक्टिविटी से कई बड़ी है। आपकी वर्थ आपके मार्क्स, सैलरीज, फॉलोवर्स, रिलेशनशिप स्टेटस या किसी अचीवमेंट से तय नहीं होती। आप सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आप है। एक छोटी सी कोशिश, अपने दोस्तों से हाल चाल पूछना, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा वक्त बिताना, थोड़ा फोन कम यूज करना, थोड़े कम इंटेलिजेंट भी होना, ये सब एक नॉर्मल पार्ट है लाइफ का। और दूसरों की लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर करना बंद कीजिए, क्योंकि जो शायद आप स्ट्रगल कर रहे हैं शायद दूसरा उसे समझ भी नहीं सकता, और जो दूसरा कर रहा है शायद वो आप नहीं कर सकते। आप दोनों की जर्नी के अपने अपने पार्ट्स हैं, अपने अपने एंड्स हैं। तो प्लीज़ आप खुश रहिए, अपने लिए जिए और खुल कर अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। So this is time to sign off from this program. आप रिव्यू देना मत भूलिएगा 8004926250 और yuvvaniald@gmail.com पर। हमें सुनना ना भूलिएगा नेक्स्ट फ्राइडे को न्यूज ऑन AIR ऐप पर और 100.3 FM पर। So this is दिव्या द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस प्रोग्राम। बाय बाय।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना, इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा

0: माँ है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साखना के साथ बैठक में यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभाव तथा बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। नई दिल्ली में परियोजना के शुभारंभ पर श्री यादव ने कहा कि इससे राज्य वन संस्थानों में नई सुविधाएं विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सिक्किम में ग्यालशिंग जिले के रिम्बी गांव में कल रात मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। श्री तमांग ने स्थानीय अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले मुक्केबाज सचिन सेवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत अब 19 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colours of service.
3: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुँचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
2: The Prime Minister noted that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. Today, infrastructure in villages has improved considerably, while self-reliance among women of the country has also increased. And Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, today launched the Capacity Enhancement for Effective Forest Management Project to support forest conservation practices. Addressing the inaugural session of the project launch in New Delhi, he said the project will promote innovation and the creation of more facilities in state forest institutes. Mr. Yadav said this project has been launched with an outlay of approximately 537 crore rupees with the objective of providing the forest personnel the training of common protection competitiveness and region-specific knowledge.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में दोपहर 12:15 बजे पंडित कंठे महाराज का तबला वादन हम आपको सुनवाएंगे और रात 10:30 बजे अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन होगा। दोपहर 12:30 पर श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। हेलो फरमाइश प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 12:15 बजे हेलो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम होगा और 2:30 बजे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। शाम 5:00 बजे नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया और 5:15 बजे यूजन का अपना कार्यक्रम होगा युवाणी। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे कमला प्रसाद पाल और साथियों के स्वर में लोकगीत। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर सुमित कुमार मिश्र की वार्ता रामायणम युगातीत संदेशा। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे श्रीकांत वैश, इनके स्वर में भजन और गीत हम आपको सुनवाएंगे। 8:30 बजे अंग्रेजी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे प्रोफेसर इंद्रानी की वार्ता गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर एंड हिज यूनिक विजन। रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशा। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: श्रोताओं, एक सूचना आपके लिए। दिनांक 29 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में आपकी थाली से पोषण की खुशहाली। इस विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ प्रत्यक्षा कटियार। श्रोतागण, मोटापा, खून की कमी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य बीमारियों में उचित आहार विहार के बारे में अपने सवालों का जवाब पाने के लिए आप दोपहर 1:15 से दोपहर 2 बजे तक फ़ोन नंबर कोड 0532297046205 3 2, मैं इसे दोहरा देती हूँ इंग्लिश में भी, 0532 0532297046 2 और फ़ोन नंबर 0532 2423649 इंग्लिश में 0532 2423649 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप दोबारा सुन लीजिए, 0532 कोड है, नंबर 2970462 और कोड 0532 नंबर 2423649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। ध्यान रखें, व्हाट्सएप पर सवाल करने के पहले हेलो पनघट अवश्य लिखें। सूचना समाप्त हुई।
0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित कंथे महाराज का तबला वादन ब्रह्म ताल।

अभी आप सुन रहे थे पंडित कंठे महाराज का ब्रह्म ताल, और आइए अब सुनते हैं पंडित कंठे महाराज का तबला वादन। इसमें हम सुनवा रहे हैं पंचम सावरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित कंठे महाराज का तबला वादन ताल ब्रह्मताल और पंचम सावरी। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हेलो फरमाइश, प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम। अपना नाम बताएं
1: सोनू जायसवाल साहिब से बताए पर से बोल रहा हूँ।
0: जी। सोनू जी, कौन सा गीत सुनेंगे? गाने के बोल और फिल्म का नाम
1: मेरी
0: बताइए।
1: बदमाशी है
0: अच्छा, जुल्मी फिल्म का ये गाना है। उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज़ है और पसंद है सोनू जी की। तो सोनू जी, आपको सुनवाएं आपकी पसंद का गाना।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश और मैं हूं मधु। आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों को लेकर अपना नाम बताइए।
1: संगम नगरी प्रयागराज निजी कलाबंद उगरा से पवन निषाद बोल रहा है मैं। नमस्कार।
0: नमस्कार पवन जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: रंग फिल्म का।
0: गाने के बोल बता दीजिए।
1: तुम्हें देखे मेरी आंखें इसमें क्या मेरी कथा है।
0: पवन जी ने पसंद किया है रंग फिल्म का ये गाना, आइए सुनते हैं।

0: इस समय श्रोता सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। हेलो, अपना नाम बताएं।
1: सुरेंद्र यादव बोल रहा हूँ मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार सुरेंद्र जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: ये दिल आशियाना, इसी का टाइटल
0: जी
1: सुनना चाहता हूँ।
0: टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं सुरेंद्र जी जलालपुर से। तो सुरेंद्र जी, आपको सुनवाएं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: हम गुलाब चंद्र मिश्रा, ग्राम पचोकर, पोस्ट रामजालगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। दीदी
0: जी, गुलाब जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार, हम बहुत अच्छे हैं दीदी।
0: चलिए बताइए कौन सा गीत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: हम फिल्म बाबुल का गीत सुनना चाहते हैं
0: जी,
1: छोरे बाबुल का घर मुड़ पीछे नजर हमें
0: जी,
1: जाना।
0: बहुत पुराना गीत है, शमशाद बेगम की आवाज है
1: जी। जी जी,
0: तो भाई गुलाब चंद जी ने फरमाइश की है इस पुराने गीत की, तो आपको सुनवाएं?
1: सुनवाएं, हम कुछ दोस्तों को नाम
0: हाँ,
1: ले
0: लीजिए ले लीजिए।
1: अजय कुमार मिश्रा, निखिल कुमार मिश्रा, सुशील कुमार मिश्रा, सुनील कुमार मिश्रा, पालेश्वर मुन्ना, अजय कुमार, सुशील कुमार, सुनील कुमार।
0: तो सुनते हैं आपकी पसंद का बाबुल फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो,
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्कार।
1: हाँ मैडम, मैं रमेश गुप्ता बोल रहा हूँ। मैडम रहने वाला हूँ जिला प्रयागराज, गांव का नाम है चक्राम परीक्षा।
0: जी
1: रहते हैं मुंबई में, मुंबई कल्याण फाटा।
0: जी जी रमेश जी बताइए।
1: मैडम हमें गाना सुनना है, फिल्म का नाम है हर दिल जो प्यार करेगा, मुझे हंसना होगा, मुझे
0: अच्छा
1: रोना ही
0: टाइटल
1: होगा।
0: सॉन्ग है ये, हर दिल जो प्यार करेगा, इस फिल्म
1: हाँ
0: का।
1: मैडम ऐसे कुछ गाने हैं
0: जी जी जी जी तो रमेश
1: मैडम
0: जी।
1: आपसे।
0: जी
1: हेलो,
0: हाँ बोलिए रमेश जी।
1: अब आपसे एक हफ्ता बाद ही बात होगी।
0: अच्छा, कहीं बाहर जा रहे हैं आप?
1: नहीं क्योंकि क्योंकि मेरा सोमवार से हो जाएगा डे। हाँ
0: अच्छा,
1: एक हफ्ता डे चलते हैं, कितना नाइट चलता है ना।
0: ओहो शिफ्ट में हैं आप।
1: हाँ शिफ्ट है ना।
0: अच्छा, तो चलिए एक हफ्ते के
1: हाँ तो एक
0: बाद
1: हफ्ता
0: आप
1: बात
0: हमसे
1: करेंगे।
0: बात करिएगा, तब हम आपकी पसंद के गाने को ज़रूर सुनवा देंगे। और फिलहाल सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है हर दिल जो प्यार करेगा।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फोन कॉल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति थी मधु कुमार की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम अपने दिल्ली के।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है, गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस समय गृह मंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: शामिल हो रहा हूं। ये 4th संस्करण आते आते पहले संस्करण में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है उसका दुनिया ने परिचय किया, दूसरे में यूपी में आना है ऐसा इरादा जताया, तीसरे में यूपी में आए और 4th में यूपी के विकास में सहयोगी बनकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन

0: इस पहल की शुरुआत भारत के विनिर्माण डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि मेक इन इंडिया का अगला लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना है, जिससे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मिक्स 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट मनु टीएस पुवम्मा, एमआर विशाल टीके और मिथ्या रामराज को बधाई दी है। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपे के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ियों ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिक्स्ड युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan.
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: मिस्टर मोदी हाइलाइटेड दैट वडनगर गेव हिम द वैल्यूज दैट शेप्ड हिज लाइफ व्हाइल काशी एडेड काउंटलेस कलर्स ऑफ सर्विस टू दोज वैल्यूज। ही नोटेड दैट ओवर द पास्ट 12 इयर्स द गैप बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस इन इंडिया has narrowed significantly. The Prime Minister said the infrastructure in villages has improved considerably, while self-reliance among the women of the country has also increased. Vice President C.P. Radhakrishnan has said, in an increasingly interconnected world, emerging challenges cannot be effectively addressed by nations working in isolation. Interacting with participants of the 4th edition of the International Strategic Engagement Programme, or INSTEP, at the Uparashtrapati Bhavan today, Mr. Radhakrishnan said the Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family and one future, reflects collective well-being of people around the globe. INSTEP is an initiative aimed at promoting regional security and closer cooperation among like-minded nations. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post today, Mr. Modi said the initiative has led to more being made in India, more investment in India and more exports from India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, South African Foreign Minister Ronald Lamola and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira have strongly condemned the Pahalgam terror attack and reaffirmed their commitment to zero tolerance for terrorism. The three ministers met under the IPSA Dialogue Forum in New York on the sidelines of the United Nations General Assembly yesterday and stressed their commitment to the UN Charter, international law and a stronger multilateral system. In a joint statement, the ministers called for a comprehensive reform of the UN Security Council. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav launched the workshop on capacity enhancement for effective forest management project in New Delhi.

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के वडनगर से वाराणसी जाने वाले सेवा यात्रियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान वज़ीर-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि खिदमत का जज्बा मुल्क की तरक्की के पीछे सबसे अहम ताकत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इख्तराई स्कीमों ने 250 मिलियन शहरियों को गुर्बत से निकाला है। जनाब मोदी ने कहा कि मुतअद्दिद स्कीमें जैसे पीएम किसान स्कीम और पीएम सूर्य घर स्कीम मुल्क के हर फर्द तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि खिदमत के इस जज्बे के नतीजे में 40 मिलियन गरीब अफराद मुस्तकिल घर हासिल करने में कामयाब हुए हैं। जनाब मोदी ने 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के इफ्तिताह के मौके पर वजीर दाखला और तआवुन के मरकजी वजीर जनाब अमित शाह का आज ग्रेटर नोएडा में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खैर मकदम किया। ये ट्रेड शो इंडिया एक्सपो मार्ट में 29 सितंबर तक मुनक्किद किया जाएगा।
1: ट्रेड शो में वियतनाम, जापान, सिंगापुर, रूस, ऑस्ट्रिया और बेलारूस को पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। इस आयोजन में 72 देशों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 600 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के पहुंचने की संभावना है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान दिलाने का प्रयास किया रहा है। उन्होंने बताया कि स्टेट शो के समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका सफ़र कौम की खिदमत के अज़्म और मुसलसल अवामी खिदमत के जज्बे से चल रहा है। खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के इस विजन के साथ हुकूमत 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ की सिमत में काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाइख्तियार बनाने के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश की जा रही है। आज हमारी खसूसी सीरीज़ में हम बता रहे हैं कि किस तरह स्टार्टअप इंडिया जैसे इकदामात ने इस विज़न को अमली जामा पहनाया है। एक रिपोर्ट।
2: 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल ने भारत की उद्यमिता संस्कृति में बड़ा बदलाव किया है। करीब 400 सर्टिफाइड स्टार्टअप से शुरू हुआ यह सफर मार्च 2026 तक 2 लाख से अधिक सर्टिफाइड स्टार्टअप और 23 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 10 साल में देश नए स्टार्टअप में दुनिया का नेतृत्व करे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए।
3: पिछले 10 वर्षों ने देश की क्षमताओं को साबित किया है।

0: हमारा लक्ष्य होना चाहिए आने वाले 10 वर्षों में भारत नए स्टार्टअप ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करे।
1: सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने वाले मेरठ के स्टार्टअप के फाउंडर आशुतोष वशिष्ठ ने बताया कि सरकार से उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला। सरकार के प्रयासों का नतीजा यह है कि देश में करीब 50% स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से सामने आए हैं। संगीता श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, मेरठ।
2: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं यौम पैदाइश के मौके पर लखनऊ में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी पूरी जिंदगी भारत और भारतीयता के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने भारत को इंटीग्रल ह्यूमन फलसफा दिया। अंत्योदय के उनके ख्यालात समाज के सबसे निचले तबके को खुद इन्हसारी की राह पर गामजन करने की कोशिशों का हिस्सा हैं। अमेठी ज़िले के सलमान खान ने 2026 के एशियाई खेलों में मर्दों के डबल स्कल्स रोइंग इवेंट में कांसे का तमगा जीतकर रियासत का नाम रोशन किया है। सलमान और सतनाम सिंह की जोड़ी फाइनल में तीसरे नंबर पर रही। भारतीय जोड़ी तिलाई तमगा जीतने वाले चीन से 3.48 सेकेंड और सिल्वर मेडलिस्ट उज़्बेकिस्तान से 2.76 सेकेंड पीछे रही। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जीतने वालों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि उनकी पुरअज़्म कोशिशों ने इस जोड़ी को पोडियम पर एक अच्छी जगह दिलाई। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में 27 सितंबर तक तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। ताहम आज और 26 सितंबर को मशरक़ी अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। इसकी वजह से रियासत के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की कमी वाक़ हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।
3: आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी।

0: आवाजें कानों तक पहुंचकर बस सुनाई नहीं देती बल्कि दिल के किसी कोने में उतर जाती हैं।
1: जी हाँ, और कुछ बातें चंद लफ्जों में भी होकर पूरी एक कहानी कह जाती है, और कभी कभी एक छोटी सी घंटी बजती है जहाँ फोन की दूसरी तरफ से आती है किसी अपने की आवाज,
0: और महसूस होता है दूरियाँ चाहे कितनी भी हो, दिलों के बीच फासले नहीं है। तो आज मैं प्रीति
1: और मैं अनामिका आज का ये कार्यक्रम करते हैं उन्हीं आवाजों के नाम, उन्हीं बातों के नाम
0: जो फोन कॉल्स की लहरों पर सवार होकर सीधे आपके हृदय से हमारे दिल तक पहुंच रहे हैं।
1: जी हाँ, तो उम्मीद है कि आपने ट्यून कर लिया होगा अपने चहेते कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी को सुनने और हमसे जुड़ने के लिए। तो भाई देर किस बात की, आप अपना फोन उठाइए और हमसे जुड़ जाइए और आवाज का वॉल्यूम कर लीजिए थोड़ा तेज, यादों के दरवाजे भी फटाफट खोल लीजिए।
0: और हमारा फोन नंबर एक बार फिर से लिख लीजिए 0532-2970462 0532-242-3649। और अनामिका देखो, जो सबसे पहला संदेश हमें मिला है वो है नीपा नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह पल्लवी शाह का, और साथ में एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा जी का, बबीता बोर्ड जी का, निखिल जी का, अनंत तन्वी और अंकित जी का। ये गणेश उत्सव जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक गीत सुनना चाहते हैं, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं इस गीत के साथ, और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, तो अगर वो हमसे जुड़ जाते हैं तो हम उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो शायद फोन कॉल कट गई है।
2: हेलो
0: हेलो, हाँ आप कौन बोल
2: रहे हैं? नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आपका नाम?
2: सुरेंद्र यादव, बांका जलालपुर।
0: अच्छा सुरेंद्र जी, आप क्या काम करते हैं?

0: जी
1: आप क्या काम करते हैं सुरेन जी?
0: जी ये खेती बाड़ी है, ये करता हूँ धान धान की।
1: अरे वाह, तो ये तो बहुत बढ़िया काम है सुरेन जी। और ये बताइए, आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं?
0: बहुत अच्छे लगते हैं मैम।
1: अच्छा, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप हेलो गृहलक्ष्मी हर बार सुन पाते हैं?
0: हर सुनते हैं, हम भी कॉल करते हैं, दोबारा तिबारा है, तीन
1: अच्छा अच्छा
0: चार दा हो सुखा मेरा, हेलो फरवारी भी सुनता हूँ
1: अरे वाह, तो चलिए ये तो
0: बराबर।
1: बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे नियमित श्रोता हैं। तो
0: हाँ
1: आज
0: जी मैम,
1: आज आप
0: बिल्कुल
1: कौन सा
0: बोल रहा
1: गीत,
0: हूँ मैं।
1: जी आज आप कौन सा गीत, हमारे पास दो फिल्में हैं, अग्निपथ जो नई वाली है और साथ में यस बॉस, किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: मैम कोई भी गीत सुना दे, कोई भी से अच्छी
1: अच्छा
0: अच्छा
1: तो
0: गाना आप सुनाइए, बढ़िया
1: ठीक
0: तभी
1: है,
0: हमारे कोरल को सबको अच्छा लगे।
1: अच्छा ठीक है। तो देखिए गणेश उत्सव आज पूरा हो रहा है, हम ये गीत आप सब श्रोताओं को भेज रहे हैं गणेश उत्सव के नाम पर।
0: जी जी
1: जी

0: प्रीति जी, भाई अग्निपथ का ये गीत जो कि पूरी तरीके से भक्ति के रंग में हमें सराबोर कर गया है ना।
1: और देखिए अब अगले कॉलर जुड़ रहे हैं नामिका जी।
0: हेलो हेलो हेलो, हाँ जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
2: हाँ मैडम, नमस्कार जो है।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने चहेते कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी में। तो बताइए

0: हाँ मैडम, मैं संगम नगरी प्रयागराज हवेलिया झोंसी से महेंद्रनाथ कुशवाहा बोल रहा हूँ।
1: जी,
0: आप लोगों का गृह लक्ष्मी कार्यक्रम हेलो जो है बहुत बढ़िया कार्यक्रम चलता है, और भी जितने कार्यक्रम हो चाहे बोलते नगमे हो या कोई भी कार्यक्रम हो सब अच्छे लगते हैं क्या उनसे जो है।
1: जी सबसे
0: तो ये
1: बड़ी बात
0: गाना
1: तो
0: हमको
1: ये
0: एक
1: है
0: बहुत
1: कि
0: पसंद
1: आप
0: आता
1: हमें
0: है।
1: सुनते हैं और सारे कार्यक्रम को इतनी संजीदगी के साथ सुनते हैं, क्योंकि आपके
0: हाँ
1: शब्द हमें
0: मैडम,
1: हृदय तक पहुंचा पा रहे हैं, आपके शब्दों को हम समझ पा रहे हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से आपने सारे कार्यक्रमों के नाम तक अपनी जुबानी रट रखा है। तो बहुत अच्छा
0: हाँ
1: लगता
0: मैडम,
1: है कि आप सभी की प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचती हैं और आप सबकी जब भी बातें हमें सुनाई देती हैं इस कार्यक्रम के
0: जी,
1: जरिए।
0: नमस्कार प्रयागराज जो
1: जी
0: करती हैं मैडम नीलम श्रीवास्तव जी, वो समझ लीजिए आज का भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम था जो है,
1: जी, बहुत बहुत
0: पूरा
1: आभार
0: बारे में बता
1: आपका।
0: रही थी जो है, बहुत अच्छा लग रहा था मैडम
1: जी
0: जी से।
1: बहुत आभार आपका। तो आज बताइए,
0: हाँ
1: आपको पता ही है कि हमारी दो फिल्में हैं
0: हाँ
1: अग्निपथ।
0: यस बॉस का
1: जी
0: मैडम, कोई भी गाना सुनवा दीजिए यस बॉस का।
1: जी ठीक है सुरेंद्र जी, तो यस बॉस का हम कोई भी गीत आप तक पहुंचा रहे हैं और आप अपने इस गीत को एंजॉय करिए अपने सभी
0: हाँ
1: साथियों के साथ।
0: नमस्ते नमस्ते मैडम, नमस्ते दोनों
1: नमस्कार।
0: दीदी।

0: कुछ ख्वाब आँखों में रहते हैं तो कुछ गीतों में ढल जाते हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में आकर इन ख्वाबों को हकीकत बना देते हैं।
1: बिल्कुल, और यही खूबसूरती है हमारे फिल्मी गीतों की। क्या कहती हैं आप?
0: बिल्कुल सही कह रही हो अनामिका। और देखो ना, ये जो गीत है ना, ये सबके मन में थोड़ा थोड़ा बसता रहता है।
1: बिल्कुल,
0: हर कोई चाहता है कि चांद तारे तोड़ लाएं। अच्छा देखिए, अब हमारे पास किसी कॉलर का फ़ोन आया है। कोई कॉलर हमसे कनेक्ट हो रहे हैं? नहीं, देखो अनामिका, अभी कनेक्ट कनेक्ट तो नहीं हो पा रहे हैं। शायद आज बारिश की बूंदों ने बहुत रोड़े अटकाए हुए हैं।
1: बिल्कुल, वो है ना कि भाई आज बारिशों ने इस तरीके की।
0: हाँ, और अब कोई कॉल आई है। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, क्या नाम है आपका?

0: रेडियो से है दोस्ती, आकाशवाणी से है प्यार, रेडियो से है दोस्ती, आकाशवाणी से है प्यार, होठों पे है मुस्कुराहट, चेहरे पे है निखार, गोतनी कुंडा प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, नाम है मेरा राजेंद्र कुमार, इसी बात पे प्रीति और अनामिका को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: राजेंद्र कुमार जी को भी हमारा नमस्कार। और आपने जिस तरह से अपने को इंट्रोड्यूस किया, हम तो थोड़ी देर तक सुन रहे थे कि ये कविता भी और लंबी चलेगी और हम कुछ और आपके बारे में जानेंगे। ये बताइए, आपको कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम?
0: बहुत अच्छे लगते हैं मैम आप लोगों के कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम आते हैं मैं सारे कार्यक्रम को सुनता हूँ,
1: अच्छा
0: और
1: है।
0: बहुत मेहनत के साथ आप लोग तैयार करते हैं कार्यक्रम को, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मेहनत हमारी पूरी टीम करती है, बस ये सोचकर कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए, आप लोग इससे जुड़ें और जो हमारे श्रोता हैं उनके दिलों में ये प्रोग्राम बस जाए। तो आज हमारे पास दो फिल्में हैं, अग्निपथ, यस बॉस। आप किस फिल्म का गीत सुनेंगे?
0: अग्निपत्र फिल्म का मैम कोई सभी
1: अग्निपथ का, अग्निपथ फिल्म का कोई सभी गीत है। अच्छा,
0: जी,
1: ये तो बहुत अच्छा। आप हमारे और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं राजीव?
0: जैसे मैम पनघट कार्यक्रम होते हैं और गूंजते नगमे
1: अच्छा,
0: और आकाशवाणी प्रयागराज।
1: ठीक है। तो आज हम आपको अग्निपथ का ये गीत सुनवा रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है, और सुनिए।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। अपना नाम बता दीजिए।
1: रेखा यादव कुकड़ा हरिया प्रयागराज से बोल रही हूँ।
0: जी बहुत बहुत स्वागत रेखा जी, बताइए। वैसे तो आज बारिश का मौसम है ना रेखा जी, तो उधर बारिश का इस
1: हाँ
0: समय
1: मैम,
0: क्या?
1: दिन भर बारिश हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप हाउसवाइफ हैं या कुछ करती भी हैं?
1: नहीं मैम, कुछ नहीं करती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: जी, तो आपके साथ और भी आपके साथी हैं जो हमें सुनते हैं?
1: हाँ मैम,
0: अच्छा जी, तो इसके अलावा, हेलो गृहलक्ष्मी के अलावा, मुझे लगता है कि आप भी
1: हेलो फरमाइश गृहलक्ष्मी पनघट कृषि जगत और वॉइस प्रयागराज जो आता है मैम, और
0: जी,
1: सब प्रोग्राम हम आपका सुनते हैं।
0: तो आप एक बात बताएं,
1: क्या
0: आपका एक सुझाव जानना चाहते हैं रेखा जी, कि जब
1: चीज़
0: भी
1: मैम?
0: आप कार्यक्रम सुनती हैं तो क्या इन सारे कार्यक्रमों के साथ आप लोग अपनी गतिविधियों को भी जोड़ पाती हैं, कुछ सीख पाती हैं, कुछ ऐसा जो आप हमारे साथ साझा कर सकती हैं?
1: मैम, सब आपकी बात हम सुनते हैं, सीखते हैं, पर हम अभी आज से जुड़ नहीं पाए हैं।
0: ये
1: मतलब
0: तो
1: हमारे पास
0: जी
1: बड़ी वाली मोबाइल नहीं है।
0: कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमसे जुड़ तो पा रही हैं। देखिए, इस कार्यक्रम के
1: हाँ,
0: साथ आप हमसे बात कर रही
1: फोन के
0: हैं।
1: माध्यम से जैसे आप बात कर लेते हैं
0: जी
1: बस।
0: जी तो रेखा जी, बताइए कि आज आपको हमारी दो फिल्में तो पता ही हैं, नई वाली अग्निपथ और दूसरी फिल्म का नाम है यस
1: अग्निपथ
0: बॉस।
1: का,
0: जी, अग्निपथ का कौन सा गाना
1: हाँ
0: सुनवा दें आपको?
1: एक मैम अपनी पसंद का सुनवा दीजिए।
0: जी ठीक है, तो चलिए आप हमारी पसंद का ये गीत सुनिए।
2: भाई

0: तो अनामिका, हमारे कार्यक्रम हमारे सभी श्रोता सुन रहे हैं, और देखिए कॉल लगातार आ रहे हैं, कुछ लोग हमसे जुड़ पा रहे हैं, कुछ के कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आप कौन बात कर
1: हेलो,
0: रहे हैं? हेलो,
1: अच्छे आपका नियमित श्रोता धीरज जबारी बात कर रहा हूँ
0: धीरज जबारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम में।
1: जी, और आकाशवाणी गुरु लक्ष्मी परिवार यानी टीम
0: जी,
1: और सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार।
0: आपको भी हमारी टीम की तरफ से नमस्कार। और आज चूंकि आप तो नियमित श्रोता हैं, आपसे हमें पता चलता रहता है कि हम कैसे किस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। आज आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
1: यस बॉस का कोई भी गाना हो तो चलेगा।
0: यस
1: और
0: जी,
1: आप लोग जो ये गुरु लक्ष्मी कार्यक्रम में जो भी टिप्स देती है, रेसिपी देती है व्यंजनों
0: जी
1: की और कई अच्छी अच्छी बातें, फिर बोर कार्यक्रम आता है सब हम सुनते हैं
0: जी
1: और कभी
0: जी
1: कभार हम समीक्षा नहीं कर पाते तो माफी
0: जी
1: चाहते हैं, लेकिन बढ़िया
0: जी
1: कार्यक्रम फिर होते हैं आप लोग।
0: जी
1: देखिए
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समीक्षा करते हैं और हमें बताते हैं, तो हम आपकी प्रतीक्षा में रहते हैं, आपके संदेश की, कि अब आज आप हमें क्या बता रहे हैं या कहाँ हमसे हम और क्या
1: जी
0: अच्छा कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए तो पूरा क्रेडिट हमारी पूरी टीम को जाता है, जो हमारे पैक्स हैं
1: जी
0: उनको जाता है, और हमारी जो जितनी भी गृहलक्ष्मीपुरी टीम हमारी जो साथ की हैं सबको जाता है, और आप
1: जी
0: हमारे श्रोता
1: और एक
0: हैं।
1: सुझाव
0: जी
1: देना चाहता हूँ,
0: हाँ, बताएं।
1: अगर हो सके तो अगर जब दोबारा हेलो गुरु लक्ष्मी कार्यक्रम करे
0: जी
1: तो एक फिल्म पुरानी रखे और एक नई रखे, क्योंकि आपके कई ऐसे श्रोता है जो मेरे जैसे यानी 55 के साल के 60 के साल के भी श्रोता है।
0: जी जी
1: देखा जाए
0: जी
1: तो श्रोता छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है
0: बिल्कुल, देखिए श्रोता बहुमूल्य होता है, तो हम
1: जी।
0: आपका ये सुझाव अपने पेक्स तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और उनसे हम भी आग्रह करेंगे कि आपकी इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। तो अगली बार
1: जी
0: ऐसा ज़रूर होगा, ऐसी हम कोशिश करेंगे। फिलहाल
1: जी धन्यवाद
0: आपके लिए यस बॉस फिल्म का ये गीत हमारी तरफ से।
1: आप दोनों को और अभिकांत जी को और पूरी टीम को
0: बहुत
1: जी,
0: बहुत
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए।
1: जी, नमस्ते मैम
0: नमस्कार
1: जी। मैं महेंद्र यादव मुन्ना, बरौद हंडिया प्रयागराज से। जी
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका महेंद्र जी। जी बताइए पहले तो आप अपने बारे में कि आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है और इस
1: बहुत
0: वक्त आप
1: बढ़िया है
0: जहाँ
1: जी,
0: भी
1: फिट
0: हैं।
1: है, बिल्कुल सही है।
0: जी, और आपके साथी और आपके परिवार में सभी लोग।
1: हाँ, सभी लोग सही हैं। हमारी मिसेज रेखा यादव जी, जो कि रेडियो से हमेशा जुड़ी रहती हैं, और
0: जी
1: उन्होंने हमें बताया कि यार रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ,
0: जी तो और कुछ बताइए आप अपने बारे में। और
1: अब
0: आज
1: हम इस
0: तो
1: टाइम में फोन जो है कि हम दिल्ली से किए हुए हैं, हम दिल्ली पे हैं, दिल्ली में हैं जॉब पे। हाँ
0: अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए कि आप दिल्ली में भी बैठकर हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपना साथ हमें बराबर से दे रहे हैं।
1: जी,
0: तो अनामिका, आपने इनसे जाना कि ये कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: यस बॉस फिल्म का गाना है, चूड़ी
0: जी
1: बजी है कहीं दूर खन खन।
0: तो लगता है ये गीत आप अपनी भाई जी पत्नी जी ने आपको बताया है। तो ज़रूर ये खूबसूरत सा गीत आपकी तरफ से पहुंच रहा है सीधे आपके घर पर।
1: जी

अनामिका, हमारा जो हेलो गृह लक्ष्मी कार्यक्रम है ना, इसके लिए बहुत सारे मैसेज आते हैं और आज भी देखो कुछ लोगों के मैसेज आए हैं, लाइन पे वो लोग बने हुए हैं लेकिन कॉल नहीं लग पा रही है। देखो, मुंबई महाराष्ट्र से संजीव तिवारी जी का, नवाबगंज से रीना यादव जी का, साधना शुक्ला का तेलियरगंज से, आरती जी बनारस से, दीपमाला सिंह कानपुर से, ये लोग, इन लोगों ने मैसेज किया है और इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि आप जो भी गीत सुनवाना चाहें दोनों फिल्मों में से, आप उसे सुनवा दीजिए, हमारे मैसेज शामिल कीजिए। और अब हमारे पास देखिए कॉल आ रही थी अनामिका और रह गई, कुछ तो मौसम आज परेशान कर रहा है ना, और आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है तो हम कौन सा फिल्म का इनके लिए सुनवा दें, यस बॉस का एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं अपने इन सभी श्रोताओं को और फिर अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

0: तो प्रीति जी,
1: जी
0: शाहरुख खान की यस बॉस इस मूवी ने कितना धमाल मचाया था, याद है आपको? और पता है सबसे प्यारी जो बात थी इस पूरी मूवी में कि इनका जो सपना था ना वो बड़ा ही चुलबुला सा था, ऐसा अंदाज कि काबिले तारीफ और आज तक हम लोग की जुबान ही बना हुआ है। और जूही चावला जी का वो चुलबुला अंदाज है ना, और इस गाने में बिल्कुल, और इस गाने में जो धूम मचाई थी, जाते है तू कहाँ, वाह बिल्कुल झूमने लगे हम दोनों भी।
1: और अनामिका दोनों फिल्में आज की जो अग्निपथ है और यस बॉस, दोनों अपने समय की काफी हिट फिल्में रहीं, और जहाँ इस दोनों में जो कलाकार थे वो भी बड़े एक्टर थे और उन्होंने इतना अच्छा अभिनय किया। ऋतिक रोशन जी की बात करें या फिर शाहरुख खान की, दोनों फिल्में जिन्होंने देखी वो फिर थिएटर से बाहर निकल के इनके अभिनय की चर्चा जरूर कर रहे
0: बिल्कुल।
1: थे। जहाँ जूही चावला की खूबसूरती की बात हो रही थी वहाँ पर इनके अभिनय की चर्चा हो रही थी। वैसे देखो हमारे पास कुछ मैसेज भी आए हैं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा सोनाली सोनम आशीष विश्वकर्मा का, मऊ से अंशुप्रिया विवेक सुबोध, बनारस से विभा मंजू जी आभा, ये लोग सुनना चाहती हैं अग्निपथ का फिल्म गुनगुना ये गीत। और ये गीत हम आप सबको सुनवा रहे हैं, और आज के इस प्रसारण में जित आप लोगों ने अपने सभी श्रोताओं को हम थैंक यू कहेंगे, साथ में अपनी पूरी टीम को भी थैंक यू कहेंगे। पहले आप ये गीत सुनिए जी।

0: अनामिका हमारे साथ जुड़े, ढेर सारे श्रोता, हमने उनकी फरमाइश की गीत सुनवाए, तो सभी श्रोताओं का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में सहयोग दिया हमारी टेक्निकल टीम ने, दीप्ति जी ने, और साथ में हम धन्यवाद देंगे अभय सर का। और अपने श्रोताओं से जिनका कॉल नहीं लग पाया, उन सबसे वादा रहेगा कि अगली बार आप फिर से ट्राई कीजिएगा, आपका कॉल लगेगा। और अब दीजिए हमें इजाज़त, मुझे प्रीति को
1: और मुझे अनामिका को नमस्कार।

0: short 484.6 in the final to finish 6.6 points ahead of South Korea's Soo-hyun Hong and Gyeon Chu, who took silver with 478. Kamaljeet and Suruchi had topped the qualification with 587 points, including 29 inner tens. Indian men's and women's kabaddi teams have also entered the finals at the Asian Games after registering comprehensive victories in their respective semi-final matches. Indian squash players have assured themselves of 3 medals at the Asian Games, with Joshna Chinnappa and Velavan Senthilkumar reaching the mixed double semi-finals, while Anahat Singh and Abhay Singh entered the last 4 in singles. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Viksit Bharat can be realized only with the contribution of everyone, interacts with Seva Yatris under Seva Sankalp Abhiyan. Government decides to provide skill training to 70,000 rural youths under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana from next month. Foreign ministers of South Africa and Brazil condemn Pahalgam terror attack, reaffirm zero tolerance towards terrorism during IPSA Dialogue Forum meeting on the sidelines of UNGA. Heavy rain due to depression wreaks havoc in several parts of Odisha, Andhra Pradesh and Telangana. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Priyanka Arora. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर आईबीएसए संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और

0: केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधा कृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
2: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर

0: रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में है। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
4: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
3: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
5: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
1: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत

0: कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्ते,
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की ओर से।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं, वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में।
2: जी
3: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
3: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर

0: समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
1: जी।
0: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
1: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
0: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
1: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया, उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
0: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
1: जी।
0: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
1: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
0: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया
1: जी।
0: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
1: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियां, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
1: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
0: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,

0: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
1: मुझे बड़ा डर लगता है।
0: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
2: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
2: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू, अरे
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
2: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से

0: बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
1: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा।
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई।

लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 3 बजे हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, हमारे नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों, जय हिंद। आई होप कि आप सभी फिट होंगे और इस बदलते हुए मौसम में ज्यादा उछल कूद भी नहीं कर रहे होंगे।
1: सही कह रही हैं दीदी। लेकिन ये जो छोटे हमारे स्मार्ट से बच्चे हैं ना, थोड़ा थोड़ा शरारती भी हैं। ठीक कहा ना मैंने?
0: बिल्कुल प्रीति दी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा।
1: अरे दीदी, मैंने तो आपका नाम ही नहीं बताया साथियों को। आज हमारे साथ है अनामिका दीदी।
0: कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी सी बात हो ही जाती है। वैसे प्रीति दी, ये आपने सही कहा कि हमारे जो छोटे साथी है ना, वो हैं तो बड़े स्मार्ट, लेकिन अपनी इन शरारतों के साथ इस बारिश में, जो कि कल से पूरी तरह अभी तक नहीं रुकी है, उसमें थोड़ा सा कुछ बातों का ख्याल तो हमारे इन नन्हे स्मार्ट साथियों को तो रखना ही होगा।
1: बिल्कुल रखना होगा कि इतनी ज्यादा जब बारिश हो रही हो और लगातार हो रही है, तो बाहर जाके खेलना नहीं है, घर में ही बैठ के कुछ खेल लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना?
0: आप ठीक तो कह रही हैं। वैसे मेरे जहन में ना एक आइडिया आ रहा है।
1: कौन सा आइडिया?
0: और कुछ सवालियत, मतलब ऐसा लग रहा है ना, कुछ सवाल तो पूछ लूं मैं।
1: अच्छा,
0: पहली पूछती हूँ।
1: पहली पूछेंगी? देखिए दीदी, अगर नहीं आया तो जवाब जल्दी से आप बता देना।
0: बिल्कुल, तो जरा ध्यान से सुनिए। अभी आपने कहा ना कि बाहर भीगना नहीं है,
1: नहीं भीगना,
0: बाहर जाकर के खेलना नहीं
1: है, खेलना नहीं है,
0: ठीक है,
1: ठीक है।
0: तो पूछती हूँ एक सवाल
1: जी
0: आपको। अच्छा, सबसे पहले तो इजी सा ये कि आपको पसंद क्या है, कौन सा खेल खेलना?
1: दीदी मुझे तो पसंद है सारे गेम्स खेलना।
0: कौन से?
1: जैसे मुझे तो वैसे आउटडोर गेम बहुत पसंद है।
0: आउटडोर गेम्स?
1: हाँ,
0: अच्छा ठीक है।
1: हाँ,
0: ठीक है, आउटडोर गेम्स का आपने नाम ही ले लिया है तो कोई बात नहीं है।
1: बारिश में तो नहीं जा सकते ना।
0: हाँ, तो हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा आप बताइए कि आपको कैरम, शतरंज और पजल्स ये कैसे लगते हैं?
1: बहुत अच्छे, और शतरंज तो मेरा फेवरेट है।
0: तो चलिए, अभी तो आपने कहा कि बारिश हो रही है तो भाई बाहर नहीं जा सकते,
1: नहीं जा,
0: लेकिन कुछ गेम्स ऐसे हैं जो हम घर में खेल सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: जैसे,
0: और जो घर में खेलते हैं उसे क्या कहते हैं, बस यही बताना है आपको।
1: उसे कहते हैं इंडोर गेम्स।
0: देखा, और मुझे लगता है प्रीति दी कि हमारे बच्चों के पास भी इसके अलग अलग जवाब होंगे, क्योंकि भाई जिस तरह हमें पजल खेलना पसंद है, हो सकता है उन्हें सांप सीढ़ी खेलना पसंद हो, लूडो खेलना पसंद हो।
1: सही कहा दीदी। और वैसे बताऊं, जो मेरे नन्हे साथी हैं वो और भी गेम्स खेलते हैं। जब हम छोटे थे तो याद है हम पर्चियां बनाकर बहुत सारे गेम्स खेलते थे।
0: बिल्कुल, और वो लुका छिपी।
1: हाँ, घर के अंदर भी कभी
0: बिल्कुल,
1: कभी
0: घर के अंदर भी कभी कभी।
1: हाँ,
0: लेकिन मैं ना सोच रही हूँ कि क्यों ना हम बच्चों से एक सवाल और पूछते हैं।
1: और पूछते, उनकी तरफ से जवाब मैं दूंगी।
0: ठीक है।
1: अच्छा,
0: तो बताइए, अभी तो आपने कहा कि भाई मुझे बाहर वाले गेम्स ज्यादा पसंद है।
1: हाँ,
0: तो इन बाहर वाले गेम्स में आते कौन कौन से गेम्स हैं?
1: देखिए, जो हम सबका फेवरेट है क्रिकेट।
0: ओके।
1: बच्चों का फेवरेट है फुटबॉल, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारा एनर्जी लगती है। और बैडमिंटन है, कबड्डी है, और हम स्कूल में खो खो भी खेला करते थे, ऐसे ढेर सारे गेम, रस्सा कस्सी भी।
0: अरे वाह, आपने तो बैठे बैठे बचपन की दुनिया में ले जाके उठा के पटक दिया। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे नन्हे साथी सोच रहे होंगे प्रीति दीदी ने तो सारे जवाब दे दिए, तो घबराइए मत, आपके भी जो जवाब है ना वो हमारे कानों तक पहुंच चुके हैं। तो लेकिन दीदी, मुझे लगता है कि आज अपने नन्हे साथियों को ना ये आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स की कैसे फ्रेंडशिप करवाते हैं ये बता देते हैं।
1: अरे वाह, तो नेकी और पूछ पूछ, तो अनामिका दीदी आप जल्दी से ये फ्रेंडशिप करवा दीजिए।
0: तो सुनिए जरा कि इंडोर गेम्स क्या कहते हैं हमसे। वो कहते हैं कि मुझे खेलने के लिए एक बड़ा सा मैदान की जरूरत होती है भाई, जैसे कि आप क्या, सॉरी, वो कहते हैं कि इंडोर गेम्स वाली, ओहो, आपने पहले आउटडोर का नाम लिया, मैं तो आउटडोर की गेम्स की पहुंच
1: रही थी कि अनामिका दीदी मन ही मन बाहर पहुंच गई है, बता रही है इंडोर गेम्स और बातें कर रही है आउटडोर गेम्स की।
0: देखा, ये है दिमाग का शरारतपन। कोई बात नहीं, तो हम फिर से वापस आते हैं और बताते हैं कि इंडोर गेम्स तो सीधे से ये कहता है कि भाई मुझे तो आवश्यकता ही नहीं एक खुले बड़े मैदान की, हम तो घर के अंदर भी चुपचाप से खेल सकते हैं और एक सुरक्षित जगह पे भी। और जैसा कि अभी आपने कुछ

0: नाम भी लिए थे, है ना। और हाँ। सबसे अच्छी बात तो क्या है, आपको याद है
1: क्या,
0: जब हम पर्ची बनाते थे कभी वो वर्ड कैच याद आता है?
1: याद आता है,
0: याद आता है ना। और फिर वो जो पजल्स हम करते थे वो क्रॉस क्रॉस क्रॉस करके, और फिर वो नेमिंग वर्ड्स ढूंढते थे, याद आया?
1: सच। और उससे उसको क्या होता दीदी, जब वो खेलते थे ना तो हमारे जो दादा दादी ना वो बड़े खुश हो जाते थे कि चलो बच्चे कुछ पढ़ने लिखने वाला खेल।
0: बिल्कुल। और आप सोचिए कि ये सारे गेम्स तो उस टाइम पे हमें समझ में तो नहीं आते थे कि हम कितना अपने ब्रेन का यूज कर रहे हैं।
1: सही कहा।
0: तो जब हम पजल से नहीं पहेलियों को बूझते थे, वो नेमिंग वर्ड्स, वो क्रॉसिंग जब करते थे ना, तो उससे हमारा ब्रेन जो था वो कहीं ना कहीं एकाग्र हो रहा था, कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ रहा था। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम खेल खेल में ये भी सीख रहे थे।
1: और दीदी पता है ये भी तो ब्रेन की एक्सरसाइज ही है।
0: एग्जैक्टली।
1: और देखिए जब हम अगर आउटडोर गेम्स के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बता दूं।
0: बिल्कुल।
1: देखिए जो आउटडोर गेम है इसके लिए हमें बाहर खेलने मैदान में जाना पड़ता है। कभी कभी जो हमारे बाहर घर की सड़क है, गली है, वहां पर भी कुछ गेम्स हम खेल लेते हैं। लुक्का छिपी, छुपन छुपाई, और जैसे दौड़ भाग
0: हो गया,
1: बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, सब छोटी छोटी चीजें हम लोग मैनेज करके खेल लेते थे और खूब मजा आता है। इससे हम एक्टिव तो रहते हैं, साथ ही जो हम बाहर खुली हवा में खेलते हैं तो हमारा स्टेमिना बहुत बढ़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए सबसे बड़ी चीज कि क्या है कि अभी आपने कहा ना स्टेमिना तो बढ़ता ही है, लेकिन जब हम ना टीम के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो टीम के साथ कैसे सामंजस्य बिठाना है, कैसे धैर्य बनाए रखना है, ये सबसे प्यारी सी चीज है जो खेल खेल में हम सीख जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दीदी। देखिए खेलों का जो उद्देश्य है वो भी यही होता है कि हम टीम स्पिरिट, चाहे हम इंडोर गेम खेलें चाहे आउटडोर, टीम स्पिरिट, उसके बाद हमारे अंदर जो एकाग्रता है वो विकसित होता है, जो हमारे अंदर खेल भावना है जो आके पूरी जिंदगी हमारे काम आती है वो विकसित होती है।
0: बिल्कुल।
1: और हम अंदर से जो हैप्पी फील करते हैं ना उसकी तो बात ही क्या है।
0: हाँ। और देखिए बस छोटे से नियम है जो मुझे लगता है कि जब इन दोनों गेम्स की दोस्ती हमने करवा दी है तो जो दोनों गेम्स के रूल्स हैं उनको भी बहुत थोड़ा सा प्यार से समझ लेना है।
1: जैसे कि
0: यही कि खेलते समय हमें जितने भी नियम है ना उनका पालन करना होता है, और अगर अपनी बारी ना आए जब तक, तब तक उछल कूद बिल्कुल नहीं मचाना है, धैर्य से अपनी बारी आने तक इंतजार करना है, वहीं हार जाने पर गुस्सा बिल्कुल नहीं होना है।
1: और अब हमारी बारी हो गई पूरी, और अब आ गई है गीत की बारी। तो हम एक अपने साथियों को प्यारा सा गीत सुनवाते हैं, फिर अपने कार्यक्रम में वापस लौटते हैं।

0: तो दीदी, इस गीत इस आसमानी छतरी के नीचे मुझे लगा आप भूल गई हैं।
1: बिल्कुल नहीं भूले हैं।
0: बिल्कुल नहीं भूली।
1: जैसे ही बच्चों आपको बताओ थोड़ा सा दिमाग, मुझे लगता है शरारत मेरा भी करने लगता है, लेकिन प्रीति दीदी इशारा कर देती है नहीं वापस आओ स्टूडियो में।
0: तो चलिए, अब आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, अब आप मेरे जो नन्हे साथी हैं ना, ये नन्हे फ्रेंड्स, उन्होंने सवाल लिख के भेजा है मुझे।
1: अच्छा
0: और
1: जी।
0: पूछा है जरा अनामिका दी से पूछिए, वो बताएं हमें कि ये जो बर्फ है ये पानी में क्यों तैरती है।
1: अच्छा जी, सिर्फ मुझसे पूछा गया
0: सिर्फ
1: है?
0: आप ही से पूछा गया है।
1: ठीक है, तो चलिए मैं बच्चों को भी बताती हूँ और आप भी नोट कर लीजिए।
0: नोट कर लेते हैं।
1: तो बच्चों आपको बताएं कि पानी के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे पानी के दोस्त रहते हैं, जिन्हें
0: अच्छा।
1: हम, जी हाँ, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। जब पानी ना गर्म या सामान्य होता है, तब ये सारे दोस्त आपस में खूब मस्ती करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं और एक दूसरे के बहुत पास पास रह जाते हैं।
0: जी, फिर
1: और फिर तब होता है यूं कि जब पानी बर्फ बनने लगता है, तो ये सारे दोस्त भागना दौड़ना बंद कर देते हैं।
0: ओह
1: और तब वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर दूर दूर खड़े हो जाते हैं और एक सुंदर सा क्रिस्टल या पिंजरे जैसा ढांचा बना लेते हैं। और
0: अच्छा।
1: आप नहीं पूछेंगे इसके आगे क्या होता है?
0: क्या होता है?
1: और इस तरह दूर दूर खड़े होने की वजह से उनके बीच में बहुत सारी जो स्पेस है वो ब्लैंक्स रह जाती है, यानी खाली।
0: अच्छा, ओके,
1: हाँ, वहाँ
0: फिर
1: हवा बच रही होती है,
0: तो
1: पता
0: उसका
1: है?
0: नतीजा क्या होता है?
1: उसका नतीजा ये होता है कि बर्फ के अंदर बहुत सारी खाली जगह जो होती है ना, वो पानी से हल्की हो जाती है। और फिर
0: अच्छा।
1: क्या, इस तरह वो ऊपर पानी के तैरने लग जाती है।
0: तो देखा सुना बहन बच्चों आपने कि बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि वो पानी से हल्की, या कह सकते हैं कि कम घनी होती है। जैसे दीदी ने बताया ना कि मॉलिक्यूल्स जब वो थोड़े दूर दूर जब जम जाते हैं, उनके बीच में जो हवा होती है वो उन्हें हल्का कर देती है। वैसे अनामिका दीदी, आपने समझाया तो बहुत अच्छा।
1: अच्छा जी,
0: और
1: आपको
0: हमारे
1: पसंद आया?
0: हमारे दोस्तों को पसंद आया, उन्होंने धीरे से मेरे कानों में कहा, आने अनामिका दीदी को थैंक यू बोल दो।
1: अच्छा जी, तो
0: हाँ
1: इसके पहले भी तो आपने ये जो इंडोर आउटडोर गेम्स की बताई थी बात, उसमें आप क्या कहना चाहेंगी? एक ही बात?
0: ये कि भाई थोड़ा खेलिए, खूब मुस्कुराइए, स्वस्थ रहिए, और बाहर का खाना इस मौसम में, तो बाहर का जो स्ट्रीट फूड होता है ना, नहीं खाना चाहिए।
1: ठीक
0: और
1: है।
0: बाहर जब आप निकलें, क्योंकि आजकल बूंदाबांदी चल रही है, तो छाता लेके जाएं, हैं, और जब ज़रूरत हो तभी जाएं। बस अनामिका दी, इतनी सी ही बात।
1: तो देखिए भाई, मैंने तो आपकी प्यारी सी प्रीति दीदी की ये बात तो नोट डाउन कर ली है अपनी ब्रेन में भी और डायरी में भी।
0: तो दीदी, अब हमारे कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, तो बच्चों से लेते हैं इजाजत। तो बच्चों, जय
1: जय हिंद।
0: हिंद।

0: अभी नन्हे मुन्ने सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
4: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं 100.3 FM का ये युवाणी सफ़र और आज मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त यानी अभिषेक। स्वागत है आप सभी का आपके इस मनपसंदीदा प्रोग्राम में। साथियों, आज की बातचीत थोड़ी पुरानी भी है और बिल्कुल नई सी भी, क्योंकि आज साथियों हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शब्दों की जो देखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, यानी वो शब्द हैं परंपरा और ट्रेंड। साथियों, आज हमारी जो बातचीत का विषय है वो उसका सार भी यही है और विषय भी कि परंपरा और ट्रेंड के बारे में हम अधिक जानें, अधिक से अधिक जानें और समझें कि कैसे परंपरा और ट्रेंड आज के नए ज़माने में टेक्नोलॉजी से मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं और उनको संजोए रखना, बचाए रखना कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथियों, एक तरफ दादी नानी की सुनाई हुई कहानियां हैं, आंगन में गूंजती लोक धुनें हैं, त्योहारों की खुशबू है, मिट्टी के दिए हैं, हाथ से लिखे खत हैं, और दूसरी तरफ मोबाइल की स्क्रीन है, वायरल रील्स हैं, नए फैशन हैं, नए मीम्स हैं और हर दिन बदलता हुआ ट्रेंड। तो सोचिए ज़रा, कल तक जो चीज़ नई थी आज वो चीज़ पुरानी हो गई और आज जो ट्रेंड कर रही है हो सकता है कुछ दिनों बाद उसका नाम भी याद ना रहे। लेकिन परंपरा तो समय के साथ चलती हुई वो कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना रूप बदलती है लेकिन अपनी पहचान बचाए रखती है। तो आज सवाल ये नहीं है कि हमें परंपरा चाहिए या ट्रेंड, सवाल ये है कि क्या हम दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। इसी विषय पर साथियों हम आज करेंगे बहुत सारी बातचीत, लेकिन क्यों ना अपने इस प्रोग्राम को अधिक वाइबिंग और मोर एनर्जेटिक बनाते चले अपने इस गीत के ज़रिए।

वेलकम बैक दोस्तों। और हम बात कर रहे थे परंपरा और ट्रेंड के बारे में। साथियों, परंपरा को अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो ये सिर्फ पुराने रीति रिवाजों का नाम नहीं है। परंपरा हमारे जीवन का वो अनुभव है जो हमें पिछली पीढ़ियों से मिलती हैं। हमारी भाषा, लोकगीत, लोक कला, खान पान, त्यौहार, पारिवारिक मूल्य, कहानियाँ, हस्तशिल्प और जीवन जीने के ऐसे तमाम तरीके, इन सब में परंपरा की कोई ना कोई झलक ज़रूर दिखाई देती है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि परंपरा कभी स्थिर नहीं रही। अगर हम इतिहास को देखें तो पाएंगे कि हमारी परंपराएं भी समय के साथ बदलती रही हैं। पहनावे बदले, संगीत बदला, त्यौहार मनाने के तौर तरीके बदले, तकनीकी आई और हमारे जीवन का

तरीका भी बदल गया। यानी परंपरा का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा पीछे की ओर देखते रहें, बल्कि अपनी जड़ों को समझते हुए आगे बढ़ना भी परंपरा का एक हिस्सा हो सकता है। साथियों, अब बात करते हैं ट्रेंड की। ट्रेंड यानी वो चीज़ जो किसी समय पर लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाती है। कोई नया गाना, कोई फैशन, कोई सोशल मीडिया चैलेंज, कोई नया शब्द, कोई तकनीकी या फिर कोई नया विचार, और देखते ही देखते हजारों लाखों लोग उसे अपनाने लगते हैं। युवाओं की दुनिया में ट्रेंड का असर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और आज एक नया गाना रिलीज़ होता है, कुछ ही घंटों में उसकी धुन दुनिया के हर कोने कोने सुनाई देने लगती है। कोई नया फैशन आता है तो सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। कोई नया शब्द लोकप्रिय होता है तो देखते ही देखते वो हमारी बातचीत का हिस्सा भी बन जाता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात याद रखना भी बेहद ज़रूरी है कि हर ट्रेंड ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए सही ही हो, और साथ ही हर पुरानी चीज़ बेकार नहीं होती। यही वो वजह है जहाँ हमें अपनी समझ का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथियों, कई बार हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे जब कोई ट्रेंड आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करने लग जाते हैं। कई बार हम अपनी पर्सनल डिटेल्स या तस्वीरें साझा करने लग जाते हैं। तो ऐसे में भी हमें ध्यान रखना होता है कि वो ट्रेंड हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्या कहीं हमारा डेटा तो ब्रीच नहीं हो रहा। इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी हमारी परंपरा ने ट्रेंड को अपनाया और ट्रेंड ने परंपरा को एक नया मंच तो आज दिया ही है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है तो उसका उपयोग हमें सही तरीके से करने चाहिए, बेहद खूबसूरती के साथ करना चाहिए। साथियों, कल्पना कीजिए, अगर हमारे लोकगीत सिर्फ पुराने संदूकों में बंद रह जाते तो शायद आज की पीढ़ी उन्हें सुन भी नहीं पाती। लेकिन जब वही लोक धुन नए संगीत के साथ हमारे सामने आती है, सोशल मीडिया पर पहुंचती है, तो युवा कलाकार उसे अपनी आवाज़ देते हैं, तो वो परंपरा फिर से जीवंत होती है। और यही काम आज का युवा कई क्षेत्रों में कर रहा है। कोई युवा पारंपरिक हस्तशिल्प को ऑनलाइन बेच रहा है, कोई पुराने व्यंजनों को नए अंदाज में लोगों तक परोस रहा है, कोई लोक संगीत को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रहा है, और कोई क्षेत्रीय भाषा में पॉडकास्ट बना रहा है, और कोई पारंपरिक कला को नए डिज़ाइन के साथ दुनिया के सामने रख रहा है। और यहाँ परंपरा अतीत में कैद नहीं बल्कि नए समय में अपनी जगह बना रही है। तो ये सब साथियों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जिनको हम देखकर समझ सकते हैं कि नए दौर में भी हमारे लिए परंपराएं कितनी मायने रखती हैं, और उन परंपराओं को जीवंत बनाए रखने के लिए ये ट्रेंड कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अभी अपने प्रोग्राम को और एनर्जेटिक बनाने के लिए हम एक बार फिर ला रहे हैं आपके लिए अपने प्रोग्राम का ये गीत।

दोस्तों, सितंबर ख़त्म हो रहा है और अक्टूबर आने ही वाला है, और हम जानते हैं उसके बाद फेस्टिवल का सीज़न शुरू होगा, नवरात्रि, दशहरा और उसके बाद दिवाली, यानी कि एक के बाद एक त्यौहार लगातार आते रहेंगे। लेकिन साथियों, कभी आपने गौर किया है कि त्यौहार भी अब बदल रहे हैं? पहले त्यौहारों की तैयारी घर और मोहल्ले तक सीमित हुआ करती थी, लेकिन अब वही त्यौहार डिजिटल दुनिया का हिस्सा भी बन चुके हैं। लोग शुभकामनाएं भेजते हैं, तस्वीरें साझा करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ऑनलाइन ख़रीदारी भी करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद त्यौहारों की मूल भावना, मिलना, खुशियाँ बांटना, परिवार और समाज से जुड़ना, आज भी वही है। यानी तरीका बदल गया है, लेकिन हमारी भावनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और शायद यही हमें समझना चाहिए। समय बदलता है, साधन बदलते हैं, लेकिन हर बदलाव के साथ अपनी मूल पहचान को बचाए रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। आज की पीढ़ी को ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। नए विचारों को जानना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए, नई तकनीकी सीखनी चाहिए, नए अवसर तलाशने चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी कला और अपनी जड़ों को जानना, उन्हें बचाए रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। बस इन सब के बीच हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी ऐसी चीज़ को फॉलो नहीं करना है जो हमारे लिए नुकसान की वजह बन जाए। इसलिए हमारी समझ, विचार और हमारा विवेक हमेशा जागृत होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही है कि जब हम कोई ट्रेंड फॉलो करते हैं तो कई बार गलत रास्ते की ओर हम चले जाते हैं, या कोई ऐसी लिंक क्लिक करते हैं जो हमें एक ऐसे चीज़ की ओर ले जाती है जो बहुत ही अनधिकृत होता है, और वो कहीं ना कहीं हमें खतरे में भी डाल सकता है। साथियों, आज की पीढ़ी को ट्रेंड के साथ चलना इम्पॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन वही बात कि अपनी जागरूकता को बनाए रखना है, अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ना है, अपनी परंपराओं को बचाए रखना है। उनके साथ अगर हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ मिल करके एक नए रिजल्ट के रूप में हमारे सामने होगी, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी ऐसा

नहीं है, आज की दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, कि हमारे पास संसाधन नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। आज के समय में हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके। क्योंकि दुनिया कितनी भी डिजिटल हो जाए साथियों, हमारी पहचान और हमारी जो परंपराएं हैं वो स्क्रीन से तब तक बाहर नहीं निकल कर पूरी तरह से आएंगी जब तक हम उसका सही सदुपयोग नहीं करेंगे। इसलिए हमारी पहचान, हमारे विचारों, हमारे व्यवहार, हमारी भाषा, हमारी रचनात्मकता और उस विरासत से बनेगी जिसे हम युवा साथी उसे आगे बढ़ाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपेंगे। ऐसे में परंपरा को बचाने का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि हम हर पुरानी चीज़ को बिना सवाल किए स्वीकार कर लें। समाज में समय के साथ सोच बदलती है, कुछ परंपराएं उपयोगी होती हैं और कुछ को नए संदर्भ में समझने की ज़रूरत होती है। और कुछ ऐसा भी हो सकती हैं जिन्हें समय के साथ पीछे छोड़ दिया जाए, जो ऑब्सोलीट हो चुकी होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सम्मान के साथ सवाल करें, समझ के साथ बदलाव को स्वीकार करें। यही एक जागरूक युवा की पहचान है। ट्रेंड साथियों हमें बताता है कि दुनिया अभी किस दिशा में जा रही है, और परंपरा हमें बार बार ये याद दिलाती है कि हमें आखिर कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। एक हमें भविष्य की ओर देखने की ये प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देती है, और दूसरा हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। और जब दोनों साथियों साथ मिलकर आते हैं तो शायद एक ऐसा भविष्य बनता है जिसमें आधुनिकता भी होती है और उसकी पहचान भी। साथियों बातचीत के सार में मैं आपसे यही कहूँगा कि ट्रेंड को अपनाइए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि हर कोई उसे अपना रहा है। उसे समझिए, परखिए और फिर तय कीजिए कि आपके लिए आखिर कितना उपयोगी है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: साथियों, अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले पड़ाव की ओर, जो कि है प्रेरणा पुंज। और साथियों, आज के प्रेरणा पुंज में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनका जीवन सादगी, अध्ययन, सेवा और राष्ट्र चिंतन से जुड़ा रहा है। यानी हम बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। साथियों, 25 सितंबर 1916 को राजस्थान के धानकिया में जन्मे दीनदयाल उपाध्याय का बचपन कठिन परिस्थितियों से गुजरा। कम उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन इन परिस्थितियों ने उनके भीतर सीखने की इच्छा को कभी कमज़ोर नहीं किया। उन्होंने शिक्षा को अपना साथी बनाया और अध्ययन के प्रति गहरी रुचि विकसित की। उनकी मेधा और परिश्रम ने उन्हें आगे बढ़ना सिखाया, लेकिन उनके जीवन की खास बात ये थी कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक उन्होंने समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को महत्व दिया। युवाओं के लिए उनके जीवन का पहला बड़ा संदेश यहीं से दिखाई देता है, जब वो कहते हैं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। जीवन में मुश्किलें आएंगी, रास्ते कभी आसान नहीं होंगे, लेकिन हमारी दिशा और हमारे प्रयास ये तय करते हैं कि हम उन परिस्थितियों से क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं। साथियों, दीनदयाल उपाध्याय जी संगठन निर्माण, लेखन कार्य और वैचारिक कार्यों में अधिक सक्रिय रहे। उन्होंने पत्रकारिता को भी समाज से संवाद का माध्यम बनाया और राष्ट्रधर्म, पांचजन्य तथा स्वदेश जैसे प्रकाशनों से वो जुड़े रहे। उनके लेखन में समाज, संस्कृति, राष्ट्र और आम व्यक्ति के जीवन से जुड़े विषय और विचार साफ दिखाई देते हैं। और यही बात आज के युवा साथियों के लिए भी बेहद ज़रूरी हो जाती है कि हमें अपने विचार बनाने चाहिए, लेकिन उन्हें पढ़कर, समझकर और तर्क के साथ विकसित करना भी आना चाहिए। आज जब सोशल मीडिया पर हम मिनट भर में हजारों विचार हमारे सामने आ जाते हैं, तब किसी बात को केवल इसलिए सही मान लेना क्योंकि वो वायरल हो रही है, ये पर्याप्त नहीं होता है। एक जागरूक युवा वही है जो पढ़ता है, सवाल करता है, तथ्यों को समझता है और फिर उसके बाद अपनी राय बनाता है। दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन में समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और अवसर पहुंचाने की चिंता प्रमुख होती थी। उन्होंने एकात्म मानववाद का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें व्यक्ति को केवल आर्थिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से जुड़े संपूर्ण मानव के रूप में देखने पर जोर दिया गया। उनके विचारों में समाज और राष्ट्र के विकास को व्यक्ति के कल्याण से जोड़कर देखने का प्रयास मिलता है। युवाओं के लिए इससे एक महत्वपूर्ण सीख निकलती है, सफलता केवल ये नहीं।

साथियों, आज हम करियर की दौड़ में हम सभी भाग रहे हैं। कोई नौकरी की तलाश में है, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और कोई अपने हुनर को दुनिया के सामने लाना चाहता है। इन सभी सपनों का होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन अपने सपनों के साथ समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी हमें याद रखना उतना ही ज़रूरी है, और वही जिम्मेदारी जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन हमें सिखाता है। साथियों, दीनदयाल जी का जीवन हमें संदेश देता है कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए उन्होंने व्यक्तिगत वैभव के बजाय विचार, संगठन और सेवा को अधिक महत्व दिया। उनके जीवन की ये सादगी आज के समय में और भी अर्थपूर्ण लगती है, जब सफलता को अक्सर महंगी चीज़ों और सोशल मीडिया की चमक के साथ जोड़कर देखा जाता है। आज प्रेरणा पुंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करने का अर्थ साथियों केवल ये नहीं होना चाहिए कि हम उनकी घटनाओं को रिपीट कर रहे हैं, बल्कि ये समझना चाहिए कि एक युवा अपने जीवन में अध्ययन, सादगी, आत्मनिर्भरता, सेवा, विचारशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी को किस तरह जगह दे सकता है। क्योंकि युवा होना सिर्फ एक उम्र का नाम नहीं है, युवा होना एक सोच है, नई चीज़ें सीखने की, सवाल पूछने की, अपने सपनों को दिशा देने की और अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाने की। तो साथियों, आज जब अपने किसी लक्ष्य की ओर आप जब भी बढ़ें आगे, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि सफलता की राह पर चलते हुए अपनी पहचान बनाएं, लेकिन उस पहचान में हमारे समाज के लिए थोड़ी सी जगह ज़रूर होनी चाहिए। आइए साथियों, अपने प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में आपको सुनवाते चलते हैं एक और गीत।

साथियों, अब अंत में बात कर लेते हैं हेल्थ अलर्ट की। साथियों, वैज्ञानिक शोध बताती है कि मोबाइल फ़ोन पर घंटों बिताना, जंक फूड की आदत और शारीरिक गतिविधियों का कम होना, ये किशोरियों की सेहत पर भारी पड़ सकता है। इसका असर हॉर्मोन्स पर भी दिख रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS जिसे हम कहते हैं, इसी से जुड़ी एक बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। एम्स नई दिल्ली के विशेषज्ञों ने 4,000 स्कूली बच्चों पर यह अध्ययन किया है। इसकी शुरुआती रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली है। इसमें पता चलता है कि 100 में से करीब 3 से 8 किशोरियों में PCOS की समस्या है और वयस्क महिलाओं में ये आंकड़ा करीब 5 से 18% तक भी पाया गया। एम्स की पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनी शर्मा के मुताबिक, बदलती जीवन शैली से किशोरियों में हॉर्मोन से जुड़ी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं और ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन, प्रोसेस्ड फूड, मीठे और प्रोसेस्ड फूड, कम शारीरिक गतिविधि, तनाव और नींद की गड़बड़ी, इस तरह से आने वाले दिनों में इन समस्याओं को और भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए खासकर लड़कियों को इस विषय पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। तो साथियों, ये थी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातचीत आपके लिए और धीरे धीरे हमारा समय भी ख़त्म हो रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको ही हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारी मेल आईडी पर जो कि है yuvvaniald@gmail.com पर। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा। सुनते रहिए अपना फेवरेट FM यूवाणीसी के साथ। मुझे यानी अभिषेक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

मीडियम वेव 212.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से

0: वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय

0: वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियां और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कर्नाटक से मालदीव के लिए GI टैग वाली गुलबर्गा तुअर दाल की 1 मीट्रिक टन खेप को रवाना किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के GI टैग वाले कृषि उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करना है। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य समेत 22 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष कार्यक्रमों और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नजर। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे गजलों का कहकशा। रात 10 बजे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी प्रसारित होगी। रात 10:23 पर अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन होगा। 7:31 पर आप सुनेंगे डॉक्टर सुमित कुमार मिश्र की वार्ता रामायणम युगातीतः संदेशः। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रीकांत वैश्य के गाए गीत और भजन होंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8 बजे। रात 8:23 पर अंग्रेजी कार्यक्रम होगा। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब एक नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर।

कल रात 9:30 पर सुनिएगा विज्ञान भारती। रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 7:31 पर डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी की वार्ता होगी, भारतीय चिंतन में स्वामी विवेकानंद का योगदान। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आदित्य राय के स्वर में गीत और भजन होंगे। कल प्रातः 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में प्रीति तिवारी से बातचीत होगी। विषय होगा प्रधानमंत्री कुसुम योजना से किसानों को लाभ। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:45 पर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल की वार्ता होगी, लॉन्ग कोविड एक जानकारी। 7:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित दिनकर राव देशपांडे का ख्याल गायन होगा। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल प्रातः 6:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:50 पर सुषमा त्रिपाठी के स्वर में गीत और भजन होंगे। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी प्रसारित होगा 10:05 पर, जिसमें कल आप सुनेंगे अनुराधा श्रीवास्तव और तेरस लाल और साथियों के गाए लोकगीत। कल सुबह 10:30 पर हमारे संग्रहालय से इस कार्यक्रम में पूर्व न्यायमूर्ति तथा आकाशवाणी प्रयागराज के पूर्व नाट्य कलाकार पालोक बसु से भेंटवार्ता होगी, भेंटकर्ता विपिन टंडन। फिल्म संगीत एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 11 बजे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कल 11:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी वादन होगा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12:30, प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। पनघट कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगी अर्चना पांडे की से बातचीत, ग्रामीण महिलाओं के लिए जरूरी वित्तीय साक्षरता, और इसके अलावा संदीपनमा वर्मा के गाए लोकगीत होंगे। दिन में 2:30 सुनिएगा लोकगीत, कलाकार होंगे हरिश्चंद पांडे और उनके साथी। लोकगीतों के कार्यक्रम धरती के गीत में कल शाम 5:00 आप सुनेंगे लालकेश्वर प्रसाद के स्वर में लोकगीत। युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:15। ग्रामीण भाई अपना पंचायत घर कार्यक्रम सुनेंगे शाम 6:30। ये थी जानकारी कल के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: स्वतंत्रता प्यारी के कारण निकल पड़े राजदूत,
1: स्वतंत्रता प्यारी के कारण निकल पड़े राजदूत,
0: झांसी वाली रानी भी और बांध कमर।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। दिनांक 29 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में आपकी थाली से पोषण की खुशहाली विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ प्रत्यक्षा कटियार। श्रोतागण मोटापा, खून की कमी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा अन्य बीमारियों में उचित आहार विहार के बारे में अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 0532-2970462 और 0532-2423649 पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 0532-2970462 और 0532-2423649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 होने को हैं। थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। विकसितभारतस्य सङ्कल्पाय सर्वजनसहभागिता अनतिक्रमणीया इति सेवासङ्कल्पाभियाने सेवायात्रिभिः सह सम्भाषणावधौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रख्यापितम्। दीनदयाल ग्रामीणकौशल्या योजनया 70,000 युवकानां प्रशिक्षणाय प्रशासनेन व्यधायि निर्णयः। IBSA मञ्चे पहलगाम आक्रमणस्य तीव्रनिन्दा। आतङ्कवादोन्मूलनाय दृढसङ्कल्पश्च प्रकटितः। गभीर अवपातेन ओडिशा आंध्र तेलंगाना राज्येषु अतिवृष्ट्या महती क्षतिः आपादिता। ऋतु विज्ञान विभागस्य उच्च सतर्कता च वर्तते। अपि च नागोया एशियाई क्रीडासु 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धायां भारतस्य कमलजीत सुरुचि युग्मेन स्वर्णपदकं प्रासाधि।

0: त्रिभिः अपि मन्त्रिभिः संयुक्तराष्ट्रस्य नियमपत्रस्य अन्ताराष्ट्रियविधिसंहितायाः सुदृढबहुपक्षीयव्यवस्थायाः च प्रति स्वकीया प्रतिबद्धता प्रदर्शिता। एकस्मिन् संयुक्तविज्ञापने IBSA नेतारः संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः व्यापकपरिष्कारस्य आह्वानम् अकुर्वन्, येन एषा संस्था समकालीनयथार्थतायाः प्रतिनिधित्वं कुर्वाणा अधिकं लोकतान्त्रिकप्रभाविणी च भवेत्। अत्रावधेयं यत् तैः जलवायुपरिवर्तनस्य समाह्वानानां त्वरितसमाधानाय नवीकरणीय ऊर्जायाः प्रसाराय सङ्गणकीयसम्पर्कसंवर्धनाय अथ आर्थिकसमृद्ध्यै कृत्रिमप्रज्ञायाः समुचित उपयोगाय विशेषं बलं प्रदत्तम्। वैश्विक अनिश्चिततासु सत्यपि भारतेन 17.8% विकासं सम्प्राप्य तीव्रतमवर्धमान अर्थव्यवस्थायाः स्थानं सुरक्षितम् इति ग्रेटर नोएडा नगरे उत्तरप्रदेश अन्ताराष्ट्रियव्यापारमेलायाः उद्घाटनावधौ गृहमन्त्री अमितशाहः उदघोषयत्। सः अवदत् यत् मूडीस् इति संस्थया भारतस्य विकासपूर्वानुमानं प्रवर्धितम्। JCR संस्थया च देशस्य सार्वभौम मानांकनं समुन्नतम्।
1: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं, दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
0: केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रिणा भूपेंद्र यादवेन अद्य नवदिल्ल्यां प्रभावी वन प्रबंधनार्थं क्षमता संवर्धन परियोजना इत्याख्यायाः कार्यशालायाः विधिवत् शुभारम्भो विहितः। अत्रावसरे मन्त्री न्यरूपयत् यत् इयं परियोजना वनाग्नि प्रबन्धने, जैवविविधता संरक्षणे अथ जलवायु कार्यान्वयने प्राविधिक क्षेत्रीय दक्षतानां संवर्धनाय महतीं सम्भावनां धारयति। दक्षिण छत्तीसगढ़ प्रान्ते तटसन्निकटे दक्षिण ओडिशा प्रान्ते च संजातस्य न्यून वायुपीडमण्डलस्य प्रभावतः अद्य भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन तयोः राज्ययोः कतिपयेषु भागेषु अतिवृष्टेः, अत्यन्त भीषण वृष्टेः च सम्भावनां प्रकटय्य रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रकटिता। अपरञ्च एतद् वायुपीडमण्डलम् आगामिषु 12 होरासु शिथिलं भूत्वा सामान्यानां न्यून वायुपीड सीमायां परिणश्यति इति विभागाधिकारिभिः निगदितम्। अद्य जापान देशस्य एचिनागोया नगरे एशिया प्रतिस्पर्धायां महिलानां शॉटपुट स्पर्धायां भारतीय क्रीडिका मनप्रीत कौर कांस्य पदकम् अवाप्तवती इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
4: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: राम राम। कहो रानू भैया, आज तो हम अपने भैया भैंसिया के साथे साथे गायों को बीमा करवाए दीन।
1: एकदम सही कह भैया। देखे एक बात और रहे हो बद्दू भैया।
0: हाँ।
1: देखे का है कि तुक ताल जोन है कभी काल गड़बड़ाई जाते।
0: अच्छा
1: और जोन आपन पशु एहन भैया देखे उनका तबीयत पानी अगर खराब हो जाते हैं
0: हाँ हाँ
1: या भाई कोनो घटना हो जाते हैं तो उसे ये है कि भैया देखे बहुत ज्यादा धन हानि हो
0: ए
1: जाते हैं।
0: भैया, हम अपने वहाँ पड़ोसी के देखे रहे,
1: हाँ हाँ
0: उनकर समझा भैया 3 साल का पणिया रही ही।
1: हाँ हाँ
0: अब समझा ऐसे अचानक से चट्ट से गिरी और पट्ट से निपट गए। अब
1: बाप।
0: समझा भैया, वो 60,000 को खरीद के लई आए रहे,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: तीन
1: हाँ
0: साल बेचारू हम मेहनत करे रहे, और सबसे बड़ी बात भैया लोन लेके खरीदे रहे
1: ये
0: नौका।
1: बात तो सही कहे भैया। अच्छा अगर उन बीमा कराए होते हैं
0: हाँ,
1: तो बद्री भैया ओकर उन्हें फायदा जरूर मिले
0: अब
1: थो।
0: कि भैया जब हम कृषि गोष्ठी में गए हैं ना,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: हुआइन जो वैज्ञानिक रहे हैं वो
1: हाँ
0: किसानी के साथे साथे यह बताए रहे कि देखा भैया, अगर बीमा कराए ले ब्या तो कौनो विपरीत परिस्थिति अगर आए तो
1: हाँ
0: समझा तोहका बीमा राशि मिल जाई। मान लगा जैसे मवेशी कोनो मर गवा तो ओकरे जगह पे हमका पैसा मिल जाता है, अगर लोन वोन ले भैया आसानी से चुकाऊ लेबे।
1: एकदम सही कहे भैया। अच्छा एक बात और रहे हो, एकर बहुत ज़्यादा भैया जोन मासिक किस्त आवत हो वह ना आवत
0: सही
1: हो।
0: बात है।
1: और साथे साथे ये है कि जोन अपन पशु हैं चाहे वो भेड़ हो चाहे बकरी हो चाहे सुकर पालन हो चाहे ऊँट हो, किसान भैया बहनी अरे चाहे जोन जानवर हो ओकर काम से बीमा कराई सकते
0: सही
1: हैं।
0: बात। और सबसे बढ़िया भैया एक इलावा है कि हम सरकार 50 से लेके 70% तक प्रीमियम में सब्सिडी दे देता है, यानी
1: कहिए
0: भैया आपका काम तो नहीं आसान कह दें।
1: भैया एकर मतलब यह है कि भैया कम से कम आधा लागत हुई और दाम पूरा मिला
0: हाँ
1: हो।
0: भैया, तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन भैया चलता है,
1: हाँ हाँ
0: उकरे अंतर्गत आप जब भी बीमा करावा तो इसी के अंतर्गत करो भैया, तो न
1: हाँ
0: सिर्फ आपको लाभ मिली, और अगर आपके पास वो वाला कार्ड हो चाहे SC ST वर्ग से आवत हो या BPL कार्ड हो,
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: समझा कि प्रीमियमों केवल नाम भरे का आपको जमा करे के रही।
1: अच्छा।
0: हाँ, और ओकर लाभ भैया ये है कि अच्छा एक चीज तो बताओ भूल गए भैया, एक
1: हाँ
0: लाभ ले बरे दो
1: हाँ
0: तीन चीज बहुत जरूरी होता है।
1: काका भैया।
0: एक तो भैया जो उन काने में देखा तो भैया टैगिंग करावा थीन,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: टैगिंग जरूर करावा, ऐसी पता चलत कि जानवर का चीज ID है, यानी ओकर
1: अच्छा
0: पहचान कीन जाता।
1: हाँ हाँ
0: दूसरा भैया मृत्यु प्रमाण पत्र जरूर रह चाहिए, और
1: अच्छा
0: ओकरे बारे जो अपने के चिकित्सक हो थीन
1: हाँ हाँ
0: सरकारी चिकित्सक, वो
1: हाँ
0: भैया पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र बना के दे थीन, जैसी भैया आपका बीमा वाला लाभ मिल जाता।
1: एकदम बद्री भैया। ये बतावा कुल तो बताई दी है ये
0: हाँ
1: किसान भैया बहनी हरे कराई है कैसे हो।
0: हाँ बड़ी बढ़िया जानकारी आप पूछा। देखा भैया, एक तो आजकल चुन्नू मुन्नू रे मोबाइल चलावा थी, उसी तो आप सीधे कह सकते हैं,
1: हाँ हाँ
0: आप चला जा सहज जन सेवा केंद्र,
1: अच्छा
0: और हुआ पे अपने साथे ले के जा अपन आधार कार्ड,
1: हाँ
0: बैंक पासबुक को फोटो कॉपी, और
1: हाँ
0: एक ठी मोबाइल नंबर ऐसा जे पर की OTP आवे,
1: अच्छा
0: और तीनों दे के और आराम से हुआइन बैठा तो हाय हुआइन के हुआइन रजिस्ट्रेशन करी है, यानी पंजीकरण करी है, फोटो अपलोड करी है, ओकरे बाद तो है बीमा
1: हो
0: होई
1: ही
0: गवा।
1: जाए यानी पैसों भैया तुरंत ही जौन लगे के रहे लगी जाए और
0: हाँ,
1: छूट मिले के रहे मिल
0: और
1: जाए।
0: आजकल तो भैया सुविधा ही मिल गई है कि आप बीमा वाले से संपर्क कर लें तो
1: हाँ
0: आपके द्वारे आपके घरे में चलाई हैं, और
1: हाँ
0: तोहरे आंखी के सामने नहीं इन सब कह के दे दी हैं।
1: एकदम मतलब सरकार भैया बहुत ज़्यादा कनम से किसान भैया बहनी हरन विदा काम करत है हो। इससे यह है कि किसान भैया बहनी हरन के जोन भैया खेती बाड़ी के अलावा जोन पशुधन से आमदनी आवत है वो भैया दुगुना हो जाए हो।
0: ए रानू भैया,
1: हाँ
0: आज देखा एक बहुत विशेष और विशिष्ट व्यक्ति का जन्मदिन है
1: हाँ
0: आज
1: हाँ
0: भैया, देखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती है।
1: एकदम कही गया भैया। अच्छा एक बात और रहे हो।
0: हाँ
1: देखा भैया ये बहुत ही कम से समाज सेवी आदमी रहन और साथे साथे भैया कनम से राष्ट्रीय आंदोलन में भी उनका योगदान रहन हो।
0: सही बात है भैया, 15-25 सितंबर 1916 का मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में भैया
1: अच्छा
0: इनकर जन्म भर है,
1: हाँ
0: जेका
1: हाँ
0: आजकल लोग दीनदयाल धामो कहे लागे हैं, और
1: अच्छा
0: भैया ये एकात्मक मानववाद का दर्शन ऐसा प्रस्तुत करे रहे हैं, जो
1: हाँ
0: आप
1: हाँ
0: अंत्योदय एक शब्द सुनत है ना,
1: हाँ हाँ
0: वो
1: हाँ
0: अंत्योदय शब्द इन्हीं मुंह से पहली बार निकला रहा, इन्हीं कहना रहा कि
1: हाँ
0: समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक, यानी जो सबसे निर्धन व्यक्ति है,
1: हाँ हाँ
0: जब
1: हाँ
0: तक ओकरे पास लाभ न पहुंच जाए, विकास न पहुंच जाए,
1: हाँ
0: तब
1: हाँ
0: तक समझा पूरे देश का वास्तविक विकास नहीं
1: ना भाई
0: भाबा।
1: बाटे एकदम सही कह भैया। अच्छा एक बात और है हो, देखे बचपने में माई बाबू गुजर गए रहे,
0: सही बात है
1: और
0: भैया।
1: उकरे बाद भैया काम से बड़ा संघर्ष कह के उन भैया अपन पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ान, और

0: बाद भैया आप कठिन परिस्थिति में उच्च शिक्षा हासिल किए हो। और एक चीज और है,
1: हाँ भैया,
0: देखे आर्थिक सिद्धांत के साथ साथ व्यक्तिगत और समाज के साथ साथ प्रकृति प्रेमी रहन हो,
1: हाँ
0: और इनकर जो सबसे बड़ी चीज ही रहे भैया
1: हाँ
0: जनसंघ के जो नहन भैया का हमसे जब शुरुआत भर रही वो दौर के साथी रहन हो।
1: हाँ संस्थापक में अध्यक्ष रहन उस समय,
0: हाँ
1: वाकई में बड़ी बात है भैया। और ये कहा जाता कि देखा, गांव घरे से एक छोट के गांव घरे से निकला हुआ व्यक्ति
0: हाँ
1: आज पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरे देश में जाना जाता है।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: ऐसी संदेशा मिला था कि देखा, अपने वो गांव घरे में जो लड़िका हैं,
0: हाँ हाँ
1: अगर उनका सही दिशा में आगे बढ़ावा जाए तो
0: हाँ
1: ई जान के चलें कि कल का एक और दीनदयाल आपके घरे से निकल सका था, पूरी दुनिया में छा सका था।
0: एकदम कही गया हो कम से बद्री भैया। अच्छा एक बात और रहे
1: हाँ
0: हो,
1: भैया,
0: देखे भैया बिना गीत गाने के कुछ निक ना लागत
1: सही
0: हो,
1: कहा था।
0: और देखे अब देखे ढोल मजीरा लेके बैठा है हैं,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: हम सोचे थे कम से कमला प्रसाद पाल और संघाती के एक विकास गीत है
1: हाँ
0: धन धन धरती के लाल
1: हाँ
0: सुनवाई दिया जाए भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, सुनावा।

0: tonight.
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: भैया देखा, कमला प्रसाद पाल और साथिन की आवाज में बड़ा बढ़िया ढोल मजीरा बाजा और भैया लगा कि हाँ धन धन भाग हो गया है। अच्छा रानू भैया, इसमें देखा धान का जोन अपन रुपाई भे रही, अब हुमा बाली फूटअप शुरू हो गया है।
3: हाँ भैया,
2: इसमें सबसे जरूरी भैया हो कि रोज ओका निरीक्षण करत रहा कि कहूं पियरई तो नहीं लागत गया है, कहूं माछी तो नहीं लागत गया है, नहीं तो एक बार्गिन बहुत तेज नुकसान कही जात है।
3: एकदम सही कह भैया, देखे रोग बियाद के बहुत ध्यान देवे के है, और अगर कोनो दिक्कत महसूस होते है किसान भैया बहनी हरण के, तो भैया एक पेड़ से निकाल के ओके लेके जाए भैया वहाँ बलाकी पे, भैया वहाँ डॉक्टर रहे थे, ओकर सही दवाई बताई दी है, वो दवाई के छिड़काव कर।
2: सही कहा था भैया। और आज साथ ही साथ देखा भैया, आजकल इतना बढ़िया जोन अपन विभाग है, कृषि विभाग है, मौसम विभाग है, कई सारी वेबसाइट भैया शुरू करे है। आप चाहा तो फोटो खींच लिया और फोटो अपलोड कर दिया तो देख के बता दी है आपका की हमें कौन सी बीमारी लागे का लक्षण दिखाता है, एक इलाज का है, और सही सलाह दे दी है की आप कृषि रक्षा इकाई में चला जाए या कहाँ चला जाए, सारी सलाह भैया निःशुल्क।
3: या तो भैया कम से कौन दवाई के छिड़काव करे खा वह बताए दी है, और कितना मानक में कितना खेती में छिड़काव करे।
2: सही बात है। अच्छा भैया, जैसे देखा खेती किसानी हम लोग करी थी, तो जितना खेती जरूरी होता ना ओकरे साथे किसानी जे का बोला थी यानी पशुपालन, वह बड़ा जरूरी होता भैया।
3: एकदम सही कहे भैया। अच्छा एक बात तो है, किसान भैया बहनी हरे हमेशा ये सोचते थे कि भैया देखे पशुपालन करब तो खेती सही से न हो पाए, और अगर खेती सही से करे थे तो पशुपालन
2: न हो पाए।
3: तो एक बात है, एक पर डॉक्टर राकेश सिंह भैया से अनिल कुमार यादव भैया का बातचीत है, कृषि और पशुपालन एक साथ।
2: अच्छा भैया,
3: तो हम सोचे थे किसान भैया बहनी हरे के अगर सुनवाई दिया जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया, अच्छा मौका है, सुनवा जरा
3: सुनवाई दे।
4: देखा भैया, खेती किसानी में किसान भैया हरे धान और ये समय जोन है खरीफ में मक्का है, ज्वार है, बाजरा, ये सब के खेती करे हैं। मूला खेती किसानी

0: पानी में का समस्या आवत है और का उनका जवन है करे के चाही, समय से बुआई करे के चाही, समय से जुताई करे के चाही, ये सब के बातन के जवन है जानकारी देवे बदे आज हमारे बीचे में डॉक्टर राजेश सिंह भैया आए हैं जवन की प्राध्यापक हैं सुवार्ड्स प्रयागराज। डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। डॉक्टर साहब ये बतावे हमारे किसान भाई हरेन के कि कृषि एवं पशुपालन ई का बाटे जवन है, एकर आपस में का संबंध बाटे जवन है, हमारे किसान भैया हरेन बदे जवन है एकरे विषय में आप बतावें।
1: जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक्चुअली आज जो है किसान भाइयों को आज कृषि केवल एक जीविकोपार्जन का एक साधन नहीं रह गया है,
0: जी जी
1: ये एक व्यवसाय के रूप में जो विकसित हो रहा है। और खेती किसानी के साथ साथ अगर हमारे किसान भाई पशुपालन है, मुर्गी पालन है, सूकर पालन है, वर्मी कंपोस्टिंग है इत्यादि का भी व्यवसाय किसान भाई करते हैं तो उनकी आय दोगुना भी हो सकती है। साथ ही साथ अगर कभी मौसम की मार पड़ती है जिससे हमारा जो है खेती किसानी अच्छी नहीं चलती
0: जी,
1: तो हमारे किसान भाइयों का खर्च भी निकलता है और उनको एक साधन मिलता है जिससे जीविकोपार्जन उनका चल सकता है।
0: बिल्कुल सही,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ साथ पशुपालन करने से जैसे देखिए इसमें जो आपका कृषि से जो आपका अवशेष बचता है
0: जी जी
1: उसको चारा के तौर पे आप पशुपालन में इस्तेमाल कर सकते हैं और पशुओं का जो गोबर होता है उससे आप बायोगैस बना सकते हैं
0: जी जी
1: और उसके उपरांत जो बायोगैस के बाद जो आपका स्लरी बचता है या अवशेष बचता है
0: जी जी
1: उसको आप वर्मी कंपोस्टिंग जो केचुआ की खाद होती है
0: जी जी जी
1: उसमें उसका उपयोग में ले सकते हैं। और फिर उसके बाद वर्मी कंपोस्ट तो मिलेगा ही, उससे
0: जी
1: केचुआ की
0: जी
1: खाद तो मिलेगी, साथ में वर्मी वॉश भी मिलेगा और हमारे किसान भाई केचुए भी बेच सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो वर्मी कंपोस्ट जो बनेगा
0: जी
1: उसको
0: जी
1: अगर आप खेत में डालते हैं तो उससे आपका जो है जीवांश खाद की तरह काम करता है और उसमें लगभग 17 आवश्यक तत्व मिलते हैं जो कि हमारे ये फर्टिलाइजर्स में उर्वरक में नहीं मिलते हैं।
0: जी जी जी
1: तो ये हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। साथ ही साथ इसमें जो जैसे हमारे किसान भाई अगर सिर्फ खेती करते हैं तो उनको सिर्फ एक फसल ही मिलती है,
0: जी
1: लेकिन इसमें आप जो है फसलों के साथ साथ आपको दूध भी मिलेगा, उसके बाद फिर बायोगैस भी मिलेगी जिससे आप खाना बनाने के उपयोग में ले सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है उसको कई बिजली बनाने के भी उपयोग में ले सकते हैं, फिर वर्मी कंपोस्ट मिलता है, वर्मी वॉश मिलता है और आपको केचुए भी अपने आस पड़ोस में किसान भाइयों को आप बेच सकते हैं, दे सकते हैं।
0: जी जी
1: और
0: जी
1: मतलब इससे क्या हुआ कि आपका डाइवर्सिफाई हो गया, आपका पैसा बहुत जगह से आपको मिलने लग गया, साथ ही साथ आपकी लागत कम हो गई
0: जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: आपका जो एक चीज का अवशेष बच रहा है उसको आप इनपुट के तौर पे दूसरे व्यवसाय में यूज कर सकते हैं।
0: जी जी
1: तो आपका जो है कुछ बर्बाद भी नहीं हो रहा और साथ ही साथ आपको कई जगह से आपको आय मिल रही है जिससे अगर मान लीजिए मौसम अच्छा नहीं रहता और हमारे किसान भाइयों को कुछ नुकसान होने की चांसेस होती हैं तो उसमें और जगह से उनको पैसा मिल जाता है और उनका घर का खर्च चल जाता है।
0: जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब आप सही कहते हैं कि खेती के साथ साथ बारी कहा गवे कि खेती के साथ साथ पशुपालन जरूरी बाटे है। मूला एक बात आवत है कि जैसे ये समय जो है ये खरीफ के सीजन चलत बे, किसान भैया हरे धान के खेती करे हैं, धान लग भी चुका है, अब धान के फसल में का का समस्या आवत है, ऐसे कैसे जोन है, कौन कौन समस्या आवत है एकरे बारे में आप बतावें।
1: देखें इस समय धान की रुपाई के लगभग 25 से 30 दिन हो चुके होंगे
0: जी जी
1: और इसमें जो अधिक उपज वाली फसल है उसमें लगभग 30 किलोग्राम नत्रोजन या 65 किलोग्राम यूरिया और जो सुगंधित प्रजातियां हैं जिसका उपज कुछ कम होती है उसमें 15 किलोग्राम नत्रोजन या 33 किलोग्राम यूरिया
0: जी
1: की
0: जी
1: टॉप ड्रेसिंग कर दें और नाइट्रोजन की इतनी ही मात्रा दूसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग रोपाई के 50 से 55 दिन बाद करनी चाहिए।
0: जी जी
1: और ये भी ध्यान दें टॉप ड्रेसिंग के पूर्व खरपतवार निकाल दें तथा टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर से पानी ज्यादा न रहे,
0: जी
1: नहीं
0: जी
1: तो होता क्या है कि मान लीजिए बरसात भी हो गई तो आपकी वो जो है यूरिया पानी के साथ बह जाएगी
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: आपको उसका लाभ भी नहीं मिलेगा और वो जो है खरपतवार को मिलेगा।
0: जी जी
1: ठीक है, उसके बाद खैरा रोग अगर हमारे किसान भाइयों को खेत में दिख रहा है
0: जी जी
1: तो उसके रोकथाम के लिए आपको जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या 4 बड़े बीघे में उसको मिला दें 2.5 किलोग्राम चूना के साथ, बुझा हुआ चूना जो होता है
0: जी जी
1: 2.5 किलोग्राम चूना में मिला करके 1000 लीटर पानी में डाल करके उसको अगर स्प्रे कर देंगे तो उससे हमारे खैरा रोग की बचत होगी। और साथ साथ इसमें कई बार तना छेदक कीट भी देखा गया है
0: जी जी
1: उसकी रोकथाम के लिए ट्राइकोग्रामा ये एक परजीवी आती है
0: जी जी
1: जो कि 8 से

0: दिन के अंतराल पर छोड़ना छोड़ देने से इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और इससे आपका जो है ये फली छेदक कीट का कंट्रोल हो जाएगा, या किसी कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं हमारे किसान भाई। और धान की फसल से अधिक उपज लेने के लिए खेत में हमेशा पानी भरा रहना आवश्यक नहीं है। ये
1: जी
0: पहले की भ्रांति थी कि पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, जब उसमें दाना भरने की अवस्था होती है या जब उसमें फूल आते हैं उसके बाद पानी भरना अच्छा है, लेकिन उससे पहले आप जो है 6 से 7 दिन के अंतराल पे अगर बारिश नहीं होती तो उसमें सिंचाई करेंगे तब भी आपकी उपज ज्यादा अच्छी मिलेगी।
1: जी
0: जी
1: डॉक्टर साहब, एक बात आवत है कि जौन है किसान भाई हरे कुछ जैसे यूरिया का आप ट्रॉप ड्रेसिंग की बात करत
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो कुछ किसान भाई हरे हैं जौन ओके सीधे जौन है खेत में छिड़क देते हैं, तो हमन ट्रॉप ड्रेसिंग और ये जौन छिड़काव कर देते हैं सीधा यूरिया बिना घोल बनाए के, हमन का अंतर बे एक थोड़ा सा
0: नहीं,
1: बतावें।
0: देखें यूरिया को तो नॉर्मली टॉप ड्रेसिंग ही की जाती है,
1: जी
0: और उसमें ये जो है ये है कि आपका जब आप टॉप ड्रेसिंग करें तो ये ध्यान दें कि धूप में, मतलब सुबह करना चाहिए नहीं शाम को करना चाहिए,
1: जी जी
0: धूप में नहीं करना चाहिए नहीं तो वाष्पीकरण हो जाता है, हमारे पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि जब आप इसको यूरिया डालें तो ये ध्यान दें नमी होनी चाहिए खेत में, ताकि यूरिया उसके साथ मिक्स होके मिट्टी में जा सके अंदर,
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसलिए नमी भी होनी चाहिए, ये भी ध्यान देना है। और कोई भी उर्वरक डालें या जो है पेस्टिसाइड डालें तो उसको आप सुबह या शाम को करें,
1: जी जी जी
0: दिन में ना करें।
1: जी जी जी
0: जी
1: डॉक्टर साहब, अब बात आवत है खरीफ में फसल बा मक्का, और मक्का का अगर खेती किसान भाई ये देख करे हैं इसमें बुआई करे हैं, तो इमन का सावधानी किसान भैया हरन के बरते चाहिए, का कैसे ओकर देख रेख करें, का हमन खरपतवार का रोग बीमारी लागत है, एकरे बारे में बतावें थोड़ा सा।
0: देखें मक्का में इस समय क्या है कि नाइट्रोजन 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लगभग 87 किलोग्राम यूरिया या 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की दूसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग बुआई के 45 से 50 दिन बाद करनी चाहिए, जो
1: जी
0: कि अभी इस समय नरमंजरी निकलने का समय हो रहा है, तो इस समय तो आपका खरपतवार नहीं आएगा क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा पत्तियां घनी होती हैं,
1: जी जी
0: तो इसलिए नरमंजरी के समय आप जो है एक जो आखिरी टॉप ड्रेसिंग करनी है 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की वो कर लें, और ध्यान रहे कि खेत में उर्वरक प्रयोग करते समय पर्याप्त नमी रहे ताकि वो मिट्टी में अंदर जा सके यूरिया उसके मिक्स होकर के, और साथ में फसल में नरमंजरी व बाली बनते समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा
1: जी
0: उपज में 50% तक गिरावट देखी गई है।
1: जी जी
0: और ये जो है इसमें एक चीज और ये ध्यान देना है कि आपका इसमें जो है मतलब आपका उर्वरक डालते समय या वही चीज सुबह या शाम को डालें
1: जी जी
0: और दिन में ना डालें, उसमें जब धूप की आपको वो लगे और जब बारिश की संभावना हो उस समय ना डालें।
1: जी जी
0: जी
1: किसान भाई, जैसे कि मक्का की फसल जब उमन नरमंजरी बनत है तो ओका यूरिया जोन हमें डालत हैं जड़ के पास जोन डालत हैं,
0: जी
1: और कुछ किसान भाई हरे ओका छींट देते हैं, तो इसमें दोनों में का अंतर वे कौन तरीका अपनावे किसान भाई के जोन उनका फायदा हुए, एकरे बारे में बताओ
0: नहीं,
1: थोड़ा सा।
0: देखें जड़ के पास ही डालने को कहा गया है ताकि
1: जी
0: हमारे
1: जी
0: पौधों को मिल सके, छींट देने से तो हमारा अगर खरपतवार होंगे तो उनको भी मिल जाएगा, तो
1: बिल्कुल
0: जड़ के
1: बिल्कुल
0: पास पास ही नजदीक डाला जाता है।
1: जी जी जी
0: और आजकल तो नैनो यूरिया का भी स्प्रे करते हैं 4 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके, वो
1: जी जी
0: भी
1: जी
0: अच्छा पाया गया है, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है।
1: जी जी
0: जी
1: डॉक्टर साहब, दूसर फसल खरीफ के आवत है कि ज्वार, अब ज्वार के फसल के जो खेती किसान भाई हरे करे हैं उमन का समस्या आवत है, एक बारे में थोड़ा सा बताओ।
0: देखें ज्वार की फसल में हमारे किसान भाई लगा चुके होंगे,
1: जी
0: उसकी
1: जी
0: विरलीकरण कर लें, उसको जो है लाइन में पौधों के अंतराल 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी बना दें ताकि उसमें एक दूसरे से कंपटीशन ना हो, और दूसरी बात संकर व उन्नत प्रजातियां हैं उनमें जो है विरलीकरण के बाद आपको प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी,
1: जी जी
0: डालना पड़ेगा वही छिटकवा विधि से, वो जो टॉप ड्रेसिंग होती है
1: जी जी
0: वो, या तो आप 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन या वही चीज है 108 से 130 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर, मतलब चार
1: जी
0: बड़े बीघे के लिए बता रहे हैं,
1: जी जी
0: कि दूसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग बुआई के 30 से 35 दिन के बाद कर लें।
1: जी जी
0: जी
1: खरीफ में डॉक्टर साहब और फसल आवत हैं जैसे उर्द मूंग के भी बुआई किसान भाई हरे करे हैं, एमन का समस्या आवत है, एक किसान भाई फसल के कैसे देख रेख करें, एक बारे में बताऊं थोड़ा
0: देखें
1: सा।
0: इसमें तो निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें,
1: जी जी
0: और इसमें एक पीला मोज़ेक रोग लगता है
1: जी जी जी
0: जो कि ये वायरस से लगता है, लेकिन इसको फैलाने के लिए जो सफ़ेद मक्खी होती है वो जिम्मेदार होती है,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए एक कीटनाशक जैसे डाईमिथुवेट 20 EC है या मिथाइल ओ

0: बेमेटान 25 cc है,
1: जी जी जी
0: इसको 1 लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति 1 हेक्टेयर मतलब 4 बड़े बीघे के लिए आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतराल पे 3 से 4 स्प्रे कर लेंगे,
1: जी जी
0: छिड़काव कर देंगे, तो उससे ये कंट्रोल हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, और फसल आवथिन जैसे सूरजमुखी है और
0: मूंगफली,
1: सोयाबीन है, एमन किसान भाई हरे का करें जो है, कैसे ये फसल के अपन देख रेख करें, एमन कौन सा खरपतवार कौन रोग बीमारी लागत हिन, एकरे बारे में थोड़ा सा बतावें।
0: देखें सोयाबीन में तो फसल की बुवाई के 20 से 25 दिन बाद निराई करके खरपतवार निकाल दें,
1: जी जी
0: और आवश्यकता पड़ने पर दूसरी निराई भी बुवाई के 40-45 दिन के अंतराल पे कर लें।
1: जी जी
0: और सोयाबीन में भी पीला मोजाइक बीमारी, ये जो है वायरस से होता है, तो इसके भी फैलाव सफ़ेद मक्की से ही होता है,
1: जी जी
0: तो इसकी रोकथाम के लिए भी डाइमिथुवेट या मिथाइलोडिमेटान का आप स्प्रे कर सकते हैं जैसे वो बताया गया था उसमें। और मूंगफली की फसल में दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 35 से 40 दिन के बाद कर लें, साथ ही साथ मिट्टी भी चढ़ा दें। और मूंगफली में टिक्का बीमारी एक देखी गई है जिसमें पत्तियों पर भूरे भूरे गोल धब्बे बन जाते हैं,
1: जी जी जी
0: इनकी ये फफूंदी जनित बीमारी है, इनकी रोकथाम के लिए जिंक मैंगनीज कार्बोमेट 20 किलोग्राम या जिनेब एक दवा आती है,
1: जी जी
0: फफूंदी नाशक दवा है जिनेब, 75% का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टेयर के लिए आप 10 दिन के अंतराल पे 2 से 3 छिड़काव कर दें, इससे बचत हो जाएगी।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, आवत है दूसर फसल जो है सूरजमुखी है और गन्ना है, इसमें का समस्या आवत है, एकरे बारे में थोड़ा सा बताओ।
0: देखें सूरजमुखी में अब बुआई के 15 से 20 दिन बाद ये जो फालतू पौधों को निकाल कर लाइन में पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर बना लें ताकि उनमें बीच में प्रतिस्पर्धा ना हो।
1: जी जी
0: और
1: जी।
0: फसल बुआई के 40 से 45 दिन के बाद दूसरी निराई गड़ाई करने के साथ ही 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी चढ़ा दें जिससे उसको जो है हवा चलेगी या बारिश होगी तो उसको थोड़ा सा मजबूती मिलेगी।
1: जी जी
0: और सूरजमुखी की बुआई के 25 से 30 दिन बाद खड़ी फसल में प्रति हेक्टेयर की दर से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि लगभग 87 किलोग्राम यूरिया होता है
1: जी जी
0: उसकी टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। और इसमें जैसे गन्ने में भी कुछ हमारे किसान भाई लगाए होंगे तो गन्ने को बांधने का कार्य इस माह में अवश्य कर लें क्योंकि पानी बरसता है, हवा चलती है तो उससे हमारे गन्ने लटक सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इस समय गन्ने की लंबाई लगभग 2 मीटर हो चुकी होगी तो ध्यान रखना है कि बांधते समय हरी पत्तियों के समूह को एक साथ न बांधें, हेर फेर करके ऑपोजिट वाले पौधे के साथ बांधें,
1: जी जी
0: उससे हमारे पौधे झुकेंगे नहीं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, जिसे ये बात रही कि खेती के साथ साथ बारी, तो खेती के साथ साथ किसान भाई इनके पशुपालन करब बहुत जरूरी बा, काहे से कि अपने माटी के जोन संरचना बा वो रासायनिक उर्वरक से दिन ब दिन जोन है खराब हो जात बा, तो पशुपालन किसान भाई अरे करी है तो उनका जोन है माटी की संरचना उसे जोन भी गोबर खाद मिलत है ओके डली है तो उनका माटी की संरचना सुधार हो सकत है। तो डॉक्टर साहब, ई पशुपालन और खेती के एक थोड़ा सा बारे में किसान भैया इनके बतावें।
0: देखें इसमें पशुपालन में नए आए हुए पशु हैं तथा जो आपके पुराने पशु भी हैं
1: जी जी
0: उनमें गलाघोंटू का टीका लगवा लें, गलाघोंटू
1: जी
0: एक बड़ी बीमारी है जो लगती है तो उसका टीका लगवा लें, साथ में लिवर फ्लूक नाम का एक परजीवी होता है अंदर होता है उसके लिए भी दवा पिला दें, और नवजात बच्चों को कोलेस्ट्रॉम जो होता है जो खींच कहते हैं
1: जी जी
0: उसको अवश्य दें, उससे जो है बीमारी रोधक क्षमता आएगी बच्चों में।
1: जी जी
0: साथ में गर्भित पशु की उचित देखभाल करें तथा पौष्टिक चारा दें, और पशुशाला को साफ सुथरा रखें व सूखा रखें, इस समय सूखा रखना अति आवश्यक है, पानी का जमाव ना होने दें।
1: जी
0: मच्छरों से बचाव के लिए पशुशाला के पास नीम की पत्ती का धुआं करें जिससे मच्छर न लगे हमारे पशुओं को, साथ ही साथ बाहर परजीवी के लिए दवा लगाएं।
1: जी जी
0: और कुछ हमारे किसान भाई मुर्गी पालन भी करते हैं
1: जी जी जी
0: तो इसमें इस समय अंडे के लिए नए चूजे द्वारा मुर्गियां पालन के लिए तो यह समय उपयुक्त नहीं है बरसात का समय, परंतु ब्रॉयलर के लिए मुर्गियां पालें, और मुर्गी के पेट में कीड़ों को मारने के लिए डीवॉर्मिंग की दवा दें
1: जी
0: साथ
1: जी
0: ही मुर्गी खाने को सूखा रखें, सूखा रखना अति आवश्यक है तथा बिछावन को पलटते रहें ताकि सूख सके, और दूसरी बात मुर्गी खाने में अधिक नमी हो आपको दिखे तो पंखा चलाएं
1: जी जी
0: और साथ ही साथ पानी को क्लोरीनेशन करके अवश्य यूज करें। और आपने देखा होगा वहां पे जैसे जहां से आपका दरवाजा है पशु ये जो मुर्गी पालन वाले
1: जी,
0: उसमें जाने के लिए
1: जी,
0: तो उसमें चूना रखें दरवाजे पे
1: जी, जी,
0: ताकि
1: जी,
0: पैर में चूना लगने से वो आपके जो है जो वो होता है वो भी एक तरह से एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: चूना
1: जी,
0: अवश्य रखें
1: जी, जी, जी,
0: ताकि पैर में चूना लगा के ही आदमी अंदर जाए।
1: जी जी
0: जी
1: डॉक्टर साहब, आप जो बहुत बढ़िया बताए हमारे किसान भाई अरन की, चाहे किसान भाई जिसे पशु

0: पालन भी करे न, उनका का समस्या आवत है, उनको कौन रोग बीमारी लागत है। और मुर्गी पालन अगर किसान भाई हरे करे हैं खेती किसानी के साथ साथ, तो हम का समस्या आवत है और कैसे उसे निजात पाई जा सकत। डॉक्टर साहब, हम चले चले ये जाने चाहब कि हमारे किसान भाई हरे के जिसे खेती किसानी करत है और का समस्या आ सकत है, ओकरे बारे में थोड़ा सा जानकारी दें।
1: देखें, इसमें क्या है कि आपका जो है थोड़ा सा जैसे शुरुआत में हो सकता है आपको जो है वो हो, लेकिन ये जरूर है कि आप जो जैसे व्यवसाय चुने
0: जी,
1: वो रिलेटेड व्यवसाय ही होने चाहिए। ऐसा व्यवसाय ना
0: खेती
1: हो,
0: किसानी से।
1: हाँ, खेती किसानी से रिलेटेड व्यवसाय ही हो, ताकि आपको उसमें अतिरिक्त व्यय न करना पड़े।
0: जी,
1: और इसके साथ साथ जैसे जो हम लोग ने डिस्कस किया, उसके साथ साथ आप जो है मशरूम कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। मशरूम से भी अच्छा लाभ मिल सकता है, और जो है एक छोटे से एरिया में ही, एक छोटे से कमरे में मशरूम पालन किया जा सकता है। तो मतलब ये जो आप इसको करें, और अगर उसको सही ढंग से, जैसे अगर आप गोबर की खाद के तौर पे गोबर को इस्तेमाल करते हैं,
0: जी
1: उससे अच्छा अगर आप बायोगैस बना करके उसका इस्तेमाल करें, तो बायोगैस से ना केवल आपको गैस मिलेगा, और फिर उसका जो है आपको जो वो बनता है उसमें जो अवशेष बचता है उसको अगर आप वर्मी

0: शुरुआत में हो सकता है आपको जो है वो हो, लेकिन ये जरूर है कि आप जो जैसे व्यवसाय चुने
1: जी,
0: वो रिलेटेड व्यवसाय ही होने चाहिए। ऐसा व्यवसाय ना
1: खेती किसानी
0: हो,
1: से।
0: हाँ, खेती किसानी से रिलेटेड व्यवसाय ही हो, ताकि आपको उसमें अतिरिक्त व्यय न करना पड़े।
1: जी,
0: और इसके साथ साथ जैसे जो हम लोग ने डिस्कस किया, उसके साथ साथ आप जो है मशरूम कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, मशरूम से भी अच्छा लाभ मिल सकता है, और जो है एक छोटे से एरिया में ही, एक छोटे से कमरे में मशरूम पालन किया जा सकता है। तो मतलब ये जो आप इसको करें, और अगर उसको सही ढंग से, जैसे अगर आप गोबर की खाद के तौर पे गोबर को इस्तेमाल करते हैं, उससे अच्छा अगर आप बायोगैस बना करके उसका इस्तेमाल करें, तो बायोगैस से ना केवल आपको गैस मिलेगा, और फिर उसका जो है आपको जो वो बनता है उसमें जो अवशेष बचता है उसको अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग के काम में लें, तो आप वर्मी कंपोस्ट बेच भी सकते हैं, उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है हमारे किसान भाइयों को। साथ ही साथ आप जो है जो हमारे केंचुए हैं ये भी बहुत महंगे बिकते हैं और बहुत तेज बढ़ते हैं। अगर आपने अपने यहाँ डाला हुआ है तो आप देखेंगे 2 ही 3 महीने में आप उनको बेचने लायक आपके पास इतने केचुए हो जाएंगे, और इससे सभी को फायदा है।
1: जी, डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी बढ़िया जानकारी दें। कृषि एवं पशुपालन ये का बात है, ऐसे हमारे किसान भैयारन के का लाभ होता है, आपके जानकारी देवे दे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, देखा हो भैया का नाम से डॉक्टर राजेश कुमार सिंह से अनिल कुमार यादव भैया का बातचीत रही कृषि और पशुपालन एक साथ।
3: रानू भैया, एक चीज़ हम देखे
2: हाँ
3: कि एहमा जिस तरीके से अनिल भैया खूब एकदम फरिया के पूछे न, गहराई में जाए के
2: हाँ हाँ
3: हर
2: हाँ
3: एक बीमारी के बारे में पूछे न, और साथ ही तैयार किए पशुपालन और कृषि कि दोनों
2: हाँ
3: अलग चीज़ न या
2: ना
3: दोनों एक दूसरे का पूरक का। अगर
2: हाँ
3: आप
2: हाँ
3: एक को चीज़ नहीं करता है तो समझा कि आपका आमदनी एक ही गुना रही दुगना ना हो पाई।
2: एकदम सही कहा भैया। अच्छा, एक बात और है, देखे जोन जैसे पशुपालन से जोन निकलता है, गोबर निकलता है, और भी जोन खातमानी होता है, और जो उनके चारा से बचत है उसे भैया काम से कंपोस्ट खाद बनावत हैं किसान भैया बहनी हरे, ओकर उपयोग उनके खेती में हो
3: सही
2: जाता है,
3: बात है,
2: और जोन खेती से भैया चारा निकलता है वो भैया अपने पशु को हो जाता है।
3: सही
2: तो
3: कह रहे।
2: ऐसे ये है कि भैया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और ऐसे किसान भैया बहनी हरे का आमदनी दोगुना होता
3: बिल्कुल, आम काम और गुठलियों का दाम
2: है,
3: भैया।
2: एकदम कहिए
3: ए
2: भैया।
3: रानू भैया,
2: हाँ
3: देखा
2: हाँ
3: कि बहुत पंच भाई लोग चाहत हैं कि संदेशा भेजे चाहत हैं
2: हाँ हाँ
3: कि कैसे पंचायत घर में अपन संदेशा भेज दई और हियाँ लोग हुनकर संदेशा समझ के अपने
2: हाँ
3: कार्यक्रम में बदलाव करें और कुछ चीज जानकारी दें। तो नंबरवा भैया बता दे, जो उन व्हाट्सएप वाला रहा, जो नंबरवा पे मैसेज करें किसान
2: भैया
3: भाई।
2: देखे वो जो व्हाट्सएप नंबर है वो
3: हाँ
2: नंबर है 800-4926-250।
3: भैया, एक बार और बता दे तो जिन्हें नोट करें हूं नो कही लें।
2: भैया 800-4926-250।
3: देखा एकरे अलावा देखा भैया पंचहरे
2: हाँ
3: फेसबुक पे आकाशवाणी प्रयागराज के नाम से पेज बा,
2: पेज है।
3: आप ऊपर जा हुआ पे आप कमेंट कर सकत है, लाइक कर सकत है, और हुआ चाहे तो सब कुछ जौन लिखे चाहत हो आप, अगर कोनो नया कार्यक्रम चाहत हो, आप कार्यक्रम में कोनो को सुने चाहत हो, या कोनो विषय पे चाहत आगे ऊपर हम लोग कोनो
2: चर्चा
3: अतिथि की
2: किया जाए।
3: बुलाई चर्चा हो,
2: हाँ
3: तो
2: हाँ
3: आप
2: हाँ
3: ओकरे बारे में जानकारी दे सके तो निश्चित तौर पर हम लोग ऊपर बदलाव करब और वैसा आपको मन चाह कार्यक्रम लइए हो।
2: एकदम सही कह भैया। अच्छा, एक बात और है अमरीश भैया,
3: हाँ
2: देखे खेती बाड़ी के साथ साथ कि कुछ किसान भैया बहनी हरे हैं जो सब्जी के खेती करते हैं, तो ये समय भैया देखा सब्जी के खेती में भी बहुत ध्यान देवे के जरूरत है। किसान भैया बहनी हरे जैसे तरोई बोए हैं, नेनुआ बोए हैं, और कुछ किसान भैया बहनी हरे भैया हम से अपन और फल जून लगाए हैं, उकर ध्यान उन्हें बहुत देवे के हो।
3: बिल्कुल भैया, और अगर इस समय आपके पास भैया तरोई होए, ननुआ होए, लौकी होए और करेला होए, तो
2: हाँ
3: कोशिश ही करें कि जो मचान विधि के गांव में नियम बनावा गया है,
2: हाँ हाँ
3: बारिश के मौसम में सबसे उपयोगी बाटे भैया।
2: एकदम सही कह भैया। अच्छा, उसे एक बात और है, उमन कहा है कि पानी की वजह से जोन फल है जोन पैदावार होता है वो पत्ती है वो गलत ना हो।
3: हाँ, न तो किरवा लागी और न
2: हाँ
3: तो सड़ी और न तो गली।
2: अच्छा, दूसरी चीज़ ये हो भैया कि तोहों के तोड़े में आसानी रहे और बाजार ले जाए के बेचो सकत
3: सही
2: है।
3: क्या भैया, एक चीज तो हो तो मचान विधि का, आप चाहे एक लौकी का उदाहरण ले लिया,
2: हाँ हाँ
3: जमीन पुहे लौकी देखा जाए एकदम घूम के चंद्राकार हो जाई,
2: हाँ हाँ
3: लेकिन जो उन मचान विधि पर रही वो सीधे इसे लटक के एकदम सोझे सोझ रही और बढ़िया मुलायम के साथ साथ मोटाई हो जात है।
2: एकदम सही कह भैया। पैदावार में भैया देखे दुगना पनाई जाता। और एक बात यह है हो कि देखे पशु रखे हैं किसान भैया बहनी हरे, तब बरसात में जौन उनके अगल बगल है थोड़ा साफ सफाई का ध्यान दें और साथ ही

0: साथे भैया उनकर जो उन टीकाकरण किसान भैया बहनी करावत हैं वह करवाए दें।
1: बहुत बढ़िया रानू भैया, एक बात बतावा, देखा
0: हाँ
1: पंचायती में हो तो कि एकदम शुरुआत में तो हम लोग तनिक ढोल मजीरा बजवाए, अब
0: हाँ
1: चलत चलत एक बार अगर और ढोल मजीरा बाज जाते तो आनंद आ जाता है।
0: एकदम सही कह भैया। तो अच्छा एक लोकगीत है
1: हाँ
0: श्री राम बाबू यादव और संघाती के
1: हाँ
0: विकास गीत है
1: हाँ
0: धरती धर्म की माता। हम
1: हाँ
0: सोचे थे किसान भैया बहनी सुनवा दिया जाए।
1: बिल्कुल भैया सुनो हमें।

0: हाँ देखा भैया, लोकगीत रहन
1: हाँ
0: श्री राम बाबू यादव और संघाती के, धरती धर्म की मातम।
1: अच्छा रानू भैया,
0: हाँ हाँ
1: देखा कि सांझ के समय होता है,
0: हाँ
1: घरे
0: हाँ
1: दुआरे थोड़ी देर में चलेक समय हो जाई,
0: हाँ हाँ हाँ
1: लेकिन शाम के समय ना जोन आपन मवेशी होथिन ना भैया,
0: हाँ हाँ हाँ
1: उनकर ख्याल बहुत अधिक रखे चाहिए।
0: एकदम सही कहे भैया। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें शाम को होती हो, जैसे शाम के बेला है टार दें, ऐसा जगह टारें जहाँ का हमसे सूखा रहे। और साथ ही साथ भैया देखे जोन माखियो मच्छर हैं जोन काटते हैं, उन्हें एकर ध्यान दे बहुत जरूरी हो।
1: और भैया देखा ये समय काहे कि बारिश का मौसम आ, हम लोग जैसे अपने घरे में अपने बूढ़ पुरनिया का, अपने लड़का का और स्वयं का ख्याल रखी थी, वो बेजुबान हैं,
0: हाँ
1: उनके
0: हाँ
1: पास बोले बतावे का आवश्यकता ना पड़ी कि भैया कि हमका इसे करे का है आवा चला आवा,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: करेन के तू ही कहा, तो ख्याल भैया आप सबका रखे का है
0: हाँ
1: और एक
0: हाँ
1: नियम बनाए ला हर दिन का कि संध्या के समय जैसे कि आप बताया वो व्यवस्था करे के चाहिए।
0: एकदम सही बात है। अच्छा एक बात और है,
1: हाँ
0: बारिश में भी यह बात का ध्यान देवे का हो बद्री भैया, कि जहाँ किसान भैया बहिनी हरे बांधे हैं वहाँ देखे थोड़ा सा छाजन उजन रहे, और जो उन छाजन रहे भैया देखे वो मजबूत रहे के चाहे। कभो कभो ये होता पुरान घर रहे थे या मड़ई रहे थे तो भैया ओकर गिरे का भी संभावना रहे
1: बिल्कुल
0: थे।
1: भैया, देखा मौसम रोज बदलता है, पिछले 2 दिन से अपन प्रयागराज परिक्षेत्र में भैया बहुत तेज बारिश होती है, पूरा दिन रिमकत झिमकत है,
0: हाँ
1: तो
0: अब
1: ऐसा ना हो कि गर्मी समझ के आप बहरे निकला और दिन भर भीगा संजक बीमार हो जाए।
0: एकदम सही कहे भैया। और साथे साथे एक बात और रहे हो कि हमसे किसान भैया बहनी हरिन की ध्यान देवे के है, और थोड़ा सा भैया जेखे बारिश के साथे साथे हवा का भी असर रहे, तो ऐसे किसान भैया बहनी हरे ध्यान दें।
1: और एक सलाह बरानू भैया
0: हाँ
1: हमारे,
0: हाँ
1: अगर भीग के कभो आवा बहरे से,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: सबसे पहला काम करा कि जोन भीगा वस्त्र हो आपका
0: हाँ
1: ओका उतार के नवा कपड़ा या दूसर कपड़ा जोन सूखा हो ओका पहन ले, ऐसी एक फायदा हो कि आप इसमें जोन बीमारी बुखार खांसी जुकाम फैलता है ऐसी बच जाबे।
0: एकदम सही कहा भैया। देखा हो बद्री भैया समय समय से सब चीज़ निकला गया था, अब चले के बिला होता है, तो हम सोचे थे पंचोहरण से विदा लिया जाए।
1: ए
0: पंच
1: भैया ये
0: हाँ भैया
1: बताओ, विदाई तो लाइन लीन जाई
0: हाँ
1: ओकरे साथे, ये तो बताऊबे नहीं भैया कि अगर जो नान के गदेला और लड़कियां हैं उनके बारे का सलाह दहा दे
0: भैया
1: चाहता।
0: उन्हें यह है कि भैया देखा यह समय भैया देखे कपड़ा लत्ता पहना के रखें, और
1: हाँ
0: साथे साथे भैया उनके खान पान का भी ध्यान दें
1: हाँ
0: और उनकर ख्याल रखें भैया।
1: सही बात है भैया, जैसे घरे में सारा मनई को होता उसी ज्यादा चिंता अपने लड़कन करें, कहे कि आज के नान गदेला है तुरंत है भागा थीन भैया, बारिश हो लागत तो भागेन, ठंडी पड़ती है तो भागेन, गर्मी पड़ती है तो भागेन,
0: हाँ
1: तो ऐसी में परेशान हो अच्छा है कि सबका ख्याल रखा। और जैसे भैया कहा देखा कि घरे इतनी इंतजार करत तो ये कि सांझ हो गया है घरे आवे तो पंचों से हवा विदा लीन जाए।
0: पंचो राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से किया संवाद, कहा सभी के योगदान से बनेगा विकसित भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया शुभारंभ, कहा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है भारत। रेलवे ने भुज से बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस को दी मंजूरी, प्रदेश के मथुरा, बरेली और पीलीभीत समेत कई स्टेशनों से गुजरेगी ये ट्रेन। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया भारी वर्षा का रेड अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध

0: कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आए बदलाव के बारे में।
2: भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने व्यावसायिक नियामक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निरंतर सुधार किए हैं। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 2014 में 142वें स्थान से सुधरकर 2019 में 63वें स्थान पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईज डूइंग बिजनेस और रिफॉर्म की वजह से भारत तेज गति से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन चुका है।
1: ये वो समय है जब हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और साथ ही भारत पिछले एक दशक में भारत ने असाधारण रेजिलियंस दिखाई है और ये संयोग से नहीं आई है। हमारी रेजिलियंस कन्विक्शन ड्रिवन रिफॉर्म्स की देन है। हमने प्रोसेसेस को सरल किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया है।
2: गौतम बुद्ध नगर की खुशबू सिंह ने बताया कि व्यापारी सुगमता से निवेश का बेहतर माहौल बना है।
3: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, चाहे वो बैंक से लोन का हो या कंप्लायंसेस को फॉलो करना हो या कोई लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन हो। आज के तारीख में इतनी सुविधाएं, किसी को भी बिजनेस अपना शुरू करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अपने आप को खड़ा कर सकते हैं।
2: भारत के व्यावसायिक वातावरण में निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और व्यापार करने में सुगमता में सुधार हुआ है। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। श्री शाह ने कहा कि देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
4: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिनका उत्तर प्रदेश को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेड शो ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी, हेरिटेज और इनोवेशन के साथ हुनर और बाजार की ताकत को एक साथ देखने का अवसर है।
5: हमने टैलेंट और ट्रेडिशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ा, गवर्नमेंट को फैसिलिटेटर बनाया। इस ट्रांसफॉर्मेशन को गति देने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया गया। आज UPITS इसी ट्रांसफॉर्मेशन को प्रदर्शित करने का एक ऐसा बड़ा मंच बना है जहां उत्तर प्रदेश की लोकल स्ट्रेंथ ग्लोबल मार्केट के सामने अपनी पहचान बना रही है। यही डबल इंजन सरकार की पोटेंशियल को पॉसिबिलिटी में और पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने की कार्य संस्कृति है।
0: प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश के उद्यमियों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने का सशक्त मंच बन चुका है। इस बार 90 देशों से 600 से अधिक विदेशी खरीदार पहुंचे हैं। इसमें भागीदार देशों के रूप में

0: जापान, वियतनाम, रूस, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया और बेलारूस शामिल हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। ये रेलगाड़ी प्रदेश के मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत आदि कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। इससे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और मथुरा के बीच एक अतिरिक्त रेलगाड़ी उपलब्ध रहेगी, जिससे झांसी, आगरा और मथुरा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। प्रदेश में डॉक्टर बीआर अंबेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना के तहत सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित अंबेडकर प्रतिमा स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 यानी कुल 4030 प्रतिमा स्थलों को विकसित किया जाएगा। राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, श्रावस्ती और हमीरपुर सहित प्रदेश के कई जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के लिए कल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि अधिकतम तापमान में आगामी 48 घंटों के दौरान 4 से 60 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। भारी वर्षा के चलते बस्ती, श्रावस्ती, संत कबीर नगर और चित्रकूट में स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से किया संवाद, कहा सभी के योगदान से बनेगा विकसित भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया शुभारंभ, कहा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है भारत। रेलवे ने भुज से बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस को दी मंजूरी। प्रदेश के मथुरा, बरेली और पीलीभीत समेत कई स्टेशनों से गुजरेगी ये ट्रेन। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया भारी वर्षा का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। इसमें लीजिए सुनिए डॉक्टर सुमित कुमार मिश्र की संस्कृत वार्ता रामायणम युगातीतः संदेशः।

0: कष्टेषु धैर्यं न धरति तदा एषः मर्यादा सन्देशः अस्माकं जीवने धैर्यं पाठं पाठयति। अत एव मर्यादा पुरुषोत्तमः इति नाम्ना प्रसिद्धः। अतः श्रोतारः भवन्तः अपि चिन्तनं करणीयं जीवने यत्किमपि आवश्यकं तत्सर्वम् आदर्शसन्देशः रामायणे प्राप्तम्। रामायणं न तु भूतकालस्य कथा न च भविष्यस्य कल्पना, एतत्तु रामायणस्य जीवनः पद्धतिः अस्ति। यावत्पर्यन्तं जगति मानवीयाः सम्बन्धाः स्थास्यन्ति तावत् रामायणस्य सन्देशः अक्षुण्णः स्थास्यन्ति। अस्तु, सर्वेषां मङ्गलं भूयात्। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ।
1: संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुमित कुमार मिश्र की वार्ता रामायणम युगातीत संदेश। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। दिनांक 29 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में आपकी थाली से पोषण की खुशहाली विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ प्रत्यक्षा कटियार। श्रोतागण मोटापा, खून की कमी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा अन्य बीमारियों में उचित आहार विहार के बारे में अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 0532-2970-462 और 0532-242-3649 पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर पुनः सुन लीजिए 0532-2970-462 और 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। ध्यान रखें, व्हाट्सएप पर सवाल के पहले हेलो पनघट अवश्य लिखें। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं श्रीकांत वैश्य। आप सुनेंगे इनके स्वर में गीत और भजन। तो लीजिए सुनिए सबसे पहले ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे श्रीकांत वैश्य के स्वर में ये गीत रचना, और इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सलोरी प्रयागराज में आयोजित हिंदी समारोह की रेडियो रिपोर्ट। स्वर है वंदना राठौर का।
1: प्रस्तुत है हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत जनमानस की भाषा हिंदी इस विषय पर आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट। विगत 24 सितंबर 2026 को प्रयागराज शहर में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत जनमानस की भाषा हिंदी विषय पर आधारित समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता भाषा विज्ञानी आचार्य डॉ. पृथ्वीनाथ पांडे ने की। मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान पुष्प गुच्छ से किया गया। तत्पश्चात समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अशोक स्वामी ने कहा,
2: सबसे पहले मैं संस्था के प्रांगण में गुरुवर आचार्य पंडित श्री पृथ्वीनाथ जी पांडे जी, प्रोफेसर सरोज मैम और सभी आगंतुकों का, सभी विद्यार्थियों का और जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल सफलता एक दिन मांगती है मेहनत, समर्पण। और आप जो चाहे वो कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। दिनकर जी ने आमदनी में लिखा है, बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं, सेनानी करो प्रयाण है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के धुलते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। जब भी रात होने लगे आप कोई याद आना चाहिए, कह दो आसमानों से हमसे अभी रूठे नहीं, कह दो आसमानों से हमसे अभी रूठे नहीं, पंख जो टूटे क्या हुआ, हौसले अभी छूटे नहीं।
1: हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए आकाशवाणी प्रयागराज की कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता,
3: मैं बताना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा और आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अंग्रेजी सीखनी है, उर्दू सीखनी है, संस्कृत सीखनी है, तो आकाशवाणी सुनना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लोग बोलते हैं, लिखते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो यूं ही

0: कह दो आसमानों से हमसे अभी उठे नहीं, पंख जो टूटे क्या हुआ, हौसले अभी छूटे नहीं।
1: हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए आकाशवाणी प्रयागराज की कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता।
2: मैं बताना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा और आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अंग्रेजी सीखनी है, उर्दू सीखनी है, संस्कृत सीखनी है, तो आकाशवाणी सुनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लोग बोलते हैं, लिखते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो यूं ही कोई शब्द का उच्चारण नहीं करते, वो दोष माना जाता है। हमारे गुरुकुल परंपरा में वाचिक शैली रही है कि गुरुजन बोलते थे और हम सुनते थे, और जो लोग सुनते हैं सबसे ज़्यादा वही लोग लिखते भी हैं और बोलते भी बहुत अच्छा है। क्योंकि इसके पीछे साइंस है, हमारा जो कान है वो कोई भी जो शब्द है उसे धीरे धीरे वो अंदर जाता है और जहन में बैठता है। आप जो किताबें पढ़ते हैं उनमें हम आवाज़ डालते हैं, रोपित करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके माता पिता को भी कभी मौका मिला हो संस्थान में पढ़ने लिखने का। वो जब हमारे केंद्र को सुनते हैं, वो शब्द जो किताबों से वो नहीं पढ़ पाए, वो आवाज़ से सुनकर अपने जहन में गांठ बांध लेते हैं और वो शब्द बिल्कुल स्थायी हो जाते हैं। और हमारी जो संस्था है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो सबकी है, वो सबको समृद्ध करती चलती है, सबको देती हुई चलती है।
1: हिंदी भाषा और समाचार पत्र पर विचार व्यक्त करते हुए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुनीश्वर मिश्र।
3: डॉक्टर बशीर भद्र का एक शेर है मित्रों, कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने तो कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मैं वाकई में बड़ा भाव विभोर हूँ इस अद्भुत संस्थान को देख के। बच्चे बच्चियां कोई किसी से कम नहीं। 1970 के बाद का जो दशक है उसमें मैं पत्रकारिता में आया था। हिंदी पत्रकारिता की बात करूं तो सत्यनारायण जायसवाल जी एक जमाने में हमारे संपादक हुआ करते थे, तो वो जब उस समय मोनोलाइनों का जमाना था, आज के कंप्यूटर का जमाना नहीं था कि कंप्यूटर में खटाखट खटाखट हो गया, मोनोलाइनों से अखबार बनता था जो मतलब उल्टा होता था और जब छपता था तो सीधा हो जाता था। तो उसमें अगर कहीं एक शब्द की भी गलती होती थी तो दूसरे के हाथों की पेशी हो जाती थी। आज के अखबारों में मैं देख रहा हूं कि प्रूफ रीडर के पद ही खत्म हो गए। उस समय प्रूफ रीडर इतना महत्वपूर्ण पद होता था कि एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक अक्षर वो पूरा देखते थे हमारे संपादक जी। और दूसरे दिन जब अखबार छप के आता था तो वो पूरे अखबार को पढ़ते थे, पढ़ने के बाद जहां गलतियां होती थी एक एक पे अपना टिक लगाते थे, और जब 2:30-3 बजे यहाँ अमृत प्रभात के कार्यालय में आते थे तो वो एक एक आदमी को बुलाते थे, आपसे कहाँ गलती हुई, आपसे कहाँ गलती हुई। तो उस जमाने में क्या होता था कि अखबारों में भाषा का संस्कार हुआ करता था और वो अखबारों से लोग भाषा सीखा करते थे।
1: इस अवसर पर सभा में उपस्थित जनमानस को अपने गायन से भाव विभोर किया आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम प्रमुख लोकेश कुमार शुक्ल ने।
4: जिस्म तो बहुत संवर चुके,

शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। आफ्ताब कहते हैं सूरज को,

जिस्म तो बहुत सवर चुके

0: साहित्य में भाषा की सशक्त भूमिका पर प्रकाश डालते हुए वरिष्ठ कथाकार और समालोचक डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र।
1: साहित्य भाषा में लिखा जाता है और भाषा में साहित्य का निर्माण होता है। मैं कई भाषाओं के साहित्य को सीधे उसी भाषा में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। हिंदी दुनिया की सबसे ज़्यादा जनतांत्रिक भाषा है। इसको कहने के पीछे एक मेरा तर्क है। सिद्धों और नाथों के समय में एक ऐसी भाखा का जन्म हुआ जिससे कि आगे चल करके चार पांच भाषाएं बनी, मैथिली, उड़िया, बंगाली, कुछ असमिया और कुछ हिंदी। उसके बाद हिंदी भाषा जो बनी वो तीन बोलियों को लेकर के बनी, राजस्थानी, मैथिल और भोजपुरी। और तीनों ही बोलियों में हिंदी के लिए तीन बहुत बड़े रचनाकार मिले, कीर्तिलता, कबीर और रासोकाव्य। उसका दूसरा उत्थान जब हुआ तो केंद्र में ब्रज भाषा आई, बल्कि वो ब्रज बोली थी, बुली कहते थे उसको। और उसके दो चरण विकसित हुए, भोजपुरी में तो निर्गुण वाला काव्य लिखा गया था, जो सगुण वाले काव्य लिखे गए वो ब्रज में थे। जो दूसरा हुआ वो दरबारी काव्य था, जिसको कि रीतकालीन काव्य कहते हैं। जो ब्रज वाली बोली थी उसमें कृष्ण के काव्य की महानता थी, राम की भी स्थापना कृष्ण के ही समरूप अवतार के रूप में हो रही थी। और उस काव्य को अवधि में लिखा गया और उसके लिखने वाले तुलसीदास थे। उसके पहले जायसी ने उस भाषा में बहुत ही समृद्ध काव्य लिखा था, जो कि भारतीय अद्वैत के साथ साथ इस्लामी सूफी काव्य का

0: एक तरह से समन्वय लेकर के चलने वाला काव्य था।
1: इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कन्यादान मतदान के साथ साथ विद्यादान की बात करते हुए डॉक्टर सरोज सिंह,
2: मुझे ये लग रहा था कि शिक्षण कर्म से अच्छा कोई भी कर्म नहीं है, क्योंकि हम अपने विद्यार्थियों को अगर चाहे बहुत कुछ दे सकते हैं, कक्षा में पढ़ने पढ़ाने के अलावा हम उन्हें बाहर भी बहुत उत्साहित कर सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। हम कहते हैं कन्यादान मतदान ज्ञानदान, तो ज्ञानदान भी सबसे बड़ा दान है जो हम अपने विद्यार्थियों को देते हैं। और मैंने अपनी पहली नौकरी अपने जहाँ से मैंने पढ़ा था वहीं पर मुझे मिली। तो जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उसकी बहुत आगे तक उसकी सीख भी जाती है। और हिंदी का प्रयोग तो केवल प्रयोजन मूलक हिंदी के माध्यम से ही नहीं है, आप संपर्क भाषा के रूप में, हिंदी हमारी जबान ही नहीं हमारे दिल की भाषा है।
1: कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करते हुए शुद्ध लेखन और शुद्ध वाचन के संदेश के साथ समारोह संपन्न हुआ। अभी आप सुन रहे थे विगत 24 सितंबर 2026 को प्रयागराज शहर में आयोजित हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत जनमानस की भाषा हिंदी विषय पर आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट। वाचन और प्रस्तुति सहयोग वंदना राठौर और प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता की।
3: अभी आप सुन रहे थे सलोरी प्रयागराज में आयोजित हिंदी समारोह की रेडियो रिपोर्ट। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म मोहरा के इस गाने के साथ।

ले जब सुनिए फिल्म तक्ष का गीत, आवाज़ है सुजाता त्रिवेदी की, गीतकार महबूब, संगीतकार हैं ए आर रहमान।

0: shortest to the longest, to talk of any other fiction before the Russian masters tantamount to ignoring their impressive achievements.
1: अंग्रेजी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री ओपी मालवीय की अंग्रेजी वार्ता द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंशियंट एंड मॉडर्न। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल

0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
2: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
3: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
2: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
4: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
2: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्सपा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफ्सपा को बढ़ाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: हमारा रक्षा उत्पादन 1 लाख

0: 78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 एसल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
2: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
1: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अंबेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉ. जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई

0: खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: जापान एशियाई खेलों के आज सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
1: 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says rural transformation and women's self-reliance mark India's progress. Highlights importance of social service, social reform and positive change. Centre extends AFSPA in disturbed areas of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh for another 6 months. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for text-based negotiations to ensure meaningful UN reforms, criticises those opposing change. And at Asian Games in Japan, India's overall medal tally reaches 23 with 2 gold, 9 silver and 12 bronze. Pair of Kamaljeet and Suruchi Singh clinched gold in mixed team 10-meter air pistol event. Long-distance runner Gulveer Singh wins silver in men's 10,000-meter race. Baranika Elengovan bags bronze in women's pole vault. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction today with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasised the importance of social service, social reform and positive change. He said, Vikasit Bharat can be realised only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colours of service.
4: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का

0: won the silver medal in the men's 10,000 meter race at the Asian Games. Indian athlete Baranika Elangovan won the bronze medal in the women's pole vault at the Asian Games. Another Indian athlete, Manpreet Kaur, won the bronze medal in the women's shot put. In table tennis, Indian mixed doubles pair of Diya Chitale and Manu Shah settled for a bronze medal after losing to world champions in Chinese combination Wang Huihing and Sun Hingha 0-3. The India Met Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Uttar Pradesh and Uttarakhand tomorrow. According to IMD, heavy to very heavy rainfall is likely over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. The districts that are likely to receive heavy rainfall include Rampur, Pilibhit, Bareilly, Shahjahanpur and Bharaich. Meanwhile, districts of Madhya Pradesh which are expected to receive rainfall include Satna, Chhatarpur, Tikamgarh and Nivari. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says rural transformation and women's self-reliance mark India's progress, highlights importance of social service, social reform and positive change. Centre extends AFSPA in disturbed areas of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh for another 6 months. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for text-based negotiations to ensure meaningful UN reforms, criticises those opposing change. And at Asian Games in Japan, India's overall medal tally reaches 23 with 2 gold, 9 silver and 12 bronze. Pair of Kamaljeet and Suruchi Singh clinch gold in mixed team 10-meter air pistol event. Long-distance runner Gulveer Singh wins silver in men's 10,000-meter race. Baranika Elangovan bags bronze in women's pole vault. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देही इलाकों में तब्दीली और ख़वातीन का खुद कफील होना भारत की तरक्की की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी इस्लाहात और मुस्बत तब्दीली की अहमियत को उजागर किया। मरकज़ ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरिज ज़दा इलाकों में AFSPA को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में बामानी इस्लाहात को यकीनी बनाने के लिए मतन पर मबनी मुज़ाकरात पर ज़ोर दिया है। उन्होंने तब्दीली की मुखालफत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के तमगों की मजमूई तादाद 23 हो गई है। इसमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड 10 मीटर के एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। तवील फास्ते तक दौड़ने वाले खिलाड़ी गुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा हासिल किया है। वहीं बारानिका एलनगोवन ने खवातीन के पोल वॉल्ट में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के शहरों और गांवों के दरमियान की दूरी में खातिर-ख़ाह कमी आई है। उन्होंने देही बुनियादी ढांचे में नुमाया बेहतरी का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क भर में खवातीन बड़े पैमाने पर खुद कफील और माशी तौर पर बाइख्तियार बन रही हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वड़नगर की यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए आज वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात कही। जनाब मोदी ने सामाजिक खिदमत, सामाजिक इस्लाह और मुस्बत तब्दीली की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी की शमूलियत और तआवुन से ही विकसित भारत का ख्वाब पूरा हो सकता है। जनाब मोदी ने वाज़े किया कि वड़नगर से उन्हें वो इकदार मिली हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को शक्ल दी है, जबकि काशी ने उन इकदार में अपना रंग भरा है। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि नौजवान अफराद भी खिदमत के इस सफर पर निकले हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: बातचीत के दौरान यात्रियों ने वज़ीर-ए-आज़म से अपने तजुर्बात बयान किए। इस दौरान जनाब मोदी ने यात्रियों को अपने तजुर्बात डायरी में दर्ज करने का मशवरा दिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में बामानी इस्लाहात के लिए मतन पर मबनी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। उन्होंने खबरदार किया

0: करना नहीं चाहता है। एशियाई खेलों में जापान के नागोया में भारत ने कुल 23 तमगे जीते हैं। इनमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी ने सोने का तमगा जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने 484.6 निशाने लगाए और 6.6 पॉइंट्स के साथ जुनूबी कोरिया की जोड़ी से आगे रहे। इस दौरान एशियाई खेलों में मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के खिलाड़ी गुलवीर सिंह ने चांदी का तमगा जीता है। वहीं खवातीन के पोल वॉल्ट में भारतीय एथलीट बारानिका एलन गोवन ने कांस्य का तमगा जीता। इसी तरह खवातीन के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने भी कांस्य का तमगा अपने नाम किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देही इलाकों में तब्दीली और खवातीन का खुद कफील होना भारत की तरक्की की अलामत है। वजीर आजम ने समाजी असलाहत और मुस्बत तब्दीली की अहमियत को उजागर किया। मरकज ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरी ज्यादा इलाकों में AFSPA को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अकवाम मुत्तहदा में बामानी असलाहत को यकीनी बनाने के लिए मतन पर मबनी मुजाकरात पर जोर दिया है। उन्होंने तब्दीली की मुखालफत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के तमगों की मजमूई तादाद 23 हो गई है। इनमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार जिसका प्रसारण हो रहा था हमारे दिल्ली केंद्र से मीडियम एफ 292.4 मीटर अर्थात 1026 किलोहर्ट्ज पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। यह है आकाशवाणी प्रयागराज।

पेश खिदमत है आपकी गजलों का कार्यक्रम कहकशां। दोस्तों, गजलों की बात आती है तो कभी कभी लगता है कि जिंदगी में हम जो कुछ पीछे छोड़ आते हैं, उन्हीं यादों का कारवां बनकर ये गजलें हमारे साथ चलती हैं, हमारी रूह को छू जाती हैं। कभी इश्क, कभी मुश्क, कभी मिलना बिछड़ना या फिर किसी से धोखा या बेवफाई मिलना, और कभी कभी तो पूरी की पूरी जिंदगी बन जाती है गजल। तो आइए सुनते हैं जिंदगी के पैमाने से छलकते कुछ रंग। आवाजें हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की, शायर हैं राणा अकबर आबादी।

कुछ गज़लें हमें इस जहाँ से दूर बहुत दूर ले जाती हैं, उन तन्हाइयों में जहाँ हमें अपने दिल के जज्बात भी आहट बनकर सुनाई देते हैं। तो जब कभी आपका दिल इन तन्हाइयों की गहराइयों में उतरने का करे, तो सुनिए खूबसूरत सी गज़ल जिसे आवाज़ दी है भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह ने, और शायर हैं नसीम अजमेरी।

बात करते हैं अगली गज़ल की, जिसे गाया है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साहब ने। ये जयपुर घराने से ताल्लुकात रखते थे और इन्हें पहचान मिली शास्त्रीय गज़ल से, और इस युगल जोड़ी ने गज़ल गायकी में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया। तो आइए सुनते हैं इनकी गाई हुई ये खूबसूरत सी गज़ल, जिसके शायर हैं बेकल उत्साही।

पद्मश्री हरिहरन साहब की गजल। अब हम सुनेंगे हरिहरन साहब के बारे में। बताओ, इनकी गजल गायकी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत को एक साथ एक मंच पर पेश कर दिया। अल्फाजों का हुनर भी बेमिसाल और उनकी गाई हुई ये खूबसूरत सी गजल आज मैं आपकी पेशे खिदमत कर रहा हूँ। इस गजल के शायर हैं खुमार बाराबंकवी।

श्रोताओं, बशीर बद्र साहब ने क्या खूब फरमाया है, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं होता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं होता, बड़े लोगों से मिलने में ज़रा सा फासला रखना, कतरा समंदर में मिला तो कतरा नहीं रहता। बशीर बद्र साहब, जिन्होंने गज़ल को भारी भरकम शब्दों के जाल से बाहर निकाला और आम इंसानों से उसका तारुफ कराया, आइए आज सुनते हैं उन्हीं का ये कलाम। आवाज़ है तलत अजीज़ की।

तो गज़ल के दीवाने दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का। फिर मिलेंगे ऐसी खूबसूरत गज़लों के गुलदस्ते कहकशां में। दीजिए इजाज़त अपने इस दोस्त रोहित को। मीडियम वेव 292.4 मीटर अर्थात 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये है आकाशवाणी प्रयागराज। हमारा अगला प्रसारण होगा बस अब से थोड़ी ही सी देर में। कीजिए थोड़ा इंतज़ार।

0: मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। उदय एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 2023 में इसी स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने 17.7 मीटर का थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता। कृष्णा जयशंकर मेनन 16.57 मीटर के प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और प्रवीण कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा 6ठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रहीं। विशाल टेके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं के 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
1: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
2: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा।

0: में जगह बनाई। पुरुषों की 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हेमरथ्रोन में अमनीत सिंह ने 9वें और प्रवीण कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा 6ठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रही। विशाल टीके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं के 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
1: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
2: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4 गेम में 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
1: The Indian team is going strong in squash. Shabab Anwar has more.
0: योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पोलिनो और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम 4 में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही 40 वर्षीय योशना और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे सेंथिल कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3, 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग हांग टैंग की चुनौती होगी। ये योशना का एशियाई खेलों में 6ठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की लेकिन जोशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-2, 11-5, 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4, 11-3, 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारत के वीर चोटरानी को 41 मिनट में 6-11, 11-8, 11-3, 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
1: Was another great day for India in kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
0: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दे दी। आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3 ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा, संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
1: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
0: बैडमिंटन ने आज भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब गत विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तिरेश साकुल और पिशाई सुख

0: शिफुन की जोड़ी ने 21-12, 19-21, 21-14 से हराया। सात्विक चिराग ने पिछली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारत की तनिषा क्रोस्टो और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार जीत की। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20, 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में उन्नति हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी को 21-7, 21-10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने पसांग ह्यू और थाइलू की जोड़ी को 21-16, 16-21, 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में पुरुष वर्ग के तहत पहले राउंड में भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21, 11-21 से हार गई।
1: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after beating host Japan 3-1. Elham Razoor, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Mandwal had to say.
2: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200-meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer, however, finished 7th in men's 200-meter butterfly. He did not start in the 100-meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50-meter breaststroke and 400-meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50-meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th, respectively, in the 400-meter freestyle event. None of the three swimmers could advance to the finals.
1: It was a mixed day for the Indians in the boxing arena. Shahid Azmi has more.
3: बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार का सफर राउंड ऑफ 16 में ही खत्म हो गया। पहले बात सचिन की, उन्होंने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी। सचिन ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार और सटीक पंचों के साथ मुकाबले पर दबाव बनाए रखा। अबू जाजे ने आखिरी दौर में वापसी की कोशिश की, लेकिन सचिन की चुस्ती के आगे उनकी चुनौती कमजोर पड़ गई। भारतीय मुक्केबाज ने लगातार सटीक पंच लगाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। अब उनके सामने जापान के शुनसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्रीति को उत्तर कोरिया की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पैंग चोल मी ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मात दी। प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली। यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यहीं समाप्त हो गया।
1: So how did the weightlifting contingent do for India today? Shabab Anwar tells us the report.
0: भारोत्तोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गयी। निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के साथ 7वें स्थान पर रही।
1: Indians were in action in canoe. Sakshi Mandwal has all the details.
2: It was a disappointing day for India in canoe sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished 5th in the men's kayak double 500-meter semi-final, clocking 1.

0: 1 minute 40.308 seconds. Then they competed in the final B, where they finished third among four pairs in 1 minute 40.411 seconds. In the women's canoe double 500 meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished fourth among five pairs with a timing of 2 minutes 8.306 seconds and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4-500 meter quartet of Dhana Manjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1 minute 45.670 seconds. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
1: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar has more.
2: भारत को तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हार कर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ, जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27 से पराजय का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य, हिमांश सिंह, तेजस पाटिल और कर रहे थे। इसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर।
1: India is making its debut in surfing. Let's find out what happened. SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Amrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tahara City. Coached by Frenchman Samay Rabou, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. India was striving for a medal in equestrian. Let's hear what Shahid Azmi had to say.
3: Asian Games 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया। भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका। चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से श्रुति वोरा ने 68.059 अंक जबकि हृदय विपुल छेदा ने 67.353 और जय सूद ने 66.559 अंक हासिल किए। हांगझाऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पोडियम पर जगह नहीं बना सकी।
1: E-sports is grabbing the nation's attention. Sakshi Manwal has the latest from Aichi Nagoya.
0: India went down 0-2 to South Korea in Pokemon Unite. Both the games were won by South Korea in a very commanding and dominating manner, and they ultimately went on to win the series 2-0.
1: So after another action-packed day, where is India in the medals tally? Let's find out.
0: भारत की पोजीशन मेडल टेबल पर 12th स्पॉट पर है। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त 22 मेडल्स हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, जो क्रिकेट और शूटिंग से आए हैं, 9 सिल्वर हैं, जिसमें से 5 शूटिंग से, 1 वेट लिफ्टिंग से, 2 एथलेटिक्स से और 1 वुशु से आया है, और 11 ब्रॉन्ज हैं, जिसमें से 4 शूटिंग से, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस से आया है। नाउ लेट्स आल्सो हैव अ लुक एट द टॉप 3 पोजीशंस इन द मेडल टेबल। पहला स्थान लिया हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने विद अ टोटल ऑफ 157 मेडल्स, जिसमें से 97 गोल्ड हैं, 36 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर है जापान, जिसके पास कुल मिलाकर 113 मेडल्स हैं, 27 गोल्ड, 42 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज। और तीसरे स्थान पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसके पास कुल मिलाकर 64 मेडल्स अभी तक हुए हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स।
1: It's another exciting day of the Asian Games 2026, with the Indian athletes looking to improve their medal tally on day 7 in Aichi Nagoya. In athletics, Savan Barwal and Karthik Arkera will try to go for gold in the men's marathon final. There was gold in shooting today, will there be one tomorrow? As the women's 50-meter 3B position, individual and team final will take place, with Ashi Chaudhary, Tilutama Sen and Vidarsa Vinod in action. Raju Nawat and Neha Devi will try to get India a medal in the canoe sprint mixed canoe double 500 final. There's also mixed doubles semi-final action with Josh Sachinappa and V. Senthil Kumar flying the Indian flag. Early morning at 9:30 a.m. it's a big women's kabaddi final between India and Iran. There's also women's single semi-final action in squash with Anahat Singh flying the Indian flag, while Abhay Singh will go for gold in his men's single squash semi-final versus Mohammad Irfan of Pakistan. For the Indian men's hockey team, it's a big pool encounter when they battle Japan. And as their female counterparts are doing, the Indian men will try to go for gold versus Iran in the kabaddi final. There are a lot of expectations from Tejinder.

सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत सुनिए। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं विदुषी अनिता सेन का उपशास्त्रीय गायन, जिसमें सबसे पहले आप सुनेंगे राग खमाज में ठुमरी।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए अनिता सेन के स्वर में ये दादरा।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी अनित सेन का उपशास्त्रीय गायन राग था खमाज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर को अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा है कि जल

सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने जल संरक्षण में जनभागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के सिविल सचिवालय से सोमनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिभागी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स शंघाई में टीम इंडिया

रहे हैं। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2024 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स शंघाई में टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से अधिक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।